पांचवें श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण सरवण कर रही थी। आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस रेडी पंजाबी सेवा चुना सिंह तुहाडी नजर कर रहे हैं। सूफियाना कलाम

0: আপনি আকাশবাণীতে সিন্ধি স্যারে চাই 9870 কিলোহার্টজ এ দেখা সবাই আকাশবাণী জি সিন্ধি সার্ভিস ভয়েস অন এয়ার মোবাইল অ্যাপ যদি ফেডিশ থেকে বুঝতে না আয়ো प्रोग्राम जो आगे से चुका है डिटेल्स को जानते रहे थोड़ी देर में अब हमेशा भगत का नाम जन जो मिठड़ो आवाज सुनना देखा बतावा जना भारी का नेटवर्क कहाँ तक बना और वाना है अवाजी शहर बंबोर में हर कोई कोई हब वतनी की तब पेश करना यह तो सभी प्रोग्राम जी भी चूड़ा तो आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस प्रोग्राम ही अच्छो तो भगत का नाम जन जो सदाबार आवाज सुनू
1: Thank you.

ਸਾਰੇ ਜਾਨ ਗਾਵਤ ਹੈ।

कलाम भगत कलाम जन जे विषय आवाज में ही कलाम दी रहा यह आकाशवाणी की सिंधी सरसा है यह पेश है कतकवीर उमन है अवाजे शहर भंगोर में कथाकार जनाब हरिकांत जेठवाणी।

है या थी सिंध सिंध के बारे में मजाक में या मजाक सुठो जायको न थी छे दुनिया जी कोने में कोने तहजीब वजूद में आई हुए जिते सरसब्ज आसूद खुशहाल माहौल में सिंधु के किनारे ते संसार के कदीम तरीन किताबन यानी वेदन की रचना थी हुए जिते मखी ए मच्छर जड़ियो शाही ढंडू लखी जो टकरियों घाटा बेला अन्न जा अंबार बल्कि साऊ सोन उपाई जमीन हुए जिता की उन जो इन किस्म जो बयान आड़े न तो खैर गाल जो सिरो आए अवां जे शहर बंभोर में माउद इन के बे नमूने पेश करें चवां मुझे शहर मलीर में मलीर मुलाय को शहर को मुकर मखसूस इलाको ना है वो एक तसव्वुर है हर शख्स जे मन अंदर एक मलीर रहंदो है मुझो मलीर अजब मुवट है उन जो हदू सरदुन का मथे आन लामहदूद आन उस्ताद शायर लेखराज अजीज पैंजे एक लंबे नज्म में चयो है सारे सिकन ही नेण था दीदार सिंध जो आया मा जान दिल सा तलबगार सिंध जो दिल में रहे तो दाग थी आजार सिंध जो कहड़ो पुछो था सिंध जे इमलाक जो क्लेम इमलाक मुझे सिंध थी हक सिंध ते थेम अजीज साहेब ही नज्म उन वक्त लिखो हो जैसे विरांगे का पोए सिंध मा लड़े आयल मानुन के उते छड़ल पैंजन मिल्कितन जा क्लेम भरण लाए चेवे हो मां भी सजी सिंध के पैंजो समझातो जैक बाबा जो आमलन जो पाड़ो गरीब बाबा जिते जाओस थुल जिते सांझ में आयस थरपार कर जा कई गोठ जिनके बिटन ते डुकंदे रांदियों कयम कराची हैदराबाद मीरपुर खास सखर कोटड़ी जिनके गिटी गिटी में घुमिस नानार को शहर खैरपुर मेस जिते तैलीम शुरू कयम ए अबाणो गोठ नौशहरो फिरोज जिते मुझो सिंध जो मुख्तसर कयाम खत्म थे तो फिलहाल शुरुआत लेकिन मां खैरपुर मेस सा कंदुस जिते ही मुझा अवैली बुनियादी संस्कार ठया सिंध में मीरन जी हुकूमत जी आखिरी निशानी खैरपुर मीर्स रियासत जी राजधानी पर हुई बागन बागीचन पक्कन रस्तन ए पक्कन जायन वाले इन शहर जी जोग्राफी अन्या याद अथम मीर वडो आंगास सामू ही काठ जे शाही दरवाजे वारो अजवाणी महलो खाबे पासे गुलाबानी घिटी उन जे आखिर में नंढो आंगास साजे पासे गिटी पूरी थण ते वड्डी वेकरी बाजार नाज हाई स्कूल मीर अली मुराद टाकीज विक्टोरिया अस्पताल फूलबाग मीरवा सब अजब चिताएं जहन में आशुरन दौरान आंगास के लाहे उनके नयों रंग बिरंगी पट्टियों झंडियों बधी शान मान सा वरी चाढ़ण ए ताबूत कढ़ण ब वड्डियों मजहबी रस्म हुयूं जिन में मुसलमान तशरीक थींदा ही हुआ हिंदू भी हथ वठाईंदा हुआ रियासत जो सरकारी कारोबार घणे भांगे हिंदू कामोरन जे हथन में हो रियासत जे उन सूरत में अचण वक्त मीरन साहित्य जे कुछ आज़मूदगार हिंदू कामोरन के जमीनू ए वड़ा दरबारी उहिदा आछे पारना चुकियो हो जेके लडे अची उते रहा हुआ ए अलग अलग घिटियूं पारा ए महिला कायम कया हुआ खेन मुकम्मल धार्मिक आजादी हुई जहाँ गवाह भाई जगत सिंह वारो गुरुद्वारो ए खास तौर धर्मशाला हुई जैमे हर साल उत्तर प्रदेश जी कान का रामायण मंडली महीनो महीनो रामलीला खेड़ ईंदी हुई उतां जो दशहरो खास तौर ॾिसण वटां हूंदो हो रावण जो ढांचो मुसलमान कारीगर ठाहींदा हुआ त हुन में आतिशबाज़ी हिंदू माहिर भरींदा हुआ कलाखन पिया फटाका जलंदा हुआ खैरपुर जी एक तमाम नंढी लेकिन हाँ लगंदो आए काफी वड़ी लेकिन शख्सी घटना जो जिक्र कर द विसरी वियो सते साल जो हुंदस बियों दर्जो सिंधी पढ़ंदो होस कन्या पाठशाला में हफ्ते वार बारन जी बारी लगंदी हुई को मुखे वठी वियो बारी जो वड़ो जैके दादा सिरबो हो उन जो नालो हो गुल मोहम्मद दादा गुल मोहम्मद मुझी दस्तूरी वाकफियत नहीं वठी मुखे कुछ बुधा लाए जोर भरियो घणो ही न टाइम की बायम शाम आयम

लेकिन संदसि ने ए पाबो मुझे हिम्मत वधाई ए मुबारी में एक आखणी ठाए बुधाई जेका कह तरह बारन जे रसाले गुलिस्तान में पढ़ी हुम तुरत मुखे पावली इनाम दिनी वही ए बालकन जे बारी जो बिल्लो अता कयो वियो एक तरह या मुझी पहरी जुबानी अदबी कोशिश हुई। खैरपुर जे मानन जी रहनी कहनी कुछ कुछ साहित्य वारन जेड़ी ए कुछ कुछ साखुन जेड़ी हुई उनको सबब शायद यो थी सके तो खैरपुर के उत्तर में सखर ए दखण में नवाबशाह जिले जा उए टे तालुका पवन था जिनके साहित्य कोठो वेंदो आए यानी नौशेरो कंडियारो ए मोरो मुझो जड़ू नौशेरे में हैं। नौशेरो फेरोज मुझो अबाणो शहर मुझो मलीर जाहिरी तौर शहर मिड़ो ही एक जड़ा थींदा आहिनि कुछ घिटू कुछ मकान कुछ दुकान कुछ मानू पोइ बि हर शहर खे पंहिंजी अलॻि हैसियत थींदी आहे अलॻि शख़्सियत थींदी आहे नौशहरे खे बि पंहिंजी शख़्सियत पंहिंजी अलॻि सुञाणप हुई। उन सुञाणप जो हिकिड़ो ख़ासि जुज़ो हो उतां जो मदरसो। सरकारी सरपरस्ती हेठि सिंध में अवाइल में जेके टे मदरसा हाई स्कूल क़ाइमु कया हुआ उन्हनि मां हिकु नौशहरे में हो। तइलीम जे लिहाज़ खां मुख़्तियारकारी शहर यानी तालुका हेडक्वार्टर तौर नौशहरो उसल शहरनि मां हो। रेलवे मेनलाइन खां परे हुजण जे बावजूद फीडर लाइन वसीले उहो हिकु तरफ़ पंडितन जंक्शन त ॿिए तरफ़ महरापुर जंक्शन सां जुड़ियल हो। इन खां सवाइ लोकल बोर्ड जा स्कूल लोकल बोर्ड जी अस्पताल ऐं ॿियूं सहूलियतूं पिण मुयसरु हुयूं जेके हिकु नंढे आसूदे शहर लाइ ज़रूरी थींदियूं आहिनि। मिसाल तौर घिटियुनि में रोशनी थोरे थोरे पंध ते काठ जे मज़बूत थंभनि में फानूस टंगियल हूंदा हुआ जिन खे हर शाम म्यूनिसपालिटी जो माण्हू काठ जी ॾाकण ते चढ़ी उन जा कावा साफ़ करे उन्हनि में गासलेट भरे ॿारे वेंदो हो। हर सुबुह जो उन्हनि खे बार नेम विसायो पिणु वेंदो हो। बिजली अञा कान आई हुई ऐं पाणी बि नलकनि मां न खूहनि मां मिलंदो हो। हर घिटी में ब टे खूह हूंदा ई हुआ। असांजे अबाणे घर खे टे खूह वेझा पवंदा हुआ टिकाणे वारो खूह गोसाई वारो खूह ऐं मुला वारो खूह। असीं मुला जे खूह ते वञणु पसंदि कंदा हुआसीं जो हुते सॼो वक़्तु नार पियो हलंदो हो ऐं असांखे पाण पाजारी हलाइणी या गिणी छिकणी कान पवंदी हुई। शहर में हिकु कन्या पाठशाला ऐं नारीशाला पिणु हुई जेका प्रभदास ब्रह्मचारी हलाईंदो हो। संदसि देखरेख में मास्टर पहलाज राय राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा जे इम्तिहाननि लाइ हिंदी क्लास हलाईंदो हो। पढ़ाई जी ॻाल्हि निकिती आहे त मां वरी बि मदरसे जो ज़िक्र कंदुसि छो त हुन पुठियां हिकु मक़सदु आहे अव्हां खे हिकु ख़ासि ॻाल्हि ॿुधाइण जो। मां हुते पहिरियों ऐं ॿियो अंग्रेज़ी पढ़ियुसि। प्रिंसिपाल हिकु पंजाबी साहिबु के टी नंदा हूंदो हो हिकु पको तइलीमदान ऐं इंज़ाम वारो शख़्स शायदि ऑल इंडिया सर्विस जो माण्हू हो। ड्राइंग मास्टर नूर मोहम्मद ऐं हिकड़े क्लास टीचर साईं अब्दुल ख़ालिक जा नाला पिणु यादि अथनि। पढ़ींदड़ अमले में हिंदू मुस्लमान ॿई हुआ। मिस्टर कोटवाणी ऐं मिस्टर करनाणी ॿ मक़बूल मास्टर हुआ लेकिन ॿियो हिकु मास्टर साहिब जेको हुते चार्ज वठण खां अॻु ई मक़बूल बणिजी वियो सो हो मिस्टर एन जी नागवाणी। बदली थी संदसि मदरसे में अचण जी ख़बर ई काफ़ी अजब ख़ुशी ऐं सनसनी फैलाए छॾी। हिकु हिंदू मास्टर फारसी पढ़णु अची रहियो आहे सो बि मदरसे में हू आयो पंहिंजी धाक जमायई मदरसे में न अॻिते हली हिंद ऐं सिंध में। उहो मास्टर एन जी नागवाणी यानी नारायण दास गोकुलदास नागवाणी ॿियो को न हिन सदीअ जो हिकु वॾो बल्कि वॾनि खां वॾो शायर नारायण श्याम हो। श्याम नारायण श्याम जंहिं सिंध छॾाइजी वञण खां पोइ बि हिरो कोन हारियो ऐं चयो सिंध खे को बि छॾाए न सघे सिंधियुनि खां सिंध सिंधियुनि में वसे सिंध हिते सिंध हुते। अॼु जॾहिं हिते ऐं हुते पखिड़िजी वई आहे सिंध ऐं सिंधियुनि जे वजूद अॻियां सुवाल जी निशानी वॾी ऐं वॾी थींदी पई वञे मां पाण खे पंहिंजी हिकु नई कविता ॿुधाइण खां रोके नथो सघां। कविता जो सिरो आहे उजरंदड़ बर्छ।

0: मथो पेट में, मथो पेट में ऐं पेट मथे ते ढोईंदड़ सफेद सिंगन वारा चूंडल चालबाज ठाहीन ऐं ड्राहीन पिया इतिहास चालू दौर जो पिंगली आज़ादी। पिंगली आज़ादी बणजी पई ग़ुलाम आज़ादी खां पोइ ॼावल ॼामणनि सुल्तान जी। नौशहरे खां नई दिल्ली ताईं, नौशहरे खां नई दिल्ली ताईं इतिहास द्वारा मड़ियल बेमक़सद यात्रा दौरान भटकंदे पखड़ियल पाण समेटींदे सवे भेरा साम्हूं आयो आहे सुवाल, छा स्कूली नोटबुक ते डिंगन फिडन लीकुनि सां रहियल हाकी खे सॾबो आहे देश? को बि अड़बंग दबंग बिगाड़े फाड़े पिटो करे सघे जंहिंखे अहम जे ऐश वास्ते रत टिमंदड़ अखियुनि सां मूं ॾिठो आहे इतिहास, रत टिमंदड़ अखियुनि सां मूं ॾिठो आहे इतिहास। टुकड़ो टुकड़ो थी फाटंदड़ नक्शो, बूंद बूंद सुकंदड़ नदी, पन पन ते उजड़ंदड़ 5000 साल झूनो बर्च।
1: अमेरिका जेठवाणी खां तकरीब ॿुधी रहिया, अव्हां जे शहर बंगोर में तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया।

आकाशवाणी जी सिंधी सरसाही 9870 किलोहर्ट्ज़ से। सिंधी सर्विस वॉइस ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्रीडिस ते ॿुधी सघंदा आहियो। आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे। हीअ पेश आहिनि देशभक्ति गीत।

हिंदुस्तान मुंहिंजो देश में।

Yeah.

जो हिंदुस्तान हुए जो हिंदुस्तान।

0: आकाशवाणी सिंधी सरस्वती रहा ही असाजे प्रोग्राम जो वक्त पूरा थी रहा है वरी असा मुलाकात थी सुबह सुबह जो यानी कि भारतीय वक्त मुताबिक साढ़े छह बजे तेसी तक इंदा मोकल सदाई गन
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने बताया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। यह लूनर लैंडर को चंद्रमा के बहुत ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में श्री नारायणन ने बताया कि इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने का काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। यह सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर की शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थलसेना प्रमुख होंगे। वर्तमान में वे थलसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने की संभावना व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागही ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिन में ऐसा संभव हो। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। अगले 3-4 दिन तक आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, कराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ तेज हवा और बारिश की संभावना है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत ग्रुप ए में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार वर्षा के कारण मैच की शुरुआत में देरी हुई और इसे 25-25 ओवर का कर दिया गया। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे संगीतिका, जिसमें आपने सुना प्रीति सुशील के गाए भजन। आप हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ और अब समय है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। जी हाँ, गीतों भरी गुड मॉर्निंग लेकर आपके साथ हूँ मैं। नाम बताएंगे आप, क्योंकि आप हैं मेरे दोस्त और आवाज को पहचानते हैं तो ठीक है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, आपके संदेश आएंगे और बताएंगे कि मैं कौन हूँ, तो खैर थोड़ी देर में बता दूंगी, इतना सस्पेंस नहीं रखूंगी। फिलहाल गीतों भरी गुड मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं रूप कुमार राठौर के गाए इस गीत के साथ।

जिस ईमेल के माध्यम से आप हमें मेल भेजेंगे वो है ip.radio.delhi@gmail.com। जी हाँ, ip.radio.delhi@gmail.com पर आप अपना संदेश हमें भेज सकते हैं।

जी हाँ, कितना अच्छा गीत था ये, है ना। सुबह सुबह हमने इतना अच्छा आपको गीत सुनाया कि आपका दिमाग जो है याद करे कि ये आवाज किसकी है। खैर कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, आपके साथ हूँ मैं गुड मॉर्निंग में। जी हाँ, गीतों भरी गुड मॉर्निंग में आपकी दोस्त कुसुमलता। देखिए, संदेश आ चुका है मेरठ कैंट से, दिग्दर्शन कविता अनिल जैन, संजय ढींगिया।

विरासत का है ये तो आपकी ही पसंद का निकला, क्या बात है। आपने भी तो विरासत फिल्म का गीत सुनना चाहा था, है ना? चलिए सुनवाते हैं।

हाँ जी, देखिए आप कहेंगे कि गीत सुनवा दिया रिमझिम रिमझिम वाला, और बहुत मौसम तो हो रहा है गरम। देखिए, जब हम और आप ये सोचें कि चीजें वैसी नहीं जो दिख रही हैं, और जो हम सोच रहे हैं वैसी है, तो वैसी ही हो जाती है। यानी कि हम मान ले हल्की हल्की फुहार पड़ रही है, बारिश हो रही है, और मौसम कितना सुहावना हो गया है ना। मतलब ये हम सोच ले तो हमें गर्मी लगनी बंद हो जाएगी। हम कहीं भी हैं तो हमें एहसास ही नहीं होगा। भाई कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो वही बात मैं आपसे कह रही हूँ कि मन को इतना बांध लीजिए कि समय का अंदाजा ना रहे, मौसम का बिल्कुल पता ही ना चले, और आप वैसे खो जाएं जैसे आपका मन कहे। जी हाँ, खैर, हमने अपना बताया था ईमेल आईडी ipradiodelhi@gmail.com, जिस पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल हमें संदेश मिला प्रकाश वर्मा, बसंत कुमार सिन्हा, अमृत रामगढ़िया, और नसीर शेख हैं, किसान किशन सपकाल हैं, रफीक भाई पवार हैं, और भूषण खेरा। इन सभी ने हमें संदेश भेजा आपका कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। गुड मॉर्निंग गीतों भरी कहानी में, गीतों भरी इस शो में हैं आप सभी अपनी दोस्त कुसुम के साथ। तो लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत उदित नारायण के स्वर में।

धड़कन फिल्म का ये गीत आप तक पहुंचाया आपकी दोस्त कुसुम ने और इस गीत को गाया उदित नारायण ने। हमारे स्टूडियो की घड़ी में अब 8 बजने में कुछ ही मिनट शेष रह गए हैं, यानी कहें तो 4 मिनट लगभग शेष रह गए हैं और अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत। तो छोड़े जाती हूँ आपको इस गीत के साथ कुमार सानू के स्वर में, लीजिए सुनते हैं

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतो भरी गुड मॉर्निंग, और अब लीजिए सुनते हैं हिंदी अंग्रेजी और उर्दू में समाचार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दो।
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून

0: मानसून के अगले दो तीन दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इको सिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया की यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और सीएसआईआर ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: क्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को

0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
3: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
2: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
4: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
5: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
2: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
6: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लाम रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा।

0: इसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एल्बेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार आईएमए से पास आउट 9 महिला कैडेट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब आईसीबीएम मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश, नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त, गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. US President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against Archer.

0: जाएगा। धर्मशाला में बारिश से मुतासिरा पहले एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। और खवातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दो मुल्कों फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने दौरे के पहले मरहले के तहत फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। फ्रांस में अपने कायम के दौरान वो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करेंगे और आइंदा G7 समिट से कबल वो सदर मैक्रों के साथ बाहमी तआवुन के अहम शोबों और आलमी उमूर पर दोतरफा बातचीत करेंगे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म स्लोवाकिया का दौरा करेंगे जहां वो स्लोवाक क़यादत के साथ दो तरफा मीटिंगें करेंगे। कल मारूफ होटल नीक्रेस्को में मुनक़िदा एक कम्युनिटी इस्तक़बालिया तकरीब में भारतीय बिरादरी की बड़ी तादाद ने वज़ीर-ए-आज़म का गर्मजोशी से इस्तक़बाल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भारतीय बिरादरी के अफराद से पुरजोश अंदाज में खुशगवार मुलाकात की और रंगारंग सकाफती प्रोग्रामों से महजूज हुए। इन प्रोग्रामों में भारतीय क्लासिकी रक्स की मुख्तलिफ शक्लें जिनमें कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम शामिल हैं पेश की गईं। ये रक्स फ्रांसीसी और इतालवी फनकारों ने पेश किए। ये पुरजोश इस्तकबालिया भारत और फ्रांस के दरमियान मजबूत सकाफती और अवामी रवाबित की अक्कासी करता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के सदर इमानुअल मैक्रों के साथ नीस में पैलेस देस एक्सपोजिशन में भारत इनोवेट्स प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब में भारत के स्टार्टअप और इख्तराई इको निज़ाम को उजागर किया जाएगा जहां तकरीबन 120 स्टार्टअप आलमी सरमायाकारों और टेक्नोलॉजी कायदीन के सामने अपनी इख्तराआत पेश करेंगे। तकरीब के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी और सदर मैक्रों विला कैरलोस में दो तरफा बातचीत करेंगे। यह साल भारत और फ्रांस के ताल्लुकात को खसूसी आलमी स्ट्रेटजिक शराकतदारी की सतह तक बढ़ाने के बाद पहली मुलाकात होगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दिफा, टेक्नोलॉजी, तजारत और इख्तरा के शोबों में ताउन के अलावा अहम इलाकाई और आलमी हालात वाकयात पर भी तबादला ख्याल किए जाने का इम्कान है। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत स्लोवाकिया के लिए रवाना हो जाएंगे। न्यूज़ से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीब रहमान।
0: स्लोवाकिया में भारत की सफीर अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का स्लोवाकिया का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान इश्तराक और तआवुन के नए मौके फराहम करेगा और इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने में भी मुआविन साबित होगा। मोहतरमा अपूर्वा श्रीवास्तव स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में आकाशवाणी के नुमाइंदे के साथ गुफ्तगू कर रही थी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते फ्रांस में मुलाकात होने वाली G7 समिट के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अमरीकी इंतजामिया के एक सीनियर अहदेदार के मुताबिक इन मुलाकातों में इक्तिसादी तरक्की, सप्लाई चेन्स, मसनूई जहानत, सरमायाकारी में इश्तराक और आलमी सलामती से मुतालिक मुख्तलिफ चैलेंजों पर तबादला ख्याल मुतवक्के है। सदर ट्रंप बुध के रोज वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ एक दो तरफा मीटिंग करेंगे जिसके बाद वो एक जोहराने में शिरकत करेंगे। इस जोहराने में G7 मुल्कों के रहनुमा, शराकतदार और टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव्स भी शरीक होंगे। खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो के चेयरपर्सन वी नारायणन ने कहा है कि उन्होंने एक ऐसे जदीद मसनूई हीटिंग निजाम को तैयार करने के लिए एटमी तवानाई के महकमे के साथ इश्तराक किया है जो चांद की सतह पर उतरने वाले खलाई जहाज को चांद के बेहद ठंडे मौसम से महफूज रख सके। बेंगलुरु में CSIR राइस कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए इसरो के सरबराह ने बताया कि शमसी तवानाई वाले चंद्रयान 3 मिशन का

0: डालती है बल्कि हमारी सांस्कृतिक भव्यता को भी बढ़ाती है। तो आप इस बात से कितना सहमत हैं?
1: कल्पना जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। सिनेमा जो आया तो कहा जाए कि हमारी सारी कलाओं में एक तकनीक लेकर आया, टेक्नोलॉजी लेकर आया, और इसके जरिए वो कलाएं बहुत आगे तक गई। लेकिन उसके साथ साथ ही हुआ कि और बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ी। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं, लोक साहित्य, लोक जीवन, लोक संगीत, इन सब की बातें कर रहे हैं, तो इनके बगैर वो बिल्कुल खाली खाली है, वो बिल्कुल उदास है, या कहें कि उसमें कमी रह जाएगी अगर उसमें लोक जीवन, लोक कथाएं, लोक संगीत नहीं होगा। इसके बगैर वो अधूरा है।
0: और कई बार हम देखते हैं कि कुछ ऐसी ग्रामीण पृष्ठभूमि की फिल्में होती हैं जो उस दौर से लेकर इस दौर तक अपनी ऐसी पहचान बना लेती हैं कि अब आज का जो दर्शक है वो भी बता देता है कि हाँ, ये फिल्म मैंने देखी है। तो कुछ ऐसी फिल्मों के नाम आप बताएं जो काफी लोकप्रिय हुई हैं।
1: बहुत सारी फिल्में बनी हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं मदर इंडिया की,
0: जी
1: तो मदर इंडिया जो ऐसी फिल्म है जो सभी ने लगभग देखी होगी, उसकी छाप अभी तक है, उसकी कहानियां, उसके चरित्र, उसके गाने, उसका परिवेश, उस सब कुछ इतना ज्यादा रचा बसा है कि लोगों को अच्छी तरह से याद है। उसका कारण यही है कि उसमें जो गाने हैं, उसका जो संगीत है, वो पूरी तरह से आपका मन मोह लेता है। आप उसके साथ गाते हैं, आप उसके साथ गुनगुनाते हैं, वो चरित्र लगता है हमारे पड़ोस का कोई लाला है, हमारे पड़ोस का ये भाई है, उसकी माँ है, ये पड़ोसी है, वो भैंस है ना, वो बैल है, वो खेत है,
0: जी
1: वो सब कुछ आपको बहुत सहज लगता है, आपको अपना लगता है। उसमें जो संघर्ष होता है, जो द्वंद है चरित्रों के बीच में हो, समाज के बीच में हो, वो सारा आपको चूंकि अपना लगता है, वो कहानियां झूठी नहीं लगती है, इसलिए वो दर्शकों पर लंबे समय तक कहें कि उनका प्रभाव बना रहता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। आपने लोक संगीत की बात की तो एक बात मैं ये भी जानना चाहूंगी कि कुछ फिल्मों का जो संगीत है वो फिल्म से भी अधिक लोकप्रिय हो जाता है और उससे पहले ही लोगों की जुबान पर चढ़ जाता है। तो ऐसी कुछ फिल्में जिनका जो संगीत है उसने फिल्मों से भी बढ़कर पहचान बनाई है या वो लोकप्रिय हो गए पहले ही, कुछ ऐसा लोक संगीत, कुछ ऐसे गीत संगीत के विषय में आप बताएं।
1: बहुत सारी ऐसी फिल्में रही हैं, वो कई बार होता है कि फिल्में नहीं हिट हुई, उसके जो भी कारण रहे हो, लेकिन गीत संगीत हिट हुआ है। हालांकि जो हिट फिल्में हैं उनके तो हिट हुए हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी फिल्में भी हैं, जैसे मैं अभी बात करूं मधुमती फिल्म, हालांकि वो भी हिट थी, लेकिन उसका गाना जो था कि डस गो पापी बिछुआ, इतना ज्यादा फेमस है। उसका इवन डांस, उसमें जो कपड़े पहने गए, उसका प्रवेश, वो सारा का सारा इतना मोहक है, इतना सहज, इतना आनंदमयी है कि वो लंबे समय तक आपके दिल पर राज करता है। इसी तरह से जैसे कि मैंने पहले बात की थी मदर इंडिया की, तो उसके भी सारे गाने, नौशाद का संगीत है, वो सारी धुनें भी लोक धुनों से ली गई हैं, और गाने भी उसी तरह से लिखे जाते थे, क्योंकि कहानी ऐसी है, परिवेश ऐसा है, तो वो जिस चरित्र के लिए गाया जा रहा है उस पर फिट होगा क्या, उस माहौल पर फिट होगा क्या, वो माहौल कहाँ का है, क्या होली का माहौल है, दिवाली का माहौल है, उसके लिए गाने लिखे जाएंगे। क्योंकि ये सारे त्योहार जो है हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं,
0: जी हाँ,
1: तो त्योहार भी उन कहानियों के साथ साथ चलते हैं, तो त्योहार चलते हैं तो इसलिए उन पर ऐसे गाने बनते हैं।
0: जी बिल्कुल, कई बार त्योहारों को केंद्र में रखकर भी गाने लिखे जाते हैं जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं अपने संगीत की वजह से।
1: जी बिल्कुल, जैसे कि होली की बात करें तो होली सबसे ज्यादा, चूंकि रंगीन त्योहार है ना, और उसमें जो मस्ती है, जो आनंद है, इसको लेकर के लगभग जब भी फिल्म निर्माताओं को, निर्देशक को अवसर मिला है, उन्होंने होली का गीत जरूर डाला है, पुराने समय से लेकर के अभी तक। यानी कि अभी की जैसे रणवीर कपूर की फिल्म की बात करें तो लास्ट फिल्म तक भी होली का गीत उसमें है। समय के साथ उसका टेक्सचर बदलता है, उसकी थोड़ी शब्दावली बदलती है, लेकिन माहौल वही रहता है होली का। जैसा कि मदर इंडिया से लेकर के या शोले, इतनी पॉपुलर फिल्म है, उसमें भी आता है होली का, चूंकि कृष्ण से भी, राधा से भी जुड़ता है, तो कृष्ण राधा का ऐसा चरित्र है। लगान फिल्म है जैसे, उसमें भी होली आती है, कृष्ण राधा की बात आती है, तो वो त्योहार भी हमारे साथ चलता है, तो इसलिए वो हमें याद रह जाता है।
0: जी बिल्कुल, जैसे आपने होली की बात की, होली के गीतों की बात की, तो होली के गीत जब हम सुनते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे जो देशी शब्द हैं वो मिलते हैं, जैसे बलम हो गया, छोड़ी हो गई, इस तरह की शब्दावली होती है, गुस्सा हो जाना, रूठ जाना, रिसाई गई, हमें सुनने को मिलती हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई जो फिल्म है, गीतों से अलग अगर हम बात करें तो अपने संवाद या डायलॉग्स की वजह से भी जानी जाने लगती है, जिससे कि सर मुझे शोले फिल्म का एक डायलॉग याद आता है जिसमें धर्मेंद्र जी अमिताभ जी से कहते हैं कि किस गुमताड़े में बैठे हो, तो कहने का अर्थ

0: है कि ऐसे अप्रचलित और रोचक शब्द लोगों पर एक अलग प्रभाव बनाते हैं। तो ऐसी कुछ फिल्में जो लोक भाषा के ऐसे ठेठ शब्दों से भरपूर हों, उनकी एक झलक आपके माध्यम से हम अपने श्रोताओं को दिखाना चाहते हैं।
1: देखिए, जब कहानियां वहां की हैं, चरित्र वहां के हैं, हमारे ग्रामीण परिवेश के, तो निश्चित रूप से उनकी भाषा ही वैसी होगी। क्योंकि जब लेखक लिखता है तो इस बात को ध्यान में रखता है, जैसे कि मैं कहूँ कहाँ जा रहे हो, अगर शुद्ध भाषा में ये है तो अगर वो अवधि का है, अरे भैया कहाँ जाते हो
0: जी,
1: इस तरह से आ जाएगा। तो जैसे ही ये संवाद आता है तो संवाद ही एक्चुअली चरित्र को प्रभावी बनाते हैं और उसको विश्वसनीय बनाते हैं
0: जी।
1: अगर वो उस तरह का चरित्र है गांव का और वो पूरी तरह से खड़ी बोली बोलेगा तो विश्वसनीय नहीं लगेगा, प्रभावी नहीं होगा
0: जी।
1: तो इसी तरह जब जब इस तरह के चरित्र लिखे जाते हैं, जैसे लगान का चरित्र होगा तो उसमें भी साला हम अंग्रेजन से लड़ेंगे, तो अंग्रेज अंग्रेजन से लड़ेंगे,
0: हाँ।
1: तो इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाएगा। अमिताभ बच्चन से लेकर के, गोविंदा से लेकर के आमिर खान तक, हर अभिनेता ने चाहा है कि मैं कोई ऐसा प्रभावी चरित्र करूं जरूर ग्रामीण, जो लोगों में रचा। बस आज भी मैं बताऊं कि इतनी फिल्में हिट हो जाएं, लेकिन शोले के बाद सबसे प्रभावी और बॉक्स ऑफिस पर हिट होने वाली फिल्म दंगल सारी दुनिया में इतना ज्यादा फेमस हुई है, जबकि पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश की फिल्म है
0: जी।
1: कि गांव में किस प्रकार से एक पिता अपने बच्चों को कुश्ती में लगाना चाहिए। अब कुश्ती जो खेल है कहाँ का है, ग्रामीण परिवेश का
0: जी।
1: हमारी छोरियां छोरों से कम है के
0: जी।
1: अब ये जब बात आती है तो उसमें जो मिठास, जो आनंद है ना, वो अद्भुत है। तो इसी तरह बहुत सारे संवाद आते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा कि वो प्रभावी और विश्वसनीय बनाते हैं, तो ऐसे लेखक जो होता है उसको इसीलिए लोक भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। नहीं तो क्या होगा कि वो शुद्ध शुद्ध हिंदी अगर हर चरित्र के लिए लिख देगा तो उसमें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होगा कौन बोल रहा है। तो जैसे उस करेक्टर की बारी आती है, वो बोलता है तो पता चल जाता है ये करेक्टर कहाँ का है। जैसे मैं बात करूँ चरित्र की, वो डाला कि आपने बात की, तो मदर इंडिया में थे वो कन्हैया लाल जी। अब कन्हैया लाल जी ने लगभग हर फिल्म में गांव का किरदार निभाया है और अक्सर लाला का किरदार। अरे कहाँ राधा बेटिया, कहाँ जात हो
0: जी।
1: अभी जब बात बोलते हैं वो, तो चरित्र कितनी तरह से सहज हो जाता है। उसी तरह से शोले में
0: जी
1: मौसी है, उसका किरदार निभाया लीला मिश्रा जी ने, उनके सारे के सारे संवाद कहाँ बेटवा, अरे सुनो। तो जब इस तरह से अवधि में बोलती है वो, उन्होंने सारा जीवन इतनी सहजता से अभिनय किया है कि कभी अभिनय लगा ही नहीं। उसका कारण यही था कि उन्हें उस परिवेश की भाषा पर पूर्णता से अधिकार था, वर्चस्व था उस भाषा पर, वहां के शब्दों पर। तो अगर संवाद लेखक ने कुछ आगे पीछे भी लिखे हैं तो उसको अभिनेता अपने अंदाज से बहुत सहज बना देता है, जो आपके अंदर सहज ही उतर जाता है और लंबे समय तक स्थायी बना रहता है।
0: अभी आपने गोविंदा जी का जिक्र किया था, उसको सुनकर ही होंठों पर मुस्कान आ जाती है। वो कहते कि खुद को मुगले आजम और हमको अनारकली समझे हो क्या, कितना नचा रहे हो,
1: कितना नचा रहे हो भैया।
0: ऐसे संवाद आते हैं, ऐसी बातें आती हैं जो कि अपने चरित्र को अमर कर देते हैं। तो कुछ ऐसे चरित्र और अगर आपके दिमाग में,
1: ऐसे और चरित्र मैं आपको बताऊं तो एक बहुत बड़ा फिल्म थी, शुरुआत में तो ज्यादा लोगों ने पसंद नहीं की लेकिन बाद में हिट और कल्ट मानी गई, वो फिल्म है तीसरी कसम। राज कपूर की अभिनीत ऐसी फिल्म थी जो पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश में रची बसी थी, जबकि राज कपूर को ग्रामीण परिवेश का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था। वो पूरी तरह से शहर में रचे बसे थे, मुंबई में ही पैदा हुए, मुंबई में ही रहे, यही पले बढ़े, लेकिन उन्होंने उस उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल कि चरित्र को बखूबी निभाया। उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात थी फणीश्वर नाथ रेणु की, जिन्होंने इस कहानी को लिखा था और इसको निर्देशित किया था वासुदा ने। तो उसमें इस तरह का हीरामन चरित्र है, उसका एक एक संवाद, एक एक बात, एक चरित्र, जो उसमें कार हीरामन बम्बई जाए हमका बुलाये जाए का। अब हीरामन इतना सुंदर नाम है, वो कहता मीता मितवा का कहे, मीता कहो मितवा कहो, तो मीता मितवा इस तरह के जो शब्द आ जाते हैं तो अपने आप उनके अंदर जो मिठास है वो हमारे बीच में बह जाती है। फिर हीराबाई कहते हैं कार हीरामन, जैसे मैंने कहा मुंबई जाके बुलाए जाए, वो हीरामन कहता है नहीं, तुरा जैसा गीत गाने वाली हमका दोबारा कहाँ मिली,
0: क्या बात।
1: तो ये पूरी तरह से उस परमेश में घुला मिला। जो दूसरा एक गाना उसका बड़ा फेमस हुआ था ना, पान खा संगा हमार
0: जी।
1: तो अब उसके साथ उस तरह का गीत, उस तरह का संगीत, और उस गीत में जैसा कि मैंने कहा कि लोक भाषा के सारे शब्द उठाए गए, धुनें भी उठाई गई होती है, और जो आज तक उस माहौल को, संवेदना को हमारे अंदर जीवित रखती है। आज भी जब आप देखते हैं तो आप बस आपके होठों पर मुस्कान आ जाएगी या आंखें नम हो जाएंगी, अगर जिसने उसको महसूस किया है। तो
0: आपने संगीत की बात की अरुण जी, तो जैसे पुराना संगीत जो है, हम उसकी बात करें, उसको लाने की बात करें, उसको आगे बढ़ाने की बात करें, तो आज के दौर में आपको क्या लगता है कि जो पुराना संगीत है उसके लिए कोई स्कोप बचा है, वो चलेगा, चल रहा है, या फिर वो विलुप्त हो जाएगा?
1: वो संगीत रहेगा ही, बार बार हमारी बात में निकल के आया है कि वो संवेदना, वो महक और वो उसकी खुशबू जो है ना, आज रिमिक्स भी उन्हीं गानों को चलाया जा रहा है जो गाने उस तरह से पॉपुलर थे, जो हमारे दिलों में बसे हुए थे। नए गानों को कोई रिमिक्स नहीं बना रहा है,
0: बिल्कुल सही बात।
1: उन गानों को आप बना करके कहीं पहुंचते नहीं है। जैसा कि मैं कहूं कि ये दिल्ली सिक्स का जो गाना है कबूतर वाला, मसकली मसकली, ये सारे गाने,
0: ससुराल
1: गेंदा फूल, वो सब लौट के आया है
0: जी।
1: नई फिल्मों में अगर पीपली लाइव में देखने जाए तो उसमें पूरी कहानी उसी तरह की है, उसके गाने उसी तरह के हैं। गंगा वसेपुर में आप देखें कि एक लोकगीत कितना सुंदर सा है, सया हमार
0: तार बिजली से,
1: तार बिजली से पतले हमारे पिया, जो गाना आया है तो क्या है, वो वही तड़का वो आता है उसमें, तब लोग बरबस एकदम उनके चेहरे खिल जाते हैं, लगता अरे अरे अरे वाह वाह वाह क्या बात है। तो ये कहानियां किस तरह की भी हो लेकिन बीच बीच में उनको लाना ही पड़ता है, वो मिठास चूंकि उसी में है। गीत की संगीत की बात हम कर रहे थे तो एक और बहुत फिल्म है जरूर हमको याद करना चाहिए, वो फिल्म है नदिया के पार
0: जी।
1: वो पूरी की पूरी फिल्म उसी परिवेश में रची बसी है, वही रिश्ते, वही भावनाएं। अब उसमें दो भाइयों का प्रेम, उसको घर को बचाना, उसमें सारे त्योहार भी आते हैं, सारे रिश्ते आते हैं, भौजी शब्द है। अब रिश्तों में भौजी ऐसा शब्द है, उसमें कैसी बढ़िया छेड़छाड़ है, उसमें मिठास है, उसमें आनंद है, उसमें एक दूसरे के बीच में खुलापन है, साथ में इज्जत भी है
0: जी।
1: तो उसमें उस गाने को लेके जोगी जी धीरे धीरे नदी के तीरे तीरे कौन दिशा में लेके चला रहे बटोहिया, तो जितने गाने हैं उस फिल्म के, उन गानों की वजह से ही वो फिल्म कहीं बहुत आगे गई है। गीत संगीत का इतना प्रभाव रहा है कि वो दूर तक जाती है, और लौट के कई बार क्या होता है कि वो गाने हम सुनते हैं और सुनने के बाद हम फिर से वो फिल्म देखते हैं। एक लेटेस्ट सिंगर थे, उन्होंने इस गाने को गा के पॉपुलर हुए, कौन दिशा में लेके चला रहे बटोहिया, बहुत दिनों से गाना गाते सिखाते रहे लेकिन उस रिमिक्स ने उनको कहीं आगे बढ़ा दिया है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर तरफ हम देखते हैं चकाचौंध और मॉडर्न कंटेंट का बोलबाला है, ऐसे में किस प्रकार से सांस्कृतिक सहजता जो है वो संरक्षित रह सकती है इस गीत संगीत के लिए, इसके लिए और क्या प्रयास किए जा रहे हैं आपके विचार से?
1: आज हम फिर से लौट रहे हैं, हमें लौटना ही पड़ेगा, बिकॉज जितनी मशीनी चीजें आएंगी कुछ देर के लिए वो आपको लुभा सकती है, वो आपको अच्छा लगेगा। जैसे कि खाने की बात कर रहे हैं तो खाने में कुछ देर आप पूरी पकवान खाएंगे, लौट के आपको चावल दाल खाना पड़ता है। आज डॉक्टर आपको बताता है कि आपको वही मोटा अनाज, वही देसी अनाज, जो इस धरती का, जो जमीन का है, वही खाना है, वही सब्जियां खानी है, वही मौसमी फल खाने हैं आपको जो जमीन के हैं। उसी तरह से वो गीत संगीत आपको फिर से ले जाएगा। जैसे आप देखिए एक फिल्म आई थी कांतारा
0: जी,
1: पूरी तरह से वनवासी पृष्ठभूमि पर आधारित है, कितने लोगों ने देखा, कितना पसंद किया। तो कहीं ना कहीं जो हम उसको ना ढूंढ रहे हैं, जब भी कोई ऐसी चीज मिलती हम झपट लेते हैं,
0: बिल्कुल।
1: तो जब भी ऐसा संगीत आएगा, जब भी ऐसा गीत आएगा, हम झपट पड़ेंगे, हम ले लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा डीएनए उस मिट्टी से जुड़ा हुआ है, जहाँ जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है। जब भी उसकी बात आएगी, अब फिर से सत्तू फेमस हो रहा है खाने में,
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं
1: कि आप सत्तू खाएं, आप मोटे अनाज खाएं, आप सावा कोदो लहर्रा मकई खाएं, सप्ताह में एक बार जरूर खाएं,
0: बिल्कुल।
1: तो इसी तरह से वो गीत और संगीत लौटेगा जिसमें रिश्ते हैं, जैसा कि मैंने भौजी का रिश्ता कहा था, तो उस तरह के रिश्ते लौटेंगे, बहन के रिश्ते लौटेंगे। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमारी जो फैमिलीज हैं वो न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, रिश्ते गायब होते जा रहे हैं, मामा मामी चाचा चाची वो सब कम होते जा रहे हैं, क्योंकि अगर एक बच्चा है तो उसका भाई नहीं बहन नहीं, भाई बहन नहीं तो जीजा नहीं, तो इस तरह से रिश्ते खत्म होंगे। तो कहीं ना कहीं उनको लौटाने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी, और ये काम फिल्में करेंगी, यह मनोरंजन करेगा, यही हमें लौटाएगा, यही बताएगा। और फिर से हम कह रहे हैं कि उन रिश्तों की तरफ भी हम लौटेंगे, परिवार भी बढ़ाएंगे, जो बहुत जरूरी है हमारे बच्चे रहने के लिए।
0: तो जब बात नैतिकता की होती है तो पुरानी फिल्मों से हम किस तरह से सीख सकते हैं चीजों को, जो आज की फिल्मों में हम देखते हैं कि वो चीजें शायद कहीं ना कहीं कम है या ना के बराबर है।
1: जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन एक बात यही है कि परिवर्तन शाश्वत है
0: जी।

0: परिवर्तन होना है और होगा, लेकिन कितना परिवर्तन, किस हद तक परिवर्तन, कैसा परिवर्तन, उस परिवर्तन के तहत कहीं हम खत्म तो नहीं हो रहे, हमारी वो चीजें, हमारी संवेदना, हमारी मनुष्यता तो नहीं खत्म हो रही, इस कीमत पर परिवर्तन कर रहे हैं क्या हम? तो निश्चित रूप से जब हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, टेक्नोलॉजी आती है, फिर परिवर्तन आता है, लेकिन उसको बचाए रखने के लिए कलाओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कला, साहित्य, संगीत, उसकी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वही संवेदना को बचाएगा। टेक्नोलॉजी आपकी संवेदना को नहीं बचाएगी, टेक्नोलॉजी आपके रिश्ते को नहीं बचाएगी, बचाएंगे क्या कलाएं। इसलिए हमारे जीवन में कलाओं का बहुत ही महत्व है और फिल्में आज इतनी ज्यादा प्रभावी है कि फिल्मों को देख करके ही हम अपने जीवन में व्यवहार को बदलते हैं। तो फिल्मों की जिम्मेदारी है, इसलिए जब ऐसा कुछ हो रहा है जो हमारे समाज के लिए, व्यक्तित्व के लिए, रिश्तों के लिए अनावश्यक है, गैर जरूरी है, नुकसानदेह है, तो हमें रास्ता दिखाने का काम भी सिनेमा को करना है। वो सिनेमा लेगा कहाँ से? वो हमारे लोक साहित्य से लेगा, लोक जीवन से लेगा, लोक धुनों से लेगा, वही से लेगा, तब फिर से हमारा जीवन आनंदमय होगा, क्योंकि कला का यही काम है। लोग कह देते हैं कि कला समाज का दर्पण है, समाज में जो हो रहा है वही दिखाता है। मैं इस बात को आधे रूप में कंडेम करता हूँ। कला समाज का दर्पण है, आपने कह दिया, लेकिन जो दर्पण है वो डेड है, एक वस्तु है, एक धातु है, लेकिन कला धातु नहीं है, कला जीवंत है। कला में दिशा देने की क्षमता है, दर्पण में दिशा देने की क्षमता नहीं है, वो केवल दिखा दे रहा है कि जो है, लेकिन कला एक कदम आगे बढ़ती है। और ये हो तो रहा है, समाज ऐसा है, आगे में वो दिखाएगी, लेकिन समाज को कैसा होना चाहिए ये काम कला करती है, ये फिल्में करती है, ये संगीत करता है। हर कलाओं का उद्देश्य यही है कि मनुष्यता के अंत तक जाना, मनुष्य और बेहतर और बेहतर और बेहतर मनुष्य बनने की दिशा में प्रवृत्त करना कला का काम है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने सर। लेकिन आजकल वो कह रहा है कि जो समाज में हो रहा है वो पर्दे पर नहीं है, जो पर्दे पर हो रहा है वो देखकर समाज का निर्माण हो रहा है। और आज के दौर में जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, मुझे लगता है वो आजकल की फिल्में देखना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि कुछ फिल्मों में हम ऐसा पाते हैं अत्यधिक क्रूरता है, हिंसा है, गिरते नैतिक मूल्य हैं, तो ऐसे में वो स्वयं भी नहीं जाना चाहते हैं और वो ऐसा भी चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे भी इन चीजों से दूर रहे। तो चरित्र निर्माण के लिए आजकल की फिल्मों को देखा जाना चाहिए या नहीं देखा जाना चाहिए, ये किस तरह के समाज का निर्माण करने की ओर अग्रसर है?
0: बहुत जरूरी सवाल आपने किया है और ये होना चाहिए और सब को इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि दर्शकों की भी जिम्मेदारी है। अगर वो उसको डिनायल मोड में आए और उसको नकार देंगी, पूरी तरह से उसका बहिष्कार कर देंगी, तब वो लोग उसको बनाना बंद कर देंगे। क्योंकि है क्या कि दो तरफा मामला है, निर्माता ये देखता है कि ये चीज चल रही है, इससे हमें पैसा मिल रहा है, क्योंकि उसका पहला उद्देश्य हो जाता है, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि पहला उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। पहले बहुत सारे ऐसे निर्माता, निर्देशक रहे हैं, लेखक रहे हैं, कि उनका पहला उद्देश्य ये नहीं होता था। पहला उद्देश्य होता था कि हम ऐसी कहानी बनाएं जो जरूरी है समाज के लिए। लेकिन अभी निश्चित रूप से सबके अंदर ये प्रवृत्ति आ गई है, इसमें लालच बहुत ज्यादा है कि कितना ज्यादा धन कमा ले, ये पीछे रह जाता है कि हमें करना क्या है, बताना क्या है, इसलिए कुछ भी ऐसी चीजें डालते हैं। इतना बड़ा समाज है तो बहुत तरह के लोग हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो देखना पसंद करते हैं, वो जाते हैं, इनकी वजह से चीजें हिट होती है। फिर क्या हो कि जो लोग नहीं देखना चाहते, जो समाज के प्रति जिम्मेदार है, उनको लगता है कि समाज को बेहतर बनना चाहिए, वो लोग बेचारे पीछे रह जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके प्रयास छोटे पड़ जाते हैं। तो हमें समाज को भी जागृत करना चाहिए, बाकी लोगों को, कि भाई ऐसी चीजों का बहिष्कार करो। जब आप बहिष्कार करेंगे, कम देखेंगे, तो लोग भी कम बनाएंगे। तो ये दोनों की जिम्मेदारी है, मेरा ऐसा मानना है। और जैसा कि आपने बताया कि अतिहिंसा की वजह से लोग उससे दूर हो रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं, रिश्तों का ऐसा घालमेल चल रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं, तो ये सब चीजें कम आनी चाहिए। और ये अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये दिशा देने का काम हमारा लोक साहित्य ही करेगा, लोक संगीत करेगा, और हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं समाज के, वो भी इन चीजों का कहीं ना कहीं विरोध करें। विरोध कर सकते हैं कि उसको किस तरह से समाज के ऐसे लोगों को कहें कि भाई ये चीजें मत देखो, ये उचित नहीं है। और जो बना रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं जागृत किया जाए कि केवल पैसा लेकर के आप क्या करेंगे। जो समाज से फैली हुई चीज है बुराई, अगर आपके घर में आ जाएगी तो आप क्या करेंगे? आप भी नहीं बचेंगे। और तब जागेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। कई बार क्या है ना कि बहुत छोटी छोटी बातें हैं, उनको बड़ी फिल्मों के जरिए नहीं, छोटी फिल्मों के जरिए, छोटी कहानियों के जरिए, जैसे कि पंचतंत्र की कहानी की बात करें, अब छोटी छोटी कहानियां हैं, वो कहानियां जानवरों के जरिए कही गई हैं, ये चरित्र जानवर है। अब इसलिए छोटे बच्चों को चूंकि जानवर आकर्षित करते हैं, सुंदर लगते हैं, कछुआ खरगोश, अब कछुआ खरगोश लेके आएंगे बच्चों के साथ तो उनको आनंद लगता है। तो इसी तरह जरूरत है कि इस तरह की चरित्र बने जाए, इस तरह का संगीत बना जाए और उनको बताया जाए तो लगेगा हाँ ये ठीक है।
1: मतलब कि कड़वी गोली खिलानी है तो उसको बताशे में रख के खिला दो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो करना पड़ेगा, वो कला की जिम्मेदारी है और कला कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारी से भटक रहा है और इसके पीछे कारक है अति लालच और हमें इससे मुक्त होना पड़ेगा।
1: जी कहने का अर्थ है कि सारी चीजें इसी के अंदर समाहित हैं, लेकिन बस जरूरत है तो क्या उचित है और क्या अनुचित है उसका भेद करके कुछ बढ़िया सा समाधान लेकर सामने आने की, ताकि हमारा जो समाज है उसको एक अच्छी और नई दिशा मिले। और अरुण जी बस चलते चलते आपसे ये कहना चाहूंगी कि यदि कोई और ऐसी जरूरी बात या जानकारी जो मुझसे रह गई है पूछने से और आप हमारे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं तो कृपया आप बताएं।
0: मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसा सिनेमा, ऐसा साहित्य पढ़ें, आसपास अपने घर में रखें कि जिससे कि इंस्पायर हो सके, जो कि हमें जोड़ने वाला हो, तोड़ने वाला ना हो, और वो खाली आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, जैसे आपको मिठाई बहुत पसंद है लेकिन आप इतनी आप खा लेंगे तो आपको नुकसान करेगी। तो लिहाजा जैसे कि हम अच्छे खाने की तरफ लौट रहे हैं, हम विटामिन्स ले रहे हैं अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए, हम जैसे कि व्यायाम कर रहे हैं अपने को स्वस्थ रखने के लिए, अपने को जवान रखने के लिए दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं, तो अपना मस्तिष्क ठीक रहे, आपका मन सुंदर रहे, तो जरूरी है कि आप अच्छे साहित्य, अच्छी कला, अच्छी फिल्मों की तरफ लौटें। जब आसपास आपके अच्छा साहित्य, अच्छी फिल्में रहेंगी, लोक साहित्य रहेगा, तो निश्चित रूप से आपका परिवार, आपके बच्चे और समाज सुंदर सुदृढ़ बनेगा।
1: अरुण जी आप हमारे स्टूडियो में आए, हिंदी सिनेमा और लोक साहित्य के संबंधों पर आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हिंदी सिनेमा में लोक साहित्य, अभी आप इस विषय पर भेंट वार्ता सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे फिल्म समीक्षक और साहित्यकार श्री अरुण शेखर और आपसे बात कर रही थी श्रीमती कल्पना शुक्ला। और आइए अब सुनते हैं सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां। आलेख है युवा पत्रकार सुश्री निशा तरन्नुम का। दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन एवं हिंदी प्रतिभा पुंज संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी प्रतिभा प्रदर्शन समारोह का आयोजन गत 6 जून को हिंदी भवन आईटीयू में किया गया। इस अवसर पर दिल्ली एनसीआर के विभिन्न कवि और साहित्यकार उपस्थित थे। समारोह का शुभारंभ द्वीप प्रज्वलन एवं सुरम्य शर्मा की नृत्य प्रस्तुति सरस्वती वंदना के साथ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती इंदिरा मोहन और श्री राजेश श्रीवास्तव ने की। सानिध्य श्रीमती सविता चड्डा का था। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री ऋषि कुमार शर्मा, डॉ विवेक गौतम को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर रवि शर्मा मधु, डॉ सुधा शर्मा पुष्प ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का अंगवस्त्र, माला एवं पुस्तक से स्वागत किया। प्रथम सत्र में विभिन्न आयु वर्गों के 20 प्रतिभागियों ने कविता पाठ, भाषण, गीत एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम का प्रभावी संचालन नीलम मदान, सुश्री प्राधान्या शर्मा और सरिता गुप्ता ने किया। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम सौहार्द साहित्य ऊर्जा एवं हिंदी भाषा के प्रति समर्पण के वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। श्रीमती तरुणा पुंडरी एवं भावना अरोड़ा ने केआर मंगलम विद्यालय के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने में विशेष भूमिका निभाई। 7 जून 2026 को काव्यशैली हिंदी मासिक पत्रिका द्वारा आयोजित काव्यशैली वार्षिक साहित्य सम्मान समारोह 2026 का भव्य आयोजन साहित्य सदन मंगोलपुरी खुर्द दिल्ली में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं द्वीप प्रज्वलन के साथ हुआ। समारोह की अध्यक्षता देश के प्रसिद्ध शायर मंगल नसीम साहब ने की। अनिल वर्मा मीत के आतिथ्य में काव्यशैली की संपादक शैली भागवत आस एवं सह संपादक सावित्री मलिक ने मंच पर देश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे काव्यशैलियों के सदस्य, कवियों और साहित्यकारों को काव्यशैली साहित्य सम्मान 2026 प्रदान किए। संस्था द्वारा साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले साहित्यकारों को काव्यशैली साहित्य सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र भेंट किए गए। सम्मानित सदस्यों में सर्वश्री सावित्री मलिक को काव्य शैली विशिष्ट साहित्य सम्मान एवं संगीता अलावत, पूनम शर्मा, डॉक्टर साधना अग्रवाल, कमला सिंह जीनत, तुलिका सेठ, कीर्ति रत्न, दास प्रेम, सुनीता भारल, डॉक्टर पुष्पा जोशी, लक्ष्मी कानोड़िया, जयकिशन, राजेश तंवर, राजबाला राज, संजय कुमार गिरी को सम्मानित किया गया। साहित्य सम्मान के साथ सरिता प्रीतम की पुस्तक कॉम इज योर सुपर पावर।

0: शैली भागवत के गजल संग्रह सहर मिल गई का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर काव्य शैली में कई अंक का विमोचन भी किया गया। काव्य शैली के संपादक शैली भागवत आस ने काव्य शैली की वार्षिक यात्रा पर प्रकाश डाला। इसके आगामी वर्ष के कार्यक्रमों पर चर्चा करते हुए कहा कि काव्य शैली मात्र एक पत्रिका नहीं बल्कि सार्थक साहित्य को सहेजने का प्रयास है। इसकी शुरुआत इसी उद्देश्य के साथ की गई कि साहित्य शिक्षा के माध्यम से कला और संस्कृति को संरक्षित किया जाए। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से नवोदित और वरिष्ठ कलमकारों की रचना प्रकाश हो रही है। अब तक लगभग 200 से अधिक रचनाकारों को पत्रिका में स्थान मिला है। वर्तमान में इसकी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की इकाई के साथ इंदौर इकाई भी सक्रियता से काम कर रही है। कार्यक्रम के दौरान सर्वश्री बबीता उपाध्याय, डॉक्टर वीरेंद्र पाठक, गुंजन अग्रवाल, नरेंद्र शर्मा, डॉक्टर गीतांजलि अरोड़ा, डॉक्टर शंभू पवार, अंकिता गोयल सावन, सुमन नागर सरल आदि कवियों और कवित्रियों ने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं और काव्य पाठ कर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। प्रसिद्ध शायर मंगल नसीम ने अपने अध्यक्ष भाषण में काव्य शैली के आयोजन को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें अपनी लेखनी के सार्थक साहित्य का सृजन करते रहना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आयोजन एवं संयोजक साहित्य श्री संस्थापक रामश्याम हसीन ने सभी अतिथियों, सम्मानित साहित्यकारों, कवियों, श्रोताओं एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। वैश्विक हिंदी परिवार की ओर से 8 जून 2026 को साहित्य अकादमी सभागार में कवि एवं गीतकार डॉक्टर बाल स्वरूप राही के 90वें जन्मदिवस के अवसर पर एक साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात साहित्यकार श्रीमती इंदिरा मोहन ने की। समारोह में सुप्रसिद्ध हास्य कवि मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। यह कार्यक्रम वैश्विक हिंदी परिवार के अध्यक्ष श्री अनिल जोशी और सुश्री कवि श्री राजेश चेतन के सानिध्य में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर प्रतिष्ठित साहित्यकार सर्वश्री अलका सिन्हा, दोहाकार नरेश शांडिल्य, मशहूर गजलकार विज्ञान व्रत, कवि राजेंद्र राज निगम, विनयशील चतुर्वेदी उपस्थित थे। जहां एक और राही जी के गीत और मुक्तक पढ़कर उनको शुभकामनाएं दी गई, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के प्रबुद्ध रचनाकार भी उपस्थित थे। 8 जून 2026 को दिल्ली विश्व मैत्री द्वारा ऑनलाइन चौपाल का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम संस्था के संस्थापक डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन संतोष बंसल द्वारा किया गया। इस अवसर पर ऑनलाइन जुड़ने वाले कवियों में सर्वश्री शकुंतला मित्तल, पुष्पा सिन्हा, डॉक्टर बबीता किरण, रेखा अग्रवाल, राधा गोयल, वंदना रानी दयाल, सरिता गुप्ता, अंजना गर्ग ने अपनी प्रेरणादायी रचनाओं से समा बांधे रखा। 14 जून को माँ शारदे काव्य मंच पर आयोजित गीतों के संग गजलों के रंग काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम वरिष्ठ कवि डॉक्टर जयसिंह आर्य की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर परितोष कुमार मुख्य अतिथि थे। सर्वश्री अर्पणा अंजन, रश्मि ममगई, वनिता गुप्ता विशिष्ट अतिथि थी। इस कार्यक्रम का संचालन सोहनलाल शर्मा प्रेम द्वारा किया गया। अभी आप सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियाँ सुन रहे थे। आलेख था सुश्री निशा तरन्नुम का। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यही संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
1: अब आप सुन रहे थे कार्यक्रम साहित्यिकी, और आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, हमारे अतिथि।
2: नमस्कार, मैं काजल आकाशवाणी के हमारे अतिथि कार्यक्रम में अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ हैं पद्मश्री से सम्मानित मलखम की परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले आदरणीय उदय विश्वनाथ देशपांडे जी। मलखम पितामह के नाम से मशहूर आदरणीय पद्मश्री श्री उदय विश्वनाथ देशपांडे जी ने न केवल इस प्राचीन भारतीय खेल को जीवित रखा बल्कि इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाई। आपका हमारे स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने मलखम्ब को बचाने और दुनिया भर में फैलाने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, बचपन से ही मलखम्ब से जुड़ाव कैसे बना आपका?
3: मैं जब 2.5 साल का था
2: जी,
3: तो मेरी माँ मुझे उनके पिताजी के पास, मेरे नाना जी के पास ले जाते
2: जी,
3: और वो स्वतंत्र आंदोलन में बहुत अग्रसर थे
2: जी,
3: और जो मुंबई में एक अग्रगण्य व्यायाम संस्था है
2: जी,
3: श्री समर्थ व्यायाम मंदिर, उसके जो पूज्य संस्थापक है व्यायाम महर्षि प्रहलाद लक्ष्मण काले गुरु जी, इनके वो बहुत अच्छे करीबी दोस्त थे, दोनों स्वतंत्र सैनिक थे। तो जब हम पुणे जाते थे तो सुबह 5 बजे उठकर नाना जी योगाभ्यास करते थे
2: जी,
3: और मैं उनके सामने बैठकर जैसा वो करते थे वैसे करने की कोशिश करता था
2: जी।
3: तो उन्होंने जान लिया कि इस

0: मुझे दिलचस्पी है
1: जी।
0: तो उन्होंने माँ को बता दिया कि मुंबई में जाओगे तो श्री समर्थ व्यायाम मंदिर शिवाजी पार्क में काले गुरु जी है, उनके हाथ में उदय को सौंप देना
1: जी।
0: तो उसी एक पेज से मैंने समर्थ व्यायाम मंदिर में जाना शुरू किया और काले गुरु जी हमें कुश्ती मलखम इस पे बेसिक ट्रेनिंग देते थे। मेरा स्कूल 7 बजे का था
1: जी।
0: तो सुबह मैं 5:30 से 7:30 व्यायाम चला जाता था और फिर घर में जाकर नहा धोकर 7 बजे फर्स्ट बेल के पहले स्कूल में पहुंच जाता
1: क्या
0: था।
1: बात।
0: तभी से एक लगाव शुरू हो गया मलखम को
1: जी।
0: और खुद मलखम करने के बाद उसके जो फायदे मुझे महसूस हुए तो मैंने सोचा कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की बहुत जरूरत है। कॉलेज का भी मेरा सुबह 8 बजे का प्रैक्टिकल था तो सुबह व्यायामशाला जाना, वहीं से प्रैक्टिकल को जाना, फिर घर आके ब्रेकफास्ट लंच करके वापस लेक्चर को जाना और शाम को व्यायाम चला, रात को घर, यही रूटीन बन गया। फिर मैं कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर के ज्वाइन हो गया ग्रेजुएशन के बाद 75 में, फिर सुपरिंटेंडेंट, फिर असिस्टेंट कमिश्नर, फिर डिप्टी कमिश्नर करके 48 साल सर्विस करके मैं 2013 में एज अ डिप्टी कमिश्नर रिटायर हो गया। तो तब भी रूटीन यही था, सुबह व्यायामशाला, फिर घर जाना ऑफिस, ऑफिस से फिर वापस व्यायामशाला, रात को घर जाना। तो इवन मेरे शादी के दिन भी सुबह में पहले व्यायामशाला गया और बाद में शादी के लिए हाजिर हो गया।
1: बहुत अनुशासित जिंदगी रही आपकी, तो क्या कहेंगे जिंदगी में अनुशासन कितना जरूरी है।
0: बहुत जरूरी है और ये सिर्फ उन्हीं की वजह से, जैसे हम कहते हैं कि बेस्ट कोच जो अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन एक्सप्लेन करता है वो अच्छा टीचर है, जो डेमोन्स्ट्रेशन करता है उससे बेहतर है, इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, वो बेस्ट टीचर है। तो काली गुरु जी बेस्ट टीचर थे, उनके पास से ये डिसिप्लिन और ये सब लगाव चालू हो गया।
1: जिंदगी में किसी चीज को करने के लिए पैशन, जो जुनून, जो पागलपन है, उसकी बहुत जरूरत रहती है, पैशन का होना जरूरी है।
0: कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज ये मेरा प्रोफेशन था और मलखम ये मेरा पैशन
1: रहा है आपका। मलखम को अब कई देशों में जाना जाता है, डेमो और ट्रेनिंग कैंप किस तरह से आयोजित किया और अमेरिका, यूरोप आदि में इसका कैसा अनुभव रहा?
0: पहले मैंने मुंबई में चालू किया, मेरी व्यायामशाला में 1-2 बच्चे मलखम करते थे, आज मेरी व्यायामशाला में डेली 100 लड़के 100 लड़कियां इस मलखम का प्रशिक्षण लेते हैं। अभी 36 डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में और हर एक डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड मलखम एसोसिएशन है और मलखम का प्रशिक्षण हर एक जिले में दिया जाता है
1: जी।
0: और उसके बाद मैंने महाराष्ट्र के बाहर काम करना शुरू किया तो आई वॉज द सेक्रेटरी ऑफ मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो उस समय सिर्फ 4 राज्य थे, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, यूपी, लेकिन आज पूरे भारतवर्ष में 34 राज्य है जहां मलखम नियमित रूप से चलता है, मलखम के एसोसिएशन है और मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया को एफिलिएटेड है। मलखम को भारत के बाहर ले जाना चाहिए
1: जी।
0: तो पहले मैं अमेरिका गया, 35 मलखम की वर्कशॉप ले लिया, तो वहां के जो इंडियन लोग थे उन्होंने हर जगह पे जहां जहां इंडियन कम्युनिटी है अच्छे ढंग से लोगों के सामने
1: प्रस्तुत किया
0: और बहुत लोगों ने मलखम का प्रशिक्षण लिया
1: जी। एक विलुप्त होती जो ये कला है खेल की, ये आपने इसको रिवाइव किया, उसको जिंदा किया, तो भारत से बाहर कितना पॉपुलर है ये विदेशों में, खासतौर पर?
0: विदेशों में अभी अभी बहुत पॉपुलर हो गया है। जैसे मैं 2004 में पहली बार जर्मनी गया था
1: जी जी,
0: तो वहाँ पे 50 बच्चों का ट्रेनिंग लिया 8 दिन का। तो 8 दिन के बाद जब उनका समापन हुआ तो उन बच्चों ने 8 दिन में क्या प्रशिक्षण लिया उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया। हर साल वो मुंबई से मुझे बुलाते हैं, मैं 10 इंडियन बच्चों को लेकर वहाँ जाता हूँ, वहाँ 50-50 जर्मन बच्चों के 2 शिविर लगते हैं, तो एक साल में 100 जर्मन बच्चे मलखम सीखते हैं। तो अभी 16 साल में 1600 जर्मन बच्चे मलखम सीखे हैं। तो मलखम आपको सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी कंकर समर्थ बनाता है, तो
1: आपकी मेंटल हेल्थ को मजबूत करता है,
0: बहुत मजबूत करता है, स्ट्रांग बनाता है। और आजकल की जीवन शैली में बचपन से ही बच्चे मोबाइल हाथ में लेते हैं और फिर लैपटॉप, कंप्यूटर्स, फिर वो मैदान पे जाकर खेलना भूल जाते हैं और 35-40 साल में उनकी कमर दर्द चालू होता है, पीठ दर्द चालू होता है, नेक एक चालू होता है। तो मलखम रीढ़ की हड्डी को सबसे ज्यादा अच्छा व्यायाम देता है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा व्यायाम।
1: इसको काफी ख्याति मिल रही है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी और भारत में भी, जहां लोग इसको भूल रहे थे अब इसको और ज्यादा रिवाइव करने किया है आपने। आप खुद एक राष्ट्रीय चैंपियन रहे हैं और फिर कोचिंग की तरफ मुड़े, एक खिलाड़ी से कोच बनने का सफर कैसा रहा? किस तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको, कैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा?
0: जब मैं खुद मलखम करता था छोटे उम्र में,

0: बाकी मेरे उम्र से छोटे लोगों को सिखाना शुरू किया और इससे हम कंपटीशन में जाते थे तो वो अंडर 10 अंडर 12 एज ग्रुप में खेलते थे और मैं अंडर 18 एज ग्रुप में खेलता था, बाद में अबो 18 एज ग्रुप में खेलता था। तो मैंने अपने पास कम ध्यान दिया, उनके पास ज्यादा ध्यान दिया। इसके लिए बहुत सारे मेरे 12 लड़के लड़कियां हैं जो मलखम में नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं और उन्होंने अच्छे अवार्ड हासिल किए हैं। यही मेरी पहले से तमन्ना थी और मैंने मलखम प्रचार प्रसार को ज्यादा ध्यान दिया।
1: क्या बात, क्या बात। जब आपको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया तो क्या आपकी आपके मन में किस तरह की भावनाएं उमड़ी और किस तरह की कैसा फील हुआ आपको?
0: मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ये मुझे मिलेगा, लेकिन जब पद्मश्री के लिए मुझे नामांकित किया गया मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे पहले से जितने लोगों ने मलखम में काम किया है ये उनका पुरस्कार है, सिर्फ मेरा पुरस्कार नहीं है। और मेरे गुरु जी जो है काली गुरु जी, उन्होंने मुझे मलखम सिखाया, उनके गुरु जो माणिक राव जी हैं, जुम्मा दादा के शिष्य है जिनके जुम्मा दादा व्यायाम मंदिर बड़ौदा में, बस यही गुरु परंपरा है। मेरे सामने उनके सब चेहरे आ गए कि जिनकी वजह से आज मुझे पद्मश्री मिल रहा है।
1: क्या बात, आपको पद्मश्री के अलावा अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुके हैं।
0: मुझे नहीं मिले लेकिन मेरे स्टूडेंट्स
1: को मिले हैं। तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी की भावना और ज्यादा बढ़ जाती है। तो मलखम्ब में पुरुष और महिला दोनों वर्ग हैं, साथ ही एरियल और पोल मलखम्ब भी बहुत लोकप्रिय हो रहा है। महिलाओं को इस खेल में लाने के लिए क्या खास कोशिशें की आपने?
0: ये मेरे मलखम्ब की जर्नी में ये इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स हैं। जैसे मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया में सिर्फ लड़के मलखम्ब करते थे, लेकिन मैंने लड़कियों को मलखम्ब की कॉम्पिटिशन शुरू की। जैसे 1984 में जो बड़ौदा में जुम्मा दादा व्यायाम मंदिर में मलखम्ब की फोर्थ नेशनल हो गई, दैट वाज द फर्स्ट नेशनल फॉर द वुमेन कॉम्पिटिटर्स। उस समय तीन टीम्स थी वहां पर, एक महाराष्ट्र की थी, एक गुजरात की थी और एक कर्नाटक की थी। और तीनों टीम्स के जो खिलाड़ी थे उनको मैंने तैयार किया था। कर्नाटक में जाकर टीम तैयार की, उनको नेशनल में भेज दिया, फिर नेशनल के पहले जुम्मा दादा व्यायाम मंदिर में जाकर वहां की लड़कियों को ट्रेनिंग किया। तो एक महिलाओं का मलखम में सम्मिलित होना ये बड़ी उपलब्धि है ऐसे मुझे लगता है। फिर वैसे ही लड़कियां रूप मलखम करती थी, लड़के पोल मलखम करते थे, तो मैंने लड़कियों को भी पोल मलखम कराना सिखाना शुरू किया। वो मेरी व्यायामशाला की शुरुआत होगी। अब जहां जहां मैं आउट ऑफ इंडिया भी गया, कजाकिस्तान गया या इंडोनेशिया गया, मलेशिया गया, एशियन कंट्रीज में हांगकांग सिंगापुर चाइना जापान या यूरोपियन कंट्रीज में स्पेन पुर्तगाल इटली फ्रांस जर्मनी नीदरलैंड ऑस्ट्रिया ये सब जगह पर मैंने लेडीज को भी पोल मलखम सिखाया। और फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप हमने 2019 में मुंबई में ऑर्गेनाइज की, तो उसमें लोगों का विश्वास नहीं बैठता है कि फर्स्ट पोल मलखम पर लड़की जो आई वो जापान की थी, काइके टाकेमोटो।
1: क्या बात।
0: और दूसरी लड़की डेलिया सिरुटी जो इटली की थी, और थर्ड थी हिमानी परब जो मेरी समर्थ व्यायाम मंदिर की स्टूडेंट थी।
1: क्या बात।
0: और इंडिया को पोल मलखम में थर्ड प्लेस मिला, लेकिन ओवरऑल पोल एंड रूप मिलकर हिमानी चैंपियन हो गई। और उसी से मलखम का रास्ता पोल मलखम लड़कियों के शुरू
1: हो गया, खुल गया। जी जी। अभी हम गुरु शिष्य की बात कर रहे थे, तो एक गुरु के रूप में आप अपने शिष्यों में कौन से मूल गुण जो गुण होते हैं वो विकसित करना चाहते हैं?
0: एक तो लगन उनमें होनी चाहिए। आजकल के लड़के मे बी ड्यू टू मोबाइल और अन्य उनका एक कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। आज यहाँ देखा, कल वहां देखा, परसों वहां देखा, ये खेल छोड़कर वो खेल में गए, उसको छोड़कर फिर ये खेल में आ गए। तो एक उनको कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। जब मैं मलखम करता था लोगों ने मुझे ये भी बताया था, देशपांडे जी ये मलखम से जिम्नास्टिक्स आप करते हैं, तो जिम्नास्टिक्स ज्यादा इंटरनेशनल गेम है, तो जिम्नास्टिक्स में आपके बच्चे भी इंटरनेशनल हो जाएंगे, ओलंपिक तक पहुंच जाएंगे, तो आप मलखम छोड़ दो, जिम्नास्टिक की ओर देखो। लेकिन मैंने ये कहा था कि जो खेल पहले से इंटरनेशनल है उसमें काम करने से, जो खेल इंटरनेशनल नहीं है वो अपना खेल है उसको इंटरनेशनल कैसे करे, ये सोचना हमारा फर्ज है। और मैंने कॉन्सेंट्रेट किया। तो जिनको मलखम सीखना अच्छा है उनको यही चाहिए कि एक तो कॉन्सेंट्रेशन, रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर मेहनत। आज एग्जाम है, आज नहीं जाएंगे, आज दोस्तों के साथ कहीं पार्टी है तो नहीं जाएंगे, वहां जाएंगे, तो तपश्चर्या है, वो
1: साधना बहुत जरूरी है।
0: और जो इस मार्ग पे रहते हैं वही ये अचीव कर सकते हैं। लोगों को जब मलखम दिखाते हैं तो बहुत बहुत

0: डिफिकल्ट एलिमेंट्स करते हैं, तो मैं उनको पूछता हूँ कि सबसे डिफिकल्ट कौन सा है, तो ये है वो एलिमेंट है, वो नाम बताते हैं। सातत्यासन आप नियमित रूप से जो करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट
1: सबसे
0: है, वो
1: इम्पोर्टेंट
0: जब करेगा वो बाकी सब आराम से आ जाएंगे।
1: जी बिल्कुल। और अंत में उन हजारों छात्रों को, उन हजारों खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपसे प्रेरित होकर मलखंभ सीख रहे हैं?
0: मैं उनको यही कहूंगा कि यदि आप मलखम करते हैं तो उसको जारी रखिए, सिर्फ कंपटीशन कंपटीशन ये मकसद नहीं है आपका, लेकिन मलखम से जो बेनिफिट्स होते हैं, मलखम गिव्स यू मेंटल स्ट्रेंथ, मलखम आपके इंटरनल सिस्टम्स को डेवलप करता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है या रेस्पिरेटरी है या सर्कुलेटरी है, जिससे डिसीज रेजिस्टेंस पावर आपकी बढ़ जाती है।
1: जी
0: कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपने हेल्थ के भरोसे आराम से जी सकते हैं। और मलखम से जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज डेवलप होते हैं, जैसे कंसंट्रेशन डेवलप होता है, मेमोरी डेवलप, उससे आपको पढ़ाई में बहुत अच्छा फायदा होता है।
1: जैसे आजकल मेंटल हेल्थ की बहुत बात करते हैं
0: एग्जैक्टली
1: तो
0: तो मेरी एक लड़की थी प्रांजल पाटिल, जो टोटली ब्लाइंड है, तो बचपन से वो मलखम करती थी, फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक।
1: जी
0: नाउ शी इज द फर्स्ट ब्लाइंड आईएएस ऑफिसर इन इंडिया,
1: क्या
0: और
1: बात
0: जो
1: है।
0: दिल्ली में एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करती है। तो मलखम के ये फायदे बहुत हैं, बाकी कहीं पर भी जाने से आपको मलखम करने से ज्यादा फायदा मिलेगा।
1: इसके अलावा आपके क्या क्या, आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है?
0: एक तो ये है कि मलखम में आज तक बहुत काम किया है, लेकिन जो काम करना है ना इससे बहुत ज्यादा है। जैसे अभी मलखम एशियन गेम्स में नहीं है, कॉमनवेल्थ में नहीं है, हम ड्रीम करते हैं कि मलखम को ओलंपिक तक हमें पहुंचाना
1: ओलंपिक तक
0: है,
1: ले जाएं।
0: तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा देशों में मलखम पहुंचाना है। अभी मैं 52 देशों में गया हूं, लेकिन जब ओलंपिक में ये रूल है कि 75 कंट्रीज में, 5 कॉन्टिनेंट्स में मलखम होगा, जो खेल होगा वही ओलंपिक में
1: ओलंपिक्स
0: जा
1: में
0: सकता है।
1: जाएगा।
0: तो अभी बहुत लंबी मंजिल है, वहां तक आगे पहुंचना है। और मैंने ब्लाइंड बच्चों के लिए काम किया, यानी जो देख नहीं पाते हैं, उनके मुंबई में 3 ब्लाइंड स्कूल थे, मैं तीनों ब्लाइंड स्कूल में
1: मलखम सिखाया आपने,
0: मलखम
1: ये बहुत
0: सिखाया।
1: बड़ा चैलेंज है।
0: और वो जब आप उनको करते हुए देखेंगे तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो ब्लाइंड है।
1: तो आदरणीय उदय विश्वनाथ देश पांडे जी, आपने अपने अनुभवों और विचारों के माध्यम से हमें प्रेरित किया। आकाशवाणी की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद।
0: बहुत बहुत आभार।
1: श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम हमारे अतिथि में हमने जाना पद्मश्री से सम्मानित मलखम गुरु उदय विश्वनाथ देश पांडे जी की प्रेरक शख्सियत के बारे में। इसी के साथ काजल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: अब सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे अतिथि, और आइए अब सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

सामिन, अब से कुछ देर बाद सुबह 9:35 पर सुबगाही प्रोग्राम के तहत आज आप शब्द सुनेंगे। 9:45 पर प्रोग्राम नष्ट किया जाएगा आज सवेरे। 9:50 पर हस्ब मामूल खबरें नष्ट की जाती हैं और 10 बजे अकवाल जर्री पर

बस सोचकर 5 मिनट पर हुस्न गजल प्रोग्राम के तहत आज आप सुनेंगे अनिर अहमद और अंजना चोपड़ा की आवाजों में गजलें। कराम होगा शकील बदायूनी, हसरत मोहानी, मिर्जा गालिब और जानिसार अख्तर का। रूबरू प्रोग्राम के तहत आज आप जानिसार अख्तर से जनाब अमीक हनफी की बातचीत सुनेंगे 10:30 पर। मेरी पसंद प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे दिन के 11:00।

ग्यारह बज के 30 मिनट पर एक ड्रामा सुनिएगा, तन्हाई का जहर। इस ड्रामे का ये पहला हिस्सा होगा और इस ड्रामे का दूसरा हिस्सा ही आज ही आप सुन सकेंगे सपहर 3:30 पर। 12 बजे खबरें नष्ट की जाएंगी और 12:10 से दिन के 1 बजे तक आप सुनेंगे फिल्मी दो गानों का प्रोग्राम मेरे सुर मेरा तुम्हारा। दौरानी प्रोग्राम तारीख साज प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। दिन के 1 बजे आलमी खबरें नष्ट की जाएंगी और इसके साथ ही 1:15 पर हमारी आज की पहली मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होंगी। सामीन, ये थी एक झलक आज की पहली मजलिस में पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों की। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

डीडी वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम सुगाही। इस प्रोग्राम के तहत लीजिए सामईन अब सुनिए शब्द।

0: सामिन अभी आप आशा सिंह मस्ताना से शब्द सुन रहे थे। इसके साथ ही प्रोग्राम सुबगाही अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत प्रोग्राम आज सवेरे।
1: श्रोताओं, अब समय हो चला है कार्यक्रम आज सवेरे में इतिहास के पन्नों को पलटने का, लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज के दिन की विशेषता के बारे में। आज विश्व रक्तदान दिवस है। प्रतिवर्ष आज के दिन यानी कि 14 जून को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2004 में स्थापित इस कार्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षित रक्तदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करना है।
2: Absolutely, and this is a very healthy cause. If you donate blood, then there is no loss of blood in your body. This is the fact, and rather, your body makes new blood, and this is very healthy practice. So one should definitely donate blood every 3 months if you are a healthy body. Theme for this year is different. This year's theme is One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives.
1: और अब बात करते हैं आज के दिन की इतिहास के बारे में कि आज का दिन क्यों अपने आप में खास है। तो 1901 में पहली बार आज ही की तारीख को गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था।
2: Let's go a little back and talk about 1777 when the United States adopted the stars and the stripes as its official flag. In 1958, Dr. C.V. Raman received the Lenin Peace Prize in Kremlin. In 1995, RBI announced the introduction of appointing ombudsman to redress grievances and disputes of bank customers. In 1998, S. Vijayalakshmi won National Women's A Chess title in Mumbai.
1: और 2004 में पंचशील सिद्धांत की 50वीं वर्षगांठ पर बीजिंग में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का भी आज ही के दिन आयोजन हुआ। और अब बात करते हैं उन महान हस्तियों की जिनकी आज है जयंती, जन्मदिन या पुण्यतिथि। आज पुण्यतिथि है प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी कार्यमाणिकवम श्रीनिवास कृष्णन की। मद्रास विश्वविद्यालय ने इन्हें डीएससी की उपाधि प्रदान की थी। 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित श्रीनिवास कृष्णन 1945-46 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष चुने गए थे।
2: And today is the death anniversary of Fakir Mohan Senapati, often referred as the Utkala Byas Kabi. Odisha's Vyas was an Indian writer, poet, philosopher and social reformer. He played a leading role in establishing

0: बिल्कुल।
1: और आज ही जयंती है हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक के आसिफ की। आसिफ ने ही भारतीय सिनेमा की सर्वकालिक क्लासिक फिल्म मुगले आजम बनाई थी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत। बहुत कम फिल्में और बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हासिल करने वाले फिल्मकारों में के आसिफ का नाम शायद अकेला है। भारतीय फिल्म जगत के इस महान फिल्मकार का पूरा नाम करीम आसिफ था। वैसे मुगले आजम के अलावा के आसिफ ने और भी कई फिल्में बनाई। इनमें वर्ष 1945 में आई फिल्म फूल, 1951 में बनी फिल्म हलचल भी शामिल है। लेकिन क्लासिक तो क्लासिक ही होता है, तो सुनते हैं उसी फिल्म से एक और ये गीत।
2: सामीन, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सुबह के 9:50 हो चुके हैं, अब खबरें नष्ट की जाएंगी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप मुनम्मार से खबरें सुनिए। वजीर आजम मोदी आज नीस में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स तकरीब का भी इफ्तिताह करेंगे। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा है कि खलाई तहकीक का भारतीय अदारा इसरो चांद पर उतरने वाला ऐसा खलाई जहाज तैयार कर रहा है जो 200 दिन तक काम कर सकेगा। भारतीय महकमे मौसमियात IMD के मुताबिक आइंदा 2-3 दिनों में जुनूब मगरबी मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जुनूबी इलाकों तक पहुंचने के लिए हालात साजगार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने का मुआहदा आज तय पा जाएगा और इसके फौरन बाद सभी के लिए आगराए हुरमुज को खोल दिया जाएगा। धर्मशाला में बारिश से मुतासरा पहले एक रोजा बैन अवी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। और खवातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत आज शाम बर्मिंगम में अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम ने मोदी दो मुल्कों फ्रांस और सलोवाकिया के अपने दौरे के पहले मरहले के तहत फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। फ्रांस में अपने कयाम के दौरान वो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स तकरीब के इफ्तिताह करेंगे और आइंदा G7 समिट से कबल वो सदर मैक्रों के साथ बाहमी ताउन के अहम शोबों और आलमी उमूर पर दोतरफा बातचीत करेंगे। इसके बाद वजीर आजम सलोवाकिया का दौरा करेंगे जहां वो सलोवाक क्यादत के साथ दोतरफा मीटिंगें करेंगे। कल मारूफ होटल नेग्रेस्को में मुनक़िदा एक कम्युनिटी इस्तक़बालिया तकरीब में भारतीय बिरादरी की बड़ी तादाद ने वज़ीर आज़म का गर्मजोशी से इस्तक़बाल किया। वज़ीर आज़म मोदी ने

0: 2000 बार नाकामी का मुंह देखा, तब जाकर बल्ब बनाने में कामयाब हुए। मशहूर साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत स्मार्ट और जहीन हूं, बल्कि मेरी कामयाबी का असल राज यह है कि मैं परेशानियों का देर तक मुकाबला करता हूं। तजुर्बात ये बताते हैं कि जहानत, स्मार्टनेस और फितरी खूबियां कम ही लोगों को औजे कमाल तक पहुंचाती हैं। असल खूबी साबित कदमी और इस्तकामत है, और ये कामयाबी के लिए बे इंतहा जरूरी है। ये इंसान को मुश्किल हालात में भी हिम्मत अता करती है, परेशानियों और नामसायद हालात में सब्र का सलीका अता करती है, इंसान की जिंदगी को एक मुस्बत ठहराव देती है और इसे कामयाब इंसानों की सप में लाकर खड़ा करती है। कहते हैं कि नाकामी कामयाबी की कुंजी है, हार जीत की तरफ ले जाती है और गिरना उठने के लिए तैयार करता है। हमारे इर्द गिर्द साबित कदमी और इस्तकामत की मिसालें जा बजा देखी जा सकती हैं। चींटी इस्तकामत की अजीम तरीन मिसाल है, जो सुबह शाम इंसान को सब्र सबात का दर्स देती है। मुस्तकिल गिरता रहने वाला एक कतरा भी चट्टान पर अपना निशान छोड़ जाता है। एक हदीस का भी यही मफहूम है कि अल्लाह ताला को वो काम पसंद है जिस पर बंदा हमेशगी इख्तियार करे, खा वो थोड़ा ही क्यों ना हो। साबित कदमी जिंदगी का हुस्न है। आप तसव्वुर करें कि ऐसी दुनिया जहां हर शख्स थोड़ी थोड़ी परेशानियां आने पर हिम्मत छोड़कर बैठ जाए, जहां हर शख्स अपनी मेहनत का फल फौरन हासिल करना चाहता हो, जहां हर आदमी पहाड़ की ही तवक्को रखता हो, तो भला वहां कोई काम पाया तकमील तक कैसे पहुंच सकता है। इंसान को हर काम अपनी ताकत और वसत के मुताबिक ही करना चाहिए, और एक बार जिस काम को शुरू कर दिया उसे उसके अंजाम तक पहुंचाए बगैर चैन से नहीं बैठना चाहिए। मशहूर फलसफी कन्फ्यूशस का कहना है कि अगर आप बराबर चलते रहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी रफ्तार धीमी है या तेज। लिहाजा मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करते वक्त हमेशा याद रखें कि मीठा फल सबात कदमी के बाद ही हासिल होता है। लंबी रेस का घोड़ा वही होता है जो नशेब व फराज दोनों के लिए यकसा तौर पर तैयार रहता हो। जो इंसान सर्दी और गर्मी को यकसा तौर पर बर्दाश्त करने की हिम्मत न रखता हो, परेशानियों का मुकाबला ही न करना चाहता हो, कामयाबी हमेशा उससे कोसों दूर रहती है। आपकी कोशिश उसी वक्त रंग लाती है जब आप साबित कदम रहते हैं और हिम्मत नहीं हारते। इस दुनिया में कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अज़्म हौसले और साबित कदमी से ही मिलती है। मशहूर अंग्रेज मुफक्किर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि लोग अक्सर हालात का रोना रोते हैं, लेकिन कामयाब लोग नासाजगार हालात की वजह से हिम्मत नहीं हारते, बल्कि साबित कदम रहते हुए हालात को अपने मुवाफिक बनाते हैं। आइए हम सब मिलकर अज़्म करें कि हम साबित कदमी का सबक खुद भी सीखेंगे और औरों को भी सिखाएंगे। बकौल शायर, हटा देंगे हर एक संगे गिरा को अपने रस्ते से, नुमाया अपनी शाने इस्तकामत करके छोड़ेंगे।
1: आमीन। अभी आप अकवाल जर्री पर मबनी प्रोग्राम शम्मी फरोजा सुन रहे थे। तहरीर जनाब मोहम्मद अरशद की थी। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। इस वक्त हमारी नशरात मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर दस्तियाब हैं। पेश खिदमत है प्रोग्राम हुस्न गजल। इस प्रोग्राम में लीजिए समाप्त फरमाइए अमीर अहमद और अंजना चोपड़ा की आवाजों में गजलें। कलाम होगा शकील बदायूनी, हसरत मोहानी, मिर्जा गालिब और जानिसार अख्तर का। प्रोग्राम के आगाज में शकील बदायूनी की ये खूबसूरत गजल गजल सरा है अमीर अहमद।

शायद उसकी वजह ये हो कि हमारे आज के कंपोजर, आज के म्यूजिक डायरेक्टर इतने मसरूफ हैं कि उनके पास वक्त नहीं है कि वो किसी लिखे हुए गीत की ट्यून बनाए। या इसकी वजह ये भी हो सकती है कि अक्सर उनमें से ये सलाहियत ही नहीं रखते हो। दूसरी चीज जो आपने कही कि वो पॉप म्यूजिक या जो मगरबी मूसीकी हमारे यहाँ आई है उसके ऊपर वो रचाव पैदा नहीं होता गानों में जो पहले गानों में था, तो मैं इसे मानता हूँ। वो रचाव गालिबन इसलिए भी पैदा नहीं होता कि अंग्रेजी धुने और हमारी जबान को ज्यादा मेल नहीं खाती एक दूसरे से। पहले हिंदुस्तानी मूसीकी की धुनें दी जाती थीं या बनाई जाती थीं, उनके साथ हमारी जबान एक किस्म से मैच करती थी और उनमें ज्यादा रचाव पैदा हो जाया करता था। रहा ये कि ये मगरबी मूसीकी किस हद तक खुशगवार साबित होगी और कहाँ तक ये हमारा साथ देगी, तो मैं इससे इनकार नहीं करता कि यकीनन हर फन में जिस तरह के बाहर के असरात को कबूल किया जाता है और

0: इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक से बहुत पीछे है। अगर हम वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पर ज्यादा जोर दें तो ये मेरे ख्याल से कहीं बेहतर होगा, बजाय इसके कि हम उन धुनों पर या उन नोट्स पर ज्यादा जोर दें कि जो मगरबी अंदाज की मौसीकी में पाई जाते हैं।
1: फिल्मी गानों में मौजूनियत का जो तसव्वुर है वो मौसीकी के उसूलों पर कायम होता है, क्योंकि जाहिर है वो गाना है, और शायरी में मौजूनियत का जो तसव्वुर है वो अरूज पर कायम है, और अक्सर गानों में ये भी होता है कि अरूजी मौजूनियत यानी गनाई मौजूनियत के मुकाबले में कम होती है। तो यानी महा खामोशी के एक वक्फे से वजन पूरा कर दिया जाता है, आ आ कहकर वजन पूरा किया जा सकता है, जबकि शायरी में ऐसा नहीं होता। तो ये जो नामौजू शायरी लेकिन मौजू मौसीकी एक किस्म की फिल्मी गानों में आई है, इसके बारे में आपने कभी सोचा है कुछ?
0: ये तो मैंने अर्ज किया आपसे कि अगर फिल्मी शायरी या फिल्मी गीत निगारी मौसीकी की पाबंद होगी और वो मौसीकी मगरबी होगी तो उसे ये सब कुछ सहन करना पड़ेगा। और अगर हम फिर वो ही दौर ला सकते हैं कि पहले हमारे गाने लिखे जाएं और उसके बाद मौसीकी तैयार की जाए, उनकी धुनें बनाई जाए, तो हम इससे निजात हासिल कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपके जहन में फिल्म में आने का ख्याल कब आया और आप कब यानी पहला गीत आपने या पहला गाना आपने फिल्म के लिए कब लिखा, वो कौन सा गाना था?
0: मैं सन 50 में बम्बई आया और वो कुछ ऐसी मेरी मजबूरियां थीं कि जिसकी बिना पर मुझे अपनी मुलाजिमत जो मैं हमीदिया कॉलेज में भोपाल में बहसियत सदर शोबे उर्दू काम करता था वो मुझे तर्क करना पड़ी। यहां आने के बाद वैसे तो सबसे पहले मुझे शाही पिक्चर्स ने माहाना तनख्वाह पर एज ए सॉन्ग राइटर अपने यहां रख लिया और तकरीबन 1.5 साल तक मैंने वहां काम किया। वो एक पिक्चर बना रहे थे जिसका नाम था सास, जिसकी मौसीकी एस डी बर्मन दे रहे थे, उसके 4 या 5 गाने रिकॉर्ड भी हुए, लेकिन कुछ माली मुश्किलात की वजह से वो कंपनी आखिर में बंद हो गई और वो पिक्चर रिलीज नहीं हो सकी। पहला गाना जो पब्लिक में आया मेरा वो अनारकली में लिखा हुआ था, अनारकली जो फिल्मिस्तान की मशहूर फिल्म है, इसमें मैंने गाना लिखा था और उसकी धुन वसंत प्रकाश ने बनाई थी। तो पहला गाना तो मेरा वो ही था। उसके बाद बहुत अरसे तक मुझे
1: उस गाने के बोल थे
0: आ जाने वफा, तो वो काफी मशहूर गाना भी हुआ और आज तक भी वो बजता है इतने साल गुजरने के बाद। उसके बाद मुझे मुख्तलिफ कंपनियों में एक एक दो दो गाने मिलते रहे और पहली जो मुकम्मल पिक्चर मुझे मिली वो डंका थी, जिसे मशहूर अदाकारा निम्मी ने प्रोड्यूस किया था और जेपी अडवाणी ने डायरेक्ट किया था। फिर कारदार क्या मुझे मुलाजमत मिल गई, एआर कारदार की 2 तस्वीरें यास्मीन और बाप रे बाप मैंने मुकम्मल तौर से लिखी और वहीं से बाप रे बाप में क्योंकि नैयर ओपी नैयर म्यूजिक दे रहे थे फिर मेरा उनका साथ हो गया और 3-4 साल तक उनकी तकरीबन तमाम पिक्चरें मैं ही लिखता रहा। फिर नैयर का भी मेरा साथ छूटा और मैंने फ्री लांसिंग शुरू की और इधर उधर बहुत सी कंपनी

0: कहानी तो खुद मेरी लिखी हुई थी और वो कहानी यकीनन बहुत पसंद की गई और डायलॉग अलबत्ता मेरे नहीं थे, वो सताविश सुल्तानपुरी ने लिखे थे और कहानी बेहद पसंद की गई। अलबत्ता जो उसमें गलती हुई थी वो उसके क्लाइमेक्स की थी, क्लाइमेक्स उसका पसंद नहीं किया गया और शायद क्लाइमेक्स ही की वजह से वो इतना न चल सकी कि जितना उसके चलने का यकीन था।
1: आपके जो हिट सॉन्ग्स हैं उनमें से खुद आपको कौन कौन से गाने पसंद?
0: मिसाल के तौर के ऊपर एक मेरा गाना है, बेमुरव्वत बेअफा बेगाने दिल आप हैं, आप माने या ना माने मेरे कातिल आप हैं। दूसरा गाना मेरा था कि वो हीरोइन की जबानी था कि मैं तुम्ही से पूछती हूँ मुझे तुमसे प्यार क्यों है। तीसरा गाना मेरा जो बहुत पॉपुलर हुआ वो गाना था, गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी सुबह का इंतजार कर। चौथा गाना मेरा एक बहुत चला था जिसका एक मिसरा मेरा नहीं है बल्कि वो एक मिसरा मुझे दिया गया था कि मुझे उसके ऊपर गाना कहना है, गरीब जान के हमको न तुम मिटा देना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दबा देना। ये दूसरा मिसरा किसी पुराने शायर का है। इसके अलावा कुछ गीत भी मेरे बहुत पॉपुलर हुए, मिसाल के तौर के ऊपर वो मन मुरा बावरा, जिस दिन गाए गीत मिलन के मन मुरा बावरा, या मैंने गाना उसमें लिखा था ढाके की मलमल एक फिल्म थी उसमें, दिया तो जला सब रात रे बालम पर तुम लौट ना आए। तो इस किस्म से गानों की, मेरे मकबूल गानों की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जो बस बताना मेरे ख्याल से कुछ ऐसा हो जाएगा कि याद दिलाने के बराबर हो गया लोगों को।
1: अख्तर साहब जो इश्किया गीत

0: सेवा के याद दिलाने के बराबर हो गया लोगों को।
1: अख्तर साहब, जो इश्किया गीत हमारे यहाँ लिखे जाते हैं उनमें अक्सर यूपी की या बिहार की या राजस्थान की बोलियों से अल्फाज ज्यादा लिए जाते हैं, यानी लोक गीतों के बोलों को चाहे वो सही किरदार हो लेकिन इश्क के जज्बात का इजहार लोक गीतों के बोलों के जरिए किया जाता है, तो क्या ये मॉडर्न सिचुएशन जो है, ये आज का जो इश्क है, आज के इंसान का इश्क, उसके लिए इतने पुराने अल्फाज और इतनी पुरानी तर्जों को इस्तेमाल करना महज एक रिवायत की पाबंदी है या वाकई इसके जरिए इसका इजहार बेहतर तरीके से, खूबसूरत तरीके से होता है?
0: ऐसी कहानियां जो मौजूदा जमाने के किरदारों को लेकर बनाई जाती हैं उसमें इस किस्म के गीत इस्तेमाल नहीं किए जाते, पहली बात तो यह है। ऐसे गीत सिर्फ उन्हीं कहानियों में इस्तेमाल किए जाते हैं कि जिनका पस मंजर देहातों का होता है। दूसरी बात यह कि आज की सोसाइटी में, आज की नई नस्ल के अंदर जो मोहब्बत का तसव्वुर बदल चुका है और मोहब्बत वो मोहब्बत नहीं रही है जो आज से 50 साल पहले या 80 साल पहले हमारे लिटरेचर में या हमारे गीतों में पाई जाती थी, इसलिए भी ये जरिया यानी गीतों का जरिया उसका साथ नहीं देता। और ज्यादातर ऐसे मौके पर जब मॉडर्न इश्क को जाहिर करना हो या हीरो हीरोइन के दरमियान कोई डुएट गाया जाने वाला हो तो अंग्रेजी नुस्खे यूज की जाती है। ये गीत सिर्फ उसी वक्त यूज किए जाते हैं जब किसी देहाती किरदार को अपनी मोहब्बत का इजहार करना होता है।
1: मेरी मुराद अख्तर साहब ये थी कि अब भी जब कुछ इश्किया गाने वाने होते हैं फिल्म में, खाब माहौल उस फिल्म का शहरी ही हो या किरदार भी शहरी हो और आज के हों, लेकिन वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मसलन बलम सनम पिया साजन सांवरी सजनी, तो ये मेरी मुराद थी कि ये लफ्ज जो एक रिवायती, जिनकी जड़ें हमारी बहुत पुरानी देहाती रिवायत में हैं, ये अब भी इस्तेमाल होते हैं, तो ये क्या महज आसार कदीमा है अल्फाज के या इनकी कोई वाकई अहमियत आज भी है?
0: इस किस्म के अल्फाज जिनकी तरफ आपने इशारा किया ये फिल्मों के आम गीतों में भी यूज होते हैं।
1: जी हाँ,
0: और ये होता ही है कि बाज जगह ये इन अल्फाज का इस्तेमाल हमें ये बताता है कि गाना लिखने वाला जबान पर पूरा काबू नहीं रखता। इन मानों में कि जो मिसरे के या गीत के बोल के दूसरे अल्फाज इन अल्फाज के साथ मैच नहीं होते लेकिन वो खाना पूरी करने के लिए या ट्यून पर बिठाने के लिए इनका सहारा ले लेता है। दूसरी बात ये भी है कि जब ये अल्फाज सलीके से यूज किए जाते हैं तो फिर इसके लिए जरूरी हो जाता है कि वही बयान और वही जबान जिनके ये अल्फाज हैं वो इनके साथ चले, इन लफ्जों के साथ चले। अगर ये लफ्ज जहां से आए हैं उन्हें अपनी कॉन्टेक्स्ट से हटा के हम यूज करते हैं

0: Maki, Khuda tujhe samjhe. Pyaro beti, jawana mat katta ma. Maal zati gharat ho mujhe, jaan ko hi lag gayi hai. Ay hay, nafaat ho na murad, ghari bhar ko chain nahi lene debe hai. लखनऊ से मेरी जान को लगी है ये मौत बड़ी मक्खी. संती ले गई, वहां भी दम को लगी रही. अरे उमदा खानम बुआ, अरे सोए जाओगी? अरे बुआ क्या घोड़े बेच के सोई हो? मुई नींद न हुई, कयामत हो गई. अरे हमें तो नहीं आवे ऐसी नींद. अरे है बुआ, अरे जान पड़े हैं लोग अल्लाह को प्यारे हो गए.
1: क्या कयामत है, मजा रहे जो घड़ी भर को आँख झपका लो.
0: अरे है क्या बड़ी सन्नाटी ही होगी. भाई जवानी थी नींद जो हुई, बूढ़े मुँहा से लोग चले कमा से. शर्म भी तो नहीं आए, क्या फैल फैल के सोया जाए. हैजा समेटे प्यारो पीती.
1: अरे हैजा समेटे तुझे तेरे होतों सोतों को.
0: ओए बुआ, अरे आप ऐसे बाहर हो जाओ.
1: मैं तो घर घर के कोस रही हो, ऊपर से टेहा दिखाती हो.
0: वाह बुआ, अरे जूतियों समेत दीदों में घुसी चली आओ. मैंने तुम्हें कब कोसा, मैं तो मुई मक्खी की जान को पीट रही थी. मालसादी संतीले से मेरी जान को लगी हुई है. क्या मचाल जो घड़ी भर को चैन देने.
1: अरे जुड़वा सरे आम कोसा और मक्खी पे धर दिया.
0: आए हाय बीवी, तुम्हारा तो बेटा पिघल गया है.
1: बस तुम ही तो हो अपना तून की खाला. अरे हम तो गधैया हैं, गधैया कुछ समझते ही नहीं.
0: ऐ समझ होती तो आज इन गतों को काहे को पहुँचती. अच्छा जी कोसा, आई फिर कोसेंगे, आई सौ दफा कोसेंगे. कर लो हमारा.
1: अरे कोसो मेरी पैजार से, मासूम बेगुनाह को कोसोगी तो तुम्हारे दीदे घुटनों के आगे आवेगा. अरे नौलास बीवी मेरी हाय खाली ना चाहेगी. अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने चाह तो रिंज रिंज के मरो.
0: अरे हाय तो मेरी लगी थी जब परसों मोरी में मुंह के बल जाके गिरी. घुटना टूटा, अच्छा ही हुआ.

0: gea. Ay, alá. ¿Qué sigue? ¿Sigue? ¿Qué vas morta?
1: अरे यार तुम्हें जो रजब के कुंडे खाके हैजा हुआ था अरे वो किसकी हाय लगी थी?
0: हैजा हो मेरे दुश्मनों को
1: अरे तो फिर मकर गांठ रही
0: है मकर हाय तो तुम हो जमाने भर की आज से नहीं सदा से तुम्हें तो ढंग रचाने का शौक क्या चुचले बघारे जाए थे अपने खसम के आगे ना सरक गई कूला उतर गया कमर में चिक आ गई आई पसलियों में दर्द मरने वाला बेचारा बड़ा ही सीधा था आई पत्थर का जिगर था जो तुम्हें भुगता आई मैं होती तो तीन तलाके दे के मैं के फिकवा दे
1: अरे खुदा गंजे को ना खून
0: अरे बुआ गंजी तो तुम हो हाय क्या मुझ चुचिया है कि छिपकाने की दुम
1: अरे हाय तुम्हारे शानों पर तो बड़ी जुल्फें लहरा रही हैं
0: ना जुल्फे लहरा अरे बीबी अरे हमें कोई खसम करना है
1: अरे यूं ना कहो नौलास खानम अरमान तो अभी भी कुछ कम नहीं अरे जदी तो जा के खिड़कियाँ झांको सोलह सिंगार कर करके जलवे दिखाए जाए
0: बुआ आग लगे तेरी जबान को सोलह सिंगार तो अरे तुम करो चंदिया पे तीन बार मगर क्या क्या पट्टियाँ पारी जाए हैं अरे बुआ आई तुम ही जा के खिड़कियाँ झाको हो मगर कुत्ते की लाश कोई छूटे मुँह को नहीं पूछता
1: हाँ हाँ तुम्हारे तो गली गली आशिक घूम रहे हैं
0: अरे आशिक तो बहना अरे तुम बटोरा करो थी अरे वो मीर साहब के संग क्या क्या गुल खिलाया करती थी
1: अरे खुदा की सवार नौलास काहे को तूफान जोड़ती हो
0: अरे सच बताओ ममटी पर पेच लड़ाया करती थी कि नहीं
1: अरे कीड़े ही पड़ेंगे जबान में कलमू ही एक दिन जरा बाल सुखाने कोठे पर चढ़ी वो मुआ पतंग उड़ा रहा था
0: उसकी पतंग कटी थी कि नहीं
1: आए, आए,
0: वो तो अब हकलाने लगी बुआ आए बाल सुखाने का तो बहाना था असल में तो आग लड़ाने गई थी
1: अरे फिटकार तेरी सूरत पे
0: फिटकार तेरे जन्म तुम्हारा मियाँ अल्लाह बख्शे गरीब आँख का अंधा

0: 여보세요? 아이고, 봐라. 아이고, 아이 사람 말이 어디, 또 애셀리 옆에 사드게 말이 어디, 말은 어디. 막은, 뜸내, 또 사다, 말 훔게 나타놈에 띠르기 달리.
1: 아이, 하도, 뚱뚱 못세 하메스 잘라키. तुम्हारे मियाँ तो तमोलन पे लट्टू थे, तुम्हारा बस चलता तो मेरी छाती पे सात मन के चढ़ा दी।
0: तोबा तोबा उम्दा खानम।
1: ए बुआ, मैं कोई अंधी न थी, खूब देखा करू थी। तुमने तो बहुत चाहा के छुट्टन छुट्टा करा दो।
0: गजब खुदा का, क्या क्या फदीते लगा रही है मुर्दा सुनी। अल्लाह, ये आसमान किस बलबूते पर खड़ा है? कब्र में कीड़े ही पड़ेंगे उम्दा खानम।
1: अरे है, क्या खुशबूदार बीड़े लगा लगा के भेजा करो थी।
0: अरे तो क्या, मैं एक तुम्हारे कसम के ये ही बीड़े लगा के भेजू थी। अरे माशाल्लाह, बैठक में देसियों मिलने जुलने वाले आमे थे, बीड़े लग लग के जाए थे, शरबत जाए।
1: हाँ, हाँ, सारा मोहल्ला तुम्ही पर तो पिता था।
0: तुम्हें तो खाम खां का बैर है मुझे।
1: आए मेरी जूती पैर बसावे तुमसे।
0: आए बीबी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, आए सब समझो।
2: महिला सब मुझे चाचे,
0: कौन है तू?
2: आए किसका है रे?
0: मुझे तो बुलाके का नवासा लगे।
1: आए हटो, बुलाकी मुआ काला भिंडा, मुझे तो सफा हमीद मियाँ का पोता लगे।
0: है मत मारी गई है तुम्हारी तो, हमीद मियाँ की सूरत है कि कब्र बिज्जू। मुझे तो ये फुंदन का लौंडा लगे है। चेहरे फुंदन का है ना?
3: हमारी गेंद।
2: हाँ हाँ, नीले अंदर आ जा। आ मेरे चंदा, आ इधर आ, ये रही तेरी गेंद।
0: फूल सा बच्चा है। आजा बेटे, आजा, आजा मेरे कंधे, आजा।
2: ये नहीं, हाँ हाँ, ले ले गेंद, नहीं भागी थोड़ी जाती है।
0: आए आए, आजा आजा। आई उधर क्या,
2: आई इधर, इधर क्या करो हो? मेरे पलंग के नीचे गई है गेंद। आई इधर आ, लगे
0: बस आने का ले जा, मैं घुसेड़ लो।
2: आए बच्चे, आजा आजा आजा आजा।
1: आए तुम क्यों चल मारो हो? इधर आ चंदा, क्या नाम है
0: तेरा? तुम्हारा तो कलेजा फटा जावे है। कोई किसी का बच्चा आया नहीं, ये बस राल टपकी गोद में ठास लो। क्या मजाल, जो किसी और को बात भी करने दो। ये
1: इलायची खाए? आए हाय, बच्चे इलायची नहीं खाते। ले बेटा, ये ले चने, बड़े सौंधे हैं।
0: हाय, मुँह बासी सीधे चने किस काम के?
1: रसूलन के कंचेदन की नुक्तियाँ अभी तक देते बैठी हो? चिरांदी हो गई होंगी। मेरे लौंडे, ये गुड़धानी खा ले, खा ले, खा ले, खा ले। अरे भागा कहाँ जा रहा है? एक कहानी सुनेगा? कहानी भाई, एक ही चिड़िया
0: चूल्हे में गई, कल वो ही चिड़िया।
1: किसी को चूल्हा रानी की कहानी सुनाए?
0: थी शहजादी,
1: एक था चिड़ा, दो
0: ऐसी खूबसूरत, ऐसी खूबसूरत की बस क्या बताए।
1: दोनों ने मिलके खिचड़ी पकाई।
0: चालू हुई खिचड़ी पर,
1: शहजादी जो थी ना, पांच फूलों में रोज दुआ करे थी। दिन आई खुदा का करता है, चिड़ा गया घी लेने, इधर चिड़िया ने भैया क्या किया?
0: बेटे पूरे पांच फूल चढ़े थे। क्या मजाल, जो छठा फूल चढ़ जाए
1: तो बेटे फिर क्या हुआ कि वो जो आए बाबा है, इतना सा बच्चा प्यारो पीती पचफुला रानी की कहानी क्या समझेगा? के बस की मैया पीते जावे हैं। हालांकि चिड़ा गया घी लेने तो भैया क्या हुआ? मेरे पलंग के नीचे गई है। आ जा, पकड़ लिया।

0: 来给你打个大家哎哎哎
1: 二妹呀我的呀
0: 哎呀在那儿听哎你在干嘛哎你在你在干嘛你在干嘛
2: हरण मेरे पलंग पे काहे को कूद रहा है रे बच्चे सीधे बैठ
3: इधर आ मेरे चंदा इधर आ
2: अरे खबरदार जो तुमने हाथ लगाया उम्दा खानम
3: क्यों तुमने लौंडे का ठेका ले रखा
2: है अल्लाह क्या सब छोड़ दो उम्दा खानम वरना अच्छा ना होगा
3: हाँ हाँ तो दम करा दोगी तुम तो
2: अरे छोड़ो ना
3: अरे तुम छोड़ दो अरे जुड़वा बच्चे का हाथ टूट जाएगा
2: अरे तुम छोड़ो
1: वो लल्ला अरे कहाँ मर गया जायसे
2: इसकी अम्मा आ गई
3: क्यों रे यहाँ बदमाशी करने को हो गया
2: है नहीं रे है कोई बदमाशी नहीं की बच्चे ने सुन तो तू हमी मियाँ की बहू है ना
1: चल इधर
3: क्यों रे तमीजन की लौंडिया है ना
1: जी नहीं मैं तो
2: अच्छा अच्छा तो खैरुद्दीन की बहू है मीर साहब तो अच्छे हैं
1: जी मैं तो ठाकुर साहब की बहू हूँ
3: बाकर साहब की बहू अरे सकीना बेगम कैसी हैं बाव गोले का दर्द उठा था
1: बाकर साहब नहीं ठाकुर साहब
2: तो यूं कहो कि हवेली वाले ठाकुर साहब की बहू हो कैसे है ठाकुर साहब
1: जी वैसे ही हैं
3: आए बहू घुटनों का दर्द कैसा है
1: वैसा ही है
2: आए हाय बहू सुन तो आए क्या हवा के घोड़े पे सवार आई है
1: वो कचहरी से आते ही होंगे फिर लल्ला को नहलाना भी है
3: आए तो नहला लेना बहू आए सुन तो इधर आ
1: जी
3: अरे पाँव भारी है क्या
2: माशाल्लाह मुझे तो छठा महीना लगे
3: आए हटो बुआ तुम्हें अपने पेट की तो सुध रहती नहीं थी आए पराया क्या खाक ढूंढते जानोगी माशाल्लाह मुझे तो अनगिना महीना लगे है
2: हाय बहू ऐसा घोड़े की चाल दुलत्तियाँ झाड़े है अरे अरे घर में सास नहीं कोई नहीं जो ममा करे
1: कुछ नहीं होता दादी
3: अरे होता कैसे नहीं पेट वाली की जात कच्चे घड़े समान होवे है अरे सुन जब खैर से बाल बच्चा होवेगा तो हमें खबर तो करोगी
1: मैं तो अस्पताल जाऊंगी लल्ला भी अस्पताल में हुआ था
3: अरे आग लगे इन अस्पतालों को
1: आए बहू आए सुन तो फिर आऊंगी दादी
2: चल झूठी कहीं की खाक आएगी इस वक्त भी लौंडे की वजह से निकल आई है वरना कौन पलट के पूछता है मल्ला मारी बूढ़ियों को
1: नहीं सच्ची कल आऊंगी आम आए हैं पाल पड़ी है कल लेकर आऊंगी
3: आए बहू सुन तो
1: जी
3: आए तुम पंजाबी हो क्या
1: नहीं तो
3: अरे तू ये शलवार का पहनावा ठाकुरों में कब से चल पड़ा
1: शलवार तो सभी पहनते हैं ये तो फैशन है फैशन
2: हाय अच्छा फैशन चला आए, मेरे तेरे की पहचान ही मिट गई
1: लो अच्छा ही तो हुआ अब चल लल्ला
2: आए लौंडे को तो छोड़ दी जा
1: नहीं दादी इसे नहलाना है
3: ए लड़के गेंद तो छोड़ ही गया
1: लल्ला ले ले ले ले गेंद ले ले
2: जी बदजात दादी को मारता है चल हाथ जोड़ के सॉरी बोल बदमाश खबरदार लौंडे को मारा तो बहुत तूने आई अच्छा ना होगा
1: हाथ जोड़ चल हाथ जोड़
2: आए हाय रहने भी दे नेक बख्त बच्चा है
1: छोड़ दे भाग नहीं जोड़ेगा जब तक नहीं छोड़ूंगी चल हाथ जोड़
2: खैर
1: बदमाश अच्छा चल अब दूसरी दादी के पास
2: रहने दे रहने दे बहू रहने दे रहने दे
1: ठहर तो जा लल्ला के बच्चे बड़ों पे हाथ उठाता है घर जाकर तेरी हड्डी पसी नहीं थोड़ी तो देख ले
3: अरे तुझे कसम है बहू बच्चे को मारना नहीं
2: अरे बाली अरे बहू पाँव संभाल के भगवान अरे पाँव संभाल के ये क्या जमाना आ गया है मोहल्ले की बहू बेटियां क्या कबड्डी लगा में
3: हाँ देखो तो हाय हाय बच्चा आ गया तो क्या रौनक हो गई
2: गर्मी है जिस घर में बच्चा नहीं हो उसमें फरिश्ते नहीं आते
3: अरे बुआ कभी हमारे घरों में भी रौनक हुआ करे थी बच्चों की किलकारियों से घर गूंजा करे थे।

0: पान तू ना ला खाना क्या हुआ अच्छी अच्छा नहीं क्या
1: क्या और कितने दिन जीना पड़ेगा उमदा खाना
0: कैसी बातें करो वो नौलाद खान
1: बाहर दुनिया जिंदा है हम तो जैसे कब्र में कैद है
0: खुदा की मर्जी में किसे दखल है बीबी यही दुनिया का दस्तूर है जी छोटा ना करो जिंदगी के दिन तो तेर करने ही है लो तुम मुँह हाथ धो डालो मैं तब तक शरबत बनाती हूँ रमजानी के लौंडे से कहूँ थोड़ी सी बर्फ दे जाए।

0: उम्दा खाला
1: जीती रहो, अल्लाह खुश रखे, अम्मा बाबा का कलेजा ठंडा रहे।
0: आदाब नालाज खाला।
1: उम्र दराज, कौन हो बेटी?
2: अरे मुझे नहीं पहचाना खाला।
1: नहीं,
2: मैं सईदा हूँ।
1: सईदा?
2: और मेरा नाम नूर है। मैं कुत्सिया बेगम की छोटी लड़की हूँ।
1: आए वही जो कसम को छोड़ के मैं क्या बैठी है।
2: हाँ खाला वही, मेरे अब्बा जान ने मुझसे भी छोटी लड़की से निकाह कर लिया। अम्मा ने बहुत अच्छा किया जो तलाक ले ली।
1: अरे दीदा तो देखो लौंडिया का, क्या मजे से मैया की तलाक का जिक्र कर रही है।
3: निकाह कर लिया तो कौन सा गुनाह किया? मर्द को चार शादियों का हुक्म है।
2: हाँ। हुक्म नहीं खाला, इजाजत है, और वो भी उस वक्त जब पहली बीवी में कोई ऐब हो, लूली हो, अपाहज हो, बदसूरत हो। अब आप ही बताइए खाला, मेरी माँ में कौन सा ऐसा ऐप था जो उन्हें दूसरे निकाह की जरूरत पड़ी?
1: अरे ऐप की अच्छी कही, तुम कल की लौंडिया तुम भला क्या जानो, मर्द को चार शादियाँ करने का हक है।
2: मगर हमारे रसूल खुदा ने हजरत खतीजा की जिंदगी में दूसरी शादी नहीं की,
4: और न अपने दामाद हजरत अली को फातिमा जहरा की जिंदगी में दूसरी शादी की राय दी।
2: इस हिसाब से सुन्नत रसूल खुदा यही हुई कि पहली बीवी की जिंदगी में दूसरी शादी न की जाए। मेरे अब्बा ने एक बच्ची के साथ शादी करके जुल्म किया, अम्मा ने उनके साथ रहना पसंद नहीं किया और तलाक ले ली।
1: अरे बेटी, औरत जात को लाजिम है कि सब्र करे।
4: क्यों सब्र करे? जो लाचार और मजबूर हो वो करे बैठकर सब्र।
2: मेरी अम्मा एमए पास है, कॉलेज में प्रोफेसर है। वो किसी की मोहताज नहीं, वो क्यों जिल्लत सहती?
1: या मौला क्या जमाना आ गया है।
2: बहुत अच्छा जमाना आ गया है, और इससे बेहतर जमाना आने वाला है। खाला हम आपसे वोट लेने आए हैं, अम्मा इलेक्शन में खड़ी हुई है।
1: अरे बच्ची, हमारी वोट तो उस दिन आंधी आई तो अल्लाह मारी टूट गई।
4: खाला हम तो
1: खैराती निगोड़े से कितनी दफा कहलवाया, बच्चे जरा आके चार कीने मार दे, मगर सुनता ही नहीं। अरे बेटी, हम तो खटोला खड़ा करके नहा धो ले रहे हैं।
2: ओहो खाला, वो
1: यकीन न आए तो बेटी अपनी आंखों से देख लिया।
2: वो दीवार से लगी खड़ी है।
4: खाला जान, वोट नहीं, वोट वोट। म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन है ना, हमें आप दोनों के वोट चाहिए। हमारे मोहल्ले से कुत्सिया खाला खड़ी हुई है।
1: मेरी तो अक्ल ठिकाने नहीं रहे बेटी।
4: हमारी पार्टी का प्रोग्राम बहुत शानदार है।
2: हम औरतों के हुकूक के लिए लड़ेंगे, उन्हें बराबरी का दर्जा दिलाएंगे।
1: आए कैसे लड़ोगी, सबको तलाक ही दिलाओगी क्या?
4: हाँ, अगर उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके हक तलफी हो रही है, उनके शौहर जुआरी हैं, शराबी हैं, उन्हें आए दिन मारते पीटते हैं, वो बेचारियाँ चुपचाप सब सहती हैं।
2: क्योंकि वो जाहिल और लाचार है,
4: वो अपनी रोजी नहीं कमा सकती और सिर्फ रोटी कपड़े के लिए जानवर से बदतर जिंदगी बिताने पर मजबूर है, तो हम उन्हें तलाक दिलवाएंगे, उनके लिए कोर्ट में लड़ेंगे।
2: हम कमेटियाँ बनाएंगे,
4: कोर्ट बनाएंगे, जहाँ औरतें मजिस्ट्रेट होंगी, वही फैसला करेंगी।
1: अरे बेटी, ना हमें तलाक लेनी ना निकाह करना, अब तो अल्लाह से यही दुआ है कि मिट्टी अजीज हो जाए।
2: ओफ, यही तो मुसीबत है।

0: मौत से पहले ही आप लोग मर जाती हैं। आपकी तरह न जाने कितनी बेसहारा औरतें घरों में बैठी मौत को पुकार रही हैं। आपकी उम्र की औरतें दूसरे मुल्कों में काम कर रही हैं, पैसा कमा रही हैं,
1: दुनिया की सैर कर रही हैं, किताबें लिखकर लाखों कमा रही हैं,
0: और आप कब्रों के ख्वाब देख रही हैं। इसलिए कि ना आपको तालीम दी गई और न कोई हुनर सिखाया गया, बस शादियां कर दी गई, फिर मियां पालेंगे और बेटे पालेंगे। आपकी तरह कितनी लाचार औरतें हैं जो लोगों के रहम करम पर जिंदगी गुजार रही हैं।
1: खाला, इसलिए इस साल सारी दुनिया की औरतें इन दुखिया और कम नसीब औरतों के लिए राह निकालेंगी। औरतों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां दी जाएंगी, रोजी पैदा करने के नए नए तरीके सिखाए जाएंगे। खाला, फिर एक औरत बाप भाई मियाँ और बेटे के भरोसे नहीं रहेगी, वो खुद अपनी देखभाल कर सकेगी।
2: आए हाय, सब कहने की बातें हैं बुआ।
3: क्या
2: है बुआ, अभी सुनते हैं बम का गोला फटा है, बड़े बड़े जादू जगेंगे, आसमान पे पिघली लगाने के मशवरे हो रहे हैं। सुनो, सुना है लोग चांद पे भी पहुंच गए।
4: अरे अल्लाह कसम, सब झूठ। अरे चांद सूरज पे किसकी मजाल जो कदम रख सके। अरे भी न कोई आया न कोई गया, बेपर की उड़ा दी है लोगों ने।
0: नहीं खाला, चांद पर लोग वाकई होकर आए।
2: अरे सच बेटी, अरे तो हमें भी ले चलो ना बेटी। अरे उम्दा खानम बुआ, चलोगी ना?
4: अरे लो,
2: अल्लाह कसम, अरे बड़ा ही मजा आएगा। अरे सुनो, अपनी अपनी पिटारियाँ भी ले चलेंगे।
4: लो
2: मगर अल्लाह जाने वहाँ पान उग गए हैं कि नहीं। अरे तो पान खा के पिटकारी मारेंगे ना, आई तो वो ही मसल हो जाएगी कि आसमान से थूका और पलंग में आए।
4: अरे हटो, यहाँ पलंग से नीचे पैर उतारने का तो दम है नहीं। चले चांद पे चिड़िया लगा
0: तो बस। तो आप हमें वोट देंगी ना? हम मोटर लेकर आपको लेने आ जाएंगे।
2: हाय, वोट लेने का पक्का वे है। तो लोग कैसे कैसे हमारे लाड़ करे।
4: देखो,
2: हाय कोई मोटर लाए, हाय कोई गाड़ी लाए, हाय वो असलम मियाँ ने आए खरबूजे भेजे है, और वो जाफर मियाँ की दुल्हन घी चुपड़ी रोटियाँ भेज रही है।
4: खाक घी चुपड़ी मुआ वनस्पति लथेड़ देवे है, और वो खरबूजे मुँह कसू के मजे।
2: वो ठाकुर साहब के यहाँ से जलेबियाँ चली आ रही है।
4: हामिद मियाँ ने आम भेजे, जरा उस
2: बीबी आई सही जमाने का दस्तूर है, वक्त पड़े तो गधे को भी बाप बना ले वे है। और जब मौसम गया आई तो कोई कौड़ी के तीन भी नहीं पूछे।
4: और क्या
2: है, आई बेटी अपनी अम्मा को दुआ देना और कहना आए बरसों हो गए, आए माँ ही कलिए की सूरत भी नहीं देखी।
0: आप वोट दे या न दे आपकी मर्जी, पर माही कलिया आज ही खा लीजिएगा। अच्छा आदा।
4: अच्छी हो बेटी, अल्लाह नसीब खोले।
0: मेरा नसीब खुल गया।
4: अरे माशाल्लाह, कब बात तय हो गई, अल्लाह मुबारक करे।
0: नहीं खाला, मैं पास हो गई, मेरा नसीबा मेरी मुट्ठी में है।
2: आई सुन तो लड़की।
0: जी।
2: अरे मोटा लाओगी ना?
0: जी हाँ जरूर, तैयार रहिए।
4: अरे बुआ, क्या लड़कियां हैं आजकल की,
2: देख लो।
4: आए मोटरे चलावे हैं, एमए बीए पास करे हैं। सुना है बुआ, हवाई जहाज भी उड़ावे।
2: और सुनो,
4: एक हम थे कम वक्त, इतनी सी उम्र में चार बच्चे हो गए थे, मियां अपने यार दोस्तों में मस्त, सास अलग कचोके दिया करे थी।
2: क्या कह रही थी वो बच्ची, नसीब है अपनी में। अरे बुआ, अपनी मुट्ठी तो सदा भारी ही रही।
4: अरे सब नसीबों का खेल है बीबी, और कुछ भी नहीं। अरे हमें न किसी ने चार बोल पढ़ाए कि यहाँ पढ़े पढ़े किससे कहानियाँ ही पढ़ लिया करते।
2: अब्बा जान तो बहुत कहने थे, मगर दादा जान अड़ गए कि पढ़ लिख कर लड़कियाँ बेचलन हो जाए हैं, गैर मर्दों से आप ही लड़ा में है, कौन कबूलेगा।

0: अरे बुआ, सब कहने की बातें हैं। ये कोठे वालियाँ कौन सी MBA पास हुए हैं?
1: अल्लाह रसूल की किताबें पढ़ के आप बच्ची सुधर जा रहे हैं।

सामीन अभी आप सुन रहे थे इस्मत चोखते का लिखा ड्रामा तन्हाई का जहर। इस ड्रामे का पहला हिस्सा अभी आपने सुना, पेशकश जनाब अजीज कुरैशी की थी। इस ड्रामे का दूसरा हिस्सा आज ही आप सपहर 3:30 पर सुन सकते हैं। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। इस वक्त हमारी नशियात मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर दस्तयाब हैं। दिन के 12 बजा चाहते हैं, ये वक्त होता है खबरों के बुलेटिन का।

दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अमरीकी इंतजामिया के एक सीनियर अहदेदार के मुताबिक इन मुलाकातों में इक्तसादी तरक्की, सप्लाई चैन, मसनूई जहानत, सरमायाकारी पर मबनी शराकत दारियों और आलमी सलामती को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजों पर तबादला ख्याल किए जाने का इम्कान है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सर्बिया के सदर अलेक्जेंडर उसी की जानिब से उन्हें तवील तरीन मुद्दत तक खिदमत अंजाम देने वाले वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद देने के लिए उनके तई तशक्कुर का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने उनकी पुरखलूस मुबारकबाद के लिए उन्हें शुक्रिया कहा। उन्होंने सर्बिया के सदर के हालिया भारत दौरे और उसके दौरान हुए समरावर मुजाकरात को याद किया। जनाब मोदी ने कहा कि भारत सर्बिया के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात की बहुत कदर करता है और उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि आइंदा बरसों में दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी मजीद मजबूत होगी। इससे कबल एक सोशल मीडिया पोस्ट में सर्बिया के सदर अलेक्जेंडर उसिक ने जनाब मोदी को भारत की तारीख में तवील तरीन मुद्दत तक खिदमत अंजाम देने वाले वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद पेश की थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में गुज़िश्ते दहाई में भारत की हिफ्ज़ान सेहत के शोबे में नुमाया तब्दीली आई है। इसमें तमाम शहरियों के लिए काबिल रसाई और काबिल इस्तेताअत हिफ्ज़ान सेहत से मुतालिक सहूलियात को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि हुकूमत की हिफ्ज़ान सेहत से मुतालिक अहम पहलकदमियों ने मुल्क के सेहत से मुतालिक बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम किया है और स्वस्थ भारत के विजन को आगे बढ़ाया है। वजीर मसूफ ने मजीद बताया कि आयुष्मान भारत स्कीम से मुल्क भर के करोड़ों लोग मुस्तफीद हुए हैं और इसके तहत इन्हें कैशलेस सेहत कवरेज फराहम की गई है। अब इस स्कीम में मुअम्मर अफराद को भी शामिल किया जा चुका है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा है कि उन्होंने एक ऐसे जदीद मस्नूई हीटिंग निजाम को तैयार करने के लिए एटमी तवानाई के महकमे के साथ इश्तराक किया है जो चांद की सतह पर उतरने वाले खलाई जहाज को चांद के बेहद ठंडे मौसम से महफूज रख सकेगा। बेंगलुरु में सीएसआईआर आरआईएसई कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए इसरो के सरबराह ने बताया कि समशी तवानाई वाले चंद्रयान 3 मिशन का खलाई जहाज विक्रम चांद पर महज 14 दिन ही काम कर पाया। इसरो अब एटमी तवानाई के महकमे के साथ एक ऐसे खलाई जहाज को तैयार करने के लिए काम करेगा जो 200 दिन तक चांद की सतह पर काम कर पाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए आज एक मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे और उसके फौरन बाद अहम गुजरगाह अबनाए हुर्मुज को तमाम ममालिक के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने यह ऐलान एक सोशल मीडिया पोस्ट पर किया है। इसके साथ ही ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर यह मुआहदा तवक्कुआत के मुताबिक पाए तकमील तक न पहुंच सका तो मजीद हमलों का ऑप्शन भी मौजूद है। अमरीकी सदन ने मुजव्वजा मुआहदे का मुआवजना 2015 के ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से भी किया। इस दौरान ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि किसी भी मुआहदे पर फौरी तौर पर दस्तखत होने का इम्कान नहीं है। उनके मुताबिक ये अमल आज मुकम्मल नहीं होगा, अलबत्ता मुआहदे पर दस्तखत आइंदा चंद दिनों में हो सकते हैं। ईरानी हुकाम ने ईरान के मरहूम रहबर आला आयतुल्ला अली खामनेई के आखिरी रसूमात के शेड्यूल का ऐलान किया है। ईरान की न्यूज एजेंसी के मुताबिक आयतुल्ला अली खामनेई की आखिरी रसूमात की तकरीब तेहरान में इमाम खुमैनी इबादतगाह के मकाम पर 4 और 5 जुलाई को मुनाकिद की जाएगी। उनकी तदफीन 9 जुलाई को मशहद में इमाम रजा की मुकदस खानकाह में की जाएगी। खवातीन के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज बर्मिंगम में एच बस्टन के मकाम पर ग्रुप ए के मुकाबले में भारत रवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। खवातीन के T20 बैन अल-अक़वामी मैचों में भारत का पाकिस्तान के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड रहा है। भारत ने 16 में से 13 मैचों में कामयाबी हासिल की है। आज के दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड्स का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 10:30 बजे दिन में शुरू होगा। फीफा आलमी कप 2026 में आज ग्लेट स्टेडियम में खेले गए ग्रुप सी के मैच में स्कॉटलैंड ने हेती को 1-0 से शिकस्त देकर 28 बरस की नाकामियों का सिलसिला खत्म कर दिया। मैच का फैसला कुन गोल पहले हाफ में जैन मैकगिल ने किया, जिसकी बदौलत स्कॉटलैंड अपने ग्रुप में पहले मकाम पर पहुंच गया।
एक दूसरे मैच में बराबर

मैंने सुन मेरा तुम्हारा प्रोग्राम का पहला नगमा आपने सुना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। नगमा निगार आनंद बख्शी, तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मुझे सुनिए, बाजीगर फिल्म से ये दुगाना विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाजों में। इस नगमे की मौसीकी तरतीब दी है अनु मलिक ने।

सामिन अभी आप सुन रहे थे मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में दुगाना फिल्म पहचान से। आइए सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू का गाया हुआ ये नगमा फिल्म है साजन का घर। नगमा निगार समीर तर्ज बनाई है नदीम शरवन ने।

0: फिल्मी दोगानों का प्रोग्राम मिली सुर मेरा तुम्हारा सामयीन अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। ये प्रोग्राम अभी जारी है। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं प्रोग्राम तारीख साज। मौजू है के आसिफ के यौम पैदाइश के हवाले से ये तारीख साज प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, तहरीर अहमदुल्ला सिद्दीकी की।
1: ये आसिफ, जिनका पैदाइशी नाम आसिफ करीम था, वो हिंदुस्तानी फिल्म सनत में हिदायतकार, प्रोड्यूसर और मंजरनवीस के तौर पर मशहूर थे। उन्हें 1960 में बनने वाली रजमिया तारीखी ड्रामा फिल्म मुगल आजम के लिए तारीखी शोहरत हासिल हुई। के आसिफ उत्तर प्रदेश के इटावा में 14 जून 1922 में डॉक्टर फजल करीम और बीबी गुलाम फातिमा के घर पैदा हुए। आसिफ करीम मुंबई गए, जहां उन्होंने अपना नाम बदलकर के आसिफ कर लिया और वो एक कामयाब डायरेक्टर बन गए। के आसिफ ने सबसे पहले 1945 में फिल्म फूल को अपनी हिदायतकारी दी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही। उससे एक साल पहले ही के आसिफ ने मुगल शहंशाह अकबर की जिंदगी पर फिल्म बनाने का मंसूबा बनाया। के आसिफ ने सैयद इम्तियाज अली ताज की उर्दू नावल अनारकली की कहानी पर मबनी फिल्म के लिए सबसे पहले हीरो के तौर पर चंद्रमोहन और अदाकारा नरगिस को मरकजी किरदार में लेने का जहन बनाया। ताहम 1946 में इस फिल्म के प्रोडक्शन से कबल ही चंद्रमोहन इंतकाल कर गए। के आसिफ ने फिल्म मुगल आजम के मंसूबे को आर्जी तौर पर ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसके बाद के आसिफ ने 1951 में दिलीप कुमार और मधुबाला को मरकजी किरदार में रखकर फिर से फिल्म मुगल आजम की हिदायतकारी का आगाज किया। के आसिफ ने गर्चे अपनी जिंदगी में महज 3 फिल्मों को हिदायतकारी दी, लेकिन उसके बावजूद उनका नाम

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी दो गानों का प्रोग्राम मेरे सुर मेरा तुम्हारा, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। दिन के एक बज चुके हैं, ये वक्त होता है आलमी खबरों के बुलेटिन का। ये आकाशवाणी है, अब आप करीम अहमद से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा है कि खलाई तहकीक का भारतीय इदारा इसरो चांद पर उतरने वाला ऐसा खलाई जहाज तैयार कर रहा है जो 200 दिन तक काम कर सकेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने का मुआहदा आज तय पा जाएगा और इसके फौरन बाद सभी के लिए आबनाए हुर्मुज को खोल दिया जाएगा। स्विट्जरलैंड में आज एक रेफरेंडम के जरिए मुल्क की आबादी को 1 करोड़ तक महदूद करने की तजवीज के सिलसिले में वोट डाले जाएंगे। और खवातीन के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दो मुल्कों फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने दौरे के पहले मरहले के तहत कल रात फ्रांस के शहर नीस पहुंचे। फ्रांस में अपने क्याम के दौरान वो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करेंगे और आइंदा G7 समिट से कबल वो सदर मैक्रों के साथ बाहमी ताउन के अहम शोबों और आलमी उमूर पर दो तरफा बातचीत करेंगे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म स्लोवाकिया का दौरा करेंगे जहां वो स्लोवाक क्यादत के साथ दो तरफा मीटिंगें करेंगे। कल मारूफ होटल नेग्रेस्को में मुनक़िदा एक कम्युनिटी इस्तक़बालिया तकरीब में भारतीय बिरादरी की बड़ी तादाद ने वज़ीर-ए-आज़म का गर्मजोशी से पुरजोश इस्तक़बाल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भारतीय बिरादरी के अफराद से खुशगवार अंदाज में मुलाकात की और रंगारंग सकाफती प्रोग्रामों से महजूज हुए। इन प्रोग्रामों में भारतीय क्लासिकी रक्स की मुख्तलिफ शक्लें जिनमें कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम शामिल हैं पेश की गईं। ये रक्स फ्रांसीसी और अतालवी फनकारों ने पेश किए। ये पुरजोश इस्तकबालिया भारत और फ्रांस के दरमियान मजबूत सकाफत

0: और अमीर आबाद की अक्कासी करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में पहले से देश एक्सपोजिशन में भारत इनोवेट्स प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब में भारत के स्टार्टअप और इख्तराई इको निज़ाम को उजागर किया जाएगा, जहां तकरीबन 120 स्टार्टअप से आलमी सरमायाकारों और टेक्नोलॉजी कायदीन के सामने अपने इख्तराआत पेश करेंगे। तकरीब के बाद वजीर आजम मोदी और सदर मैखा विला केरिलोस में दो तरफा बातचीत करेंगे। ये इस साल भारत और फ्रांस के ताल्लुकात को खसूसी आलमी स्ट्रेटजिक शराकत दारी की सतह तक बढ़ाने के बाद पहली मुलाकात होगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दिफा, टेक्नोलॉजी, तजारत और इख्तरा के शोबों में ताउन के अलावा अहम इलाकाई और आलमी हालात व वाकयात पर भी तबादला ख्याल किए जाने का इम्कान है। इसके बाद वजीर आजम अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत स्लोवाकिया के लिए रवाना हो जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सर्बिया के सदर अलेक्सांडर वूसिक की जानिब से उन्हें तवील तरीन मुद्दत तक खिदमत अंजाम देने वाले वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद देने के लिए उनके तमी तशक्कुर का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने उनके पुरखलूस मुबारकबाद के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सर्बिया के सदर के हालिया भारत दौरे और उसके दौरान हुए समरावर मुजाकरात को याद किया। जनाब मोदी ने कहा कि भारत सर्बिया के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात को बहुत कदर करता है और उन्होंने ये एतमाद जाहिर किया कि आइंदा बरसों में दोनों मुल्कों के दरमियान शराकत दारी मजीद मजबूत होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान मियारी हिफ्ज़ाने सेहत को और ज्यादा कम खर्च और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए भरपूर अंदाज से काम किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क को उस वक्त बड़े फख्र का एहसास होता है जब भारत को दुनिया के हिफ्ज़ाने सेहत के सबसे बड़े प्रोग्राम आयुष्मान भारत के मुल्क के तौर पर जाना जाता है। इसके तहत कमजोर तबकों के लोगों को आला मियार की हिफ्जान सेहत सहूलियात फराहम की जाती हैं। जनाब मोदी ने कहा कि पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना जैसी कोशिशों से दवाएं कम कीमत की हो गई हैं। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि सरकार एक सेहतमंद भारत की तामीर की खातिर अब तक की पेशरफ्त को बरकरार रखते हुए यह सिलसिला आगे बढ़ाएगी। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के महकमे के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान भारत के हिफ्जान सेहत के शोबे में बड़ी तब्दीली आई है और सभी शहरियों के लिए कम खर्च और काबिल रसाई हिफ्जान सेहत को यकीनी बनाने पर खास तवज्जो दी गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गडकरी ने कहा कि हिफ्जान सेहत से मुतालिक हुकूमत के सरकर्दा इकदाम से मुल्क के सेहत के बुनियादी ढांचे को काफी तकवीत मिली है और एक स्वस्थ भारत के नजरिए को फरोग हासिल हुआ है। कॉमर्स और सनत के महकमे के वजीर पीयूष गोयल ने भी जोर देकर कहा है कि भारत आज हिफ्जान सेहत के दुनिया के कई सबसे बड़े इकदाम में कायदाना रोल अदा कर रहा है। झारखंड में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान बिजली गिरने के अलग अलग वाकयात में कम से कम 7 अफराद की मौत हो गई। इनमें 3 ख्वातीन और 10 साल का एक लड़का शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक रांची में 2 अफराद की मौत हुई जबकि गढ़वा जिले में भी 2 अफराद मारे गए। दीगर मौत की इतला चित्रा, गिरिडीह और सरायकेला खरसवान जिले से मिली है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया है कि उन्होंने एक ऐसे जदीद मसनूई हीटिंग निजाम को तैयार करने के लिए एटमी तवानाई के महकमे के साथ इश्तराक किया है जो चांद की सतह पर उतरने वाले खलाई जहाज को चांद के बेहद ठंडे मौसम से महफूज रख सके। बेंगलुरु में CSIR RISE कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए इसरो के सरबराह ने बताया कि शमसी तवानाई वाले चंद्रयान 3 मिशन का खलाई जहाज विक्रम चांद पर महज 14 दिन ही काम कर पाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए आज एक माहदे पर दस्तखत किए जाएंगे और इसके फौरन बाद अहम गुजरगाह आबनाए हुरमुज को तमाम ममालिक के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने ये ऐलान एक सोशल मीडिया पोस्ट पर किया। इसके साथ ही ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ये माहदा तवक्कुआत के मुताबिक पाए तकमील तक न पहुंच सका तो मजीद हमलों का ऑप्शन भी मौजूद है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते फ्रांस में मुनाकिद होने वाली G7 समिट के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अमरीकी इंतजामिया के एक सीनियर अहदेदार के मुताबिक इन मुलाकातों में इकतसादी तरक्की, सप्लाई चेन्स, मसनू जहानत, सरमायाकारी में शराकत दारी और आलमी सलामती से मुतालिक मुख्तलिफ चैलेंजों पर तबादला ख्याल मुतवक्के है। स्विट्जरलैंड में आज एक अहम राय शुमारी होने जा रही है जिसमें मुल्क की आबादी को महदूद करने की तजवीज पर वोटिंग होगी। इसमें राय दहिंदगान ये फैसला करेंगे कि आया मुल्क की आबादी को 1 करोड़ की हद तक महदूद किया जाए या नहीं। अगर ये तजवीज मंजूर हो जाती है तो स्विट्जरलैंड यूरोप का ऐसा पहला मुल्क बन जाएगा जो अपनी आबादी पर कानूनी हद मुकर्रर करेगा। खातिन के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज बर्मिंघम में एजबेस्टन के मुकाम पर ग्रुप ए के मुकाबले में भारत रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। खातिन के T20 बैन अल्कवामी मैचों में भारत का पाकिस्तान के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड रहा है। भारत ने 16 में से 13 मैचों में कामयाबी हासिल की है। मर्दों के क्रिकेट में कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक रोजा बैन अल्कवामी मैचों की सीरीज के बारिश से मुतासर पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। जीत के लिए 195 रन के निशाने का पीछा करते हुए भारत ने 22 ओवर 5 गेंदों में जीत हासिल कर ली। फीफा आलमी कप 2026 में आज ग्रुप सी के मैच में स्कॉटलैंड ने हेती को 1-0 से शिकस्त देकर 28 बरस की नाकामियों का सिलसिला खत्म कर दिया। मैच का फैसला कुन गोल पहले हाफ में जॉन मैकगिल ने किया जिसके बदौलत स्कॉटलैंड अपने ग्रुप में पहले मुकाम पर पहुंच गया। खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा है कि खलाई तहकीक का भारतीय इदारा इसरो चांद पर उतरने वाला ऐसा खलाई जहाज तैयार कर रहा है जो 200 दिन तक काम कर सकेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने का मुआहदा आज तय पा जाएगा। और खवातीन के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। इसके साथ ही आलमी खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

डीडी वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है इस वक्त की अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नाइस में फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा मुश्तरक तौर पर भारत इनोवेट्स तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा कि खलाई तहकीक का भारतीय इदारा इसरो चांद पर उतरने वाला ऐसा खलाई जहाज तैयार कर रहा है जो 200 दिनों तक काम कर सकेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ जंग खत्म करने का मुआहदा आज तय पा जाएगा और इसके फौरन बाद सभी के लिए अबनाए हुरमुज को खोल दिया जाएगा। स्विट्जरलैंड में आज एक रेफरेंडम के जरिए मुल्क की आबादी को 1 करोड़ तक महदूद करने की तजवीज के सिलसिले में वोट डाले जाएंगे। और ख्वातीन के आईसीसी T20 आलमी कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में अपने रवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। सामईन ये थी इस वक्त की अहम खबरों की सुर्खियां। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। दिन के 1:15 हुआ चाहते हैं, ये वक्त होता है पहली मजलिस के इख्तिताम का। सपहर 3 बजे हम अपनी दूसरी मजलिस की नशरियात के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत।

वाह क्या मधुर धुन। मुकेश की गायकी और शंकर जयकिशन का संगीत इस गीत को अमर बना देता है। एक रोचक बात आपको बता दें दोस्तों कि इस गीत का फिल्मांकन उस दौर में काफी चर्चित हुआ था। गीत में राज कपूर जिस अंदाज में नायिका को रोकने की कोशिश करते हैं वो दर्शकों को बहुत पसंद आया था। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से अपने पसंदीदा चैनल इंद्रप्रस्थ चैनल पर और मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस सर आपके साथ। आपको ये फिल्म कैसी लग रही है, स्टोरी कैसी लग रही है, आप हमें इसके लिए मेल कर सकते हैं। आपके मेल का हमें बेसब्री से इंतजार होगा और आपकी मेल कार्यक्रम के बीच में जरूर शामिल की जाएगी। तो फिल्म कन्हैया की कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक गांव से। इस गांव में रहती है एक भोली भाली और धार्मिक लड़की शानू।

जिसका किरदार निभाया है नूतन ने। शानू भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है, वे हमेशा कृष्ण भक्ति में डूबी रहती है। उधर गांव में एक लड़का है जिसका नाम है कन्हैया, ये भूमिका निभाई है राज कपूर ने। ये कन्हैया एक लापरवाह और निठल्ला और शराबी है। एक दिन अचानक शानू की मुलाकात कन्हैया से होती है और नाम के धोखे में वो उसे अपना भगवान कृष्ण समझ बैठती है। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है और वो मोड़ क्या आता है, इससे पहले सुन लेते हैं इस फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत।

कहानी में ये ट्विस्ट आता है कि अब शानू के मन में कन्हैया के लिए भावनाएं और गहरी होने लगती है। दूसरी तरफ असली कन्हैया इस गलतफहमी को समझते हुए भी उसे दूर नहीं करता। धीरे धीरे गांव में दोनों के प्रेम की चर्चाएं फैल जाती हैं, तो गांव की पंचायत दोनों के विवाह का फैसला करती है। शानू अपने सपनों को सच होता हुआ देख रही है, लेकिन विवाह के समय उसे सच्चाई का पता चलता है।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से और हमारी आज की फिल्म है कन्हैया। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आपके हम संदेश शामिल कर लेते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। तो ये पहला संदेश हमें मिला है फागुराम यादव का, इन्होंने लिखा है सप्रेम नमस्कार नंदा मैडम, आपको भी हमारा नमस्कार, हम आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं और आपको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमें संदेश भेजा है इन्होंने संबलपुर कांकेर से, फागुराम यादव के साथ हैं ज्योति और ओजस्वी यादव। अगला संदेश हम शामिल कर रहे हैं, ये संदेश हमें मिला है सतीश अनेजा का, नमस्कार जी आपको भी नमस्कार, कन्हैया फिल्म अपना लोहा मनवा चुकी है, बिल्कुल मनवा चुकी है, सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा अभिनय किया था, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिल्म। और ये हमें संदेश मिला है चंडीगढ़ से, इनके साथ है बिमला अनेजा जी। और अगला संदेश हम शामिल करते हैं दिनेश वर्मा का, संदेश हमें ये मिला है, उनको कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, धन्यवाद आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है। इन्होंने दिनेश वर्मा जी ने हमें ये मेल भेजा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, इनके साथ है करुणा वर्मा। और अगला संदेश हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं, ये है निसार अली का, इनको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, इनके साथ है नौशाद सलमानी बेबी आलिया अयान बाबू और इनके परिवार के सभी सदस्य, ये भी हमारा प्रोग्राम बहुत तल्लीनता के साथ सुन रहे हैं, धन्यवाद। और अगला संदेश है, ये संदेश आया है सुर संगम रेडियो श्रोता संघ से, इन्होंने लिखा है आज एक ही फिल्म प्रोग्राम में नंदा जी प्रोग्राम पेश कर रही हैं, बिल्कुल सही बोला आपने, आपको नमस्कार, और इन्होंने प्रोग्राम इनको अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। आज की फिल्म कन्हैया जिसमें राज कपूर नूतन ललिता पवार और संगीत शंकर जयकिशन की संगीत से सजी फिल्म लाजवाब है, इसके आपकी तारीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको फिल्म पसंद आ रही है और फिल्म के गीत भी पसंद आ रहे हैं। और अगला हमें संदेश मिला है बबलेश पनवर जी का, गांधी चौक बाड़मेर राज से, इन्होंने भी फिल्म कन्हैया से जुड़ा एक किस्सा हमें लिखकर भेजा है, फिल्म के क्लाइमेक्स और कहानी में एक बेहद भावुक मोड़ आता है, गांव वाले शन्नो के चरित्र पर उंगली उठाते हैं और खुद को पवित्र साबित करने के लिए सीता माता की तरह अग्नि परीक्षा देने की जिद पर अड़ जाती है, जब शन्नो चिता पर बैठती है तो राज कपूर का किरदार उसे बचाने दौड़ता है लेकिन लोग उसे पीट कर भगा देते हैं, इसके बाद कन्हैया पहाड़ पर दौड़कर जाता है और रोते रोते भगवान कृष्ण को पुकारता है और वो आकर सच्चे भक्त की रक्षा करे, वो ऐसा बोलता है। तो थिएटर में इस सीन को देखकर दर्शक भावुक हो गए थे और फिल्म के सबसे दमदार दृश्यों में से इसे माना जाता है, इस जानकारी के लिए बबलेश पनवर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी है वो जरूर इस फिल्म को देखें। अगला संदेश आया है कमलकांत जी का पीपरिया से, और इनको भी प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और इनके साथ इनके परिवार के अन्य सदस्य। और अगला संदेश मैं शामिल कर लेती हूं राधे श्याम शर्मा जी का, हांडी खेड़ा सिरसा से, और इनके साथ है इंदिरा शर्मा, इनको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है और फिल्म से जुड़ी जानकारी भी इनको अच्छी लग रही है और गाने तो कर्णप्रिय लग ही रहे हैं, धन्यवाद आपका। और अगला एक और मेल मैं शामिल करना चाहूंगी धर्मेंद्र छिप्पा जी का, इन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप चर्चा कर रहे हैं, बेहतरीन फिल्म।

बिल्कुल सही कहा, ये संदेश हमें मिला है भोपाल गढ़ राजस्थान से। इनके साथ हैं कपिल चिंपा और पूजा परिहार जी। तो अभी संदेशों को देते हैं एक विराम और कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि कन्हैया को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। पहली बार उसे महसूस होता है कि उसने किसी के विश्वास को ठेस पहुंचाई है। गांव पर संकट आता है, लोग परेशान होते हैं। ऐसे समय में कन्हैया आगे बढ़कर लोगों की मदद करता है। उसके अंदर का अच्छा इंसान सामने आने लगता है। शानू भी उसके बदले हुए रूप को देखती है। शानू को महसूस होता है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं बल्कि अच्छे कर्म करने वाले इंसानों में भी बसते हैं। शानू को समझ आ जाता है कि सच्चा कन्हैया वही है जो दूसरों के दुख में साथ खड़ा हो। शानू भी महसूस करती है कि इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। इस प्रकार शानू कन्हैया को अपना लेती है और फिल्म का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो आइए सुनते हैं फिल्म का एक और प्यारा सा गीत।

बस आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से और मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर आपके साथ आपके पसंदीदा चैनल इंद्रप्रस्थ चैनल पर। और हमारी आज की फिल्म है कन्हैया। फिल्म कन्हैया में राज कपूर ने एक ऐसे युवक का किरदार निभाया जो शुरू में लापरवाह दिखाई देता है लेकिन बाद में उसके अंदर का संवेदनशील इंसान सामने आता है। राज कपूर ने इस परिवर्तन को बहुत बाखूबी से निभाया है। वहीं नूतन ने शानू के किरदार में मासूमियत आस्था और भावनात्मक संघर्ष को इतने प्रभावशाली ढंग से निभाया कि दर्शक उनकी कला के कायल हो गए। ललिता पवार और मदनपुरी ने भी अपने अपने किरदारों को मजबूती प्रदान की। फिल्म की कहानी भक्ति और मानवीय प्रेम के अनोखे मेल पर आधारित थी जो उस दौर में काफी अलग विषय माना गया। दोस्तों, फिल्म के संगीत की अगर बात करें तो शंकर जयकिशन ने इस फिल्म में लोक धुनों और मधुर मेलोडी का सुंदर मिश्रण पेश किया। गीतकारों ने भी सरल लेकिन प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग किया। मुकेश की आवाज ने गीतों को अमर बना दिया। तो दोस्तों, ये थी साल 1959 की फिल्म कन्हैया, एक ऐसी फिल्म जिसमें भक्ति, प्रेम, विश्वास और इंसानियत का सुंदर संदेश छिपा है। तो दोस्तों, कुछ और मेल जाते जाते कुछ और मेल शामिल कर लेते हैं और साथ में आपको इस फिल्म का एक और प्यारा सा गीत मैं सुनवाना चाहूंगी। गीत के साथ साथ आपके संदेश भी शामिल करूंगी और इसी गीत के साथ अपने दोस्त नंदा इस्सर को अनुमति दीजिए और अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

अगला संदेश हमें आया है बिट्टू गंगनेजा जी का। इन्होंने ये संदेश भेजा है जलालाबाद वेस्ट से। इनके साथ है पूनम गंगनेजा। और भी एक दो मेल मैं शामिल करना चाहूंगी। अगला संदेश आया है संदीप मक्कर जी का, ज्योति मक्कर, मन्नत, भरत मक्कर, इनको भी प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है। ये संदेश आया है जलंधर से। और एक संदेश और शामिल करना चाहूंगी। नमस्कार आरजे जी, नमस्कार। ये हमें मेल भेजा है भूषण खेड़ा जी ने। इनके साथ हैं विशाल खेड़ा, शालिनी खेड़ा, वाणी खेड़ा। और ये संदेश हमें मिला है पंजाब खेड़ा परिवार की तरफ से। और इसके साथ ही अगर किसी का मेल मैं शामिल ना कर पाऊं समय की पाबंदी की वजह से, तो आप नाराज मत होइएगा, अगले प्रोग्राम में आपका मेल जरूर शामिल किया जाएगा।

एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना तहत करोड़ों लोग नकदी है सेहत संभाल हासिल कर रहे हैं और इसका दायरा हम सीनियर सिटीजन तक भी बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केन्द्र राय किफायती दर से मयारी दवाइया उपलब्ध कराई जा रही है। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अब दुनिया दई वेहत संभाल योजनाओं सफलतापूर्वक चला गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब तो वध समय तक भारत के प्रधानमंत्री वजो सेवा पा ली। उन्होंने विदाई देने सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्सेंडर वुसिच का धन्यवाद किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सर्बिया के राष्ट्रपति का उन्होंने हार्दिक विदाई संदेश से धन्यवाद किया। सर्बिया के राष्ट्रपति के हालिया भारत दौरे और दौरे दौरान हुई लाहेवंद चर्चाओं याद करद उन्होंने कहा कि भारत सर्बिया अपनी दोस्ती की गहराई कदर करता है। उन्होंने विश्वास प्रगट किया कि आने वाले समय में दोनों देशों में स्तर भाईवाल होर मजबूत होगी। झारखंड पिछले 24 घंटे दौरान आसमानी बिजली डिगण वक् वक् घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है, जिन्होंने 3 औरतों के बच्चा शामिल है। पुलिस ने दसा कि मृतकों में 2 रांची और 2 गढ़वा जिले के सन, बाकी चतरा देवी और सरायकेला खरसावन जिले के सन। अधिकारियों ने लाशों को पोस्टमार्टम में भेज दिया है।

प्रदेश प्रतियोगिता महिला 2020 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान 16 मैचों पर 13 से हराया है। ऑस्ट्रेलिया ने फीफा विश्व कप 2026 के अपने पहले ग्रुप डी मैच में तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। अमेरिका ने न्यूजर्सी में ग्रुप सी के एक और मैच में आज स्कॉटलैंड ने हैपी को 1-0 से हराया है। स्कॉटलैंड ने 28 सालों

तो पहला कतरा के स्विट्जरलैंड में चार गुप्त बीज होने एक कितना बराबर है आज श्रीलंका के कोलंबो में 5000 तो वध मृतक नर्तकी ने समूहक तौर पर भारतनाट्यम पेश किया। यह एक इतिहासिक सभ्याचारक मेल पत्थर है। इस समूहक पेशकारी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। श्रीलंका भारत के कई होर देशों के हजारा नृत्यों ने इस वि हिस्सा लिया। इस समागम का उद्देश्य भारतीय नाट्यम की सदीवी परंपरा प्रदर्शित करना और स्वराज्यों के पार सभ्याचारक संबंधों उत्साहित करना।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के मंत्री तो इंडिया इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन दवली गलबात भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 साल

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के शहर नीस में मीटिंगों के साथ यूरोप का अपना दौरा शुरू कर दिया है। जनाब मोदी अब से कुछ देर बाद फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर भारत इनोवेट्स 2026 का इफ्तिताह करने वाले हैं। आज सदर मैक्रों के साथ दो तरफा बातचीत में खसूसी आलमी कलीदी साझेदारी में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। झारखंड में बिजली गिरने के अलग अलग वाकयात में 7 अफराद की मौत हुई है। जनूब मगरबी मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक के बाज हिस्सों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और जनूबी छत्तीसगढ़ में पहुंचने का इम्कान है। कोलंबो में 5,000 से ज्यादा भरतनाट्यम डांसर्स ने सबसे बड़े भरतनाट्यम रक्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है। और क्रिकेट में खवातीन के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के हमराह अब से कुछ देर बाद नीस में भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करने वाले हैं। ये अहम तकरीब भारत और फ्रांस के इख्तरा के साल के तहत हो रही है और इसमें 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप इदारे, आलमी सरमायाकार, टेक्नोलॉजी के माहिरीन और कारोबारी अफराद शिरकत कर रहे हैं, जिसमें भारत के तेजी के साथ फरोग पाते इख्तराई इकोनिज़ाम की अक्कासी की जाएगी। बाद में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर मैक्रों दो तरफा बातचीत करेंगे, जिसमें भारत फ्रांस खसूसी आलमी कलीदी साझेदारी में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। दोनों रहनुमा अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सदर इमैनुअल मैक्रों मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब के दौरान जिद्दत तराजी, सनअतकारी और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के शोबों में भारत की बढ़ती हुई ताकत का मुजाहरा किए जाने का इम्कान है। बाद में दोनों रहनुमा दो तरफा बातचीत करेंगे, जिसमें भारत फ्रांस खसूसी आलमी कलीदी साझेदारी में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा और टेक्नोलॉजी, तिजारत और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में जारी ताबुन में मजीद इजाफा करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दो तरफा बातचीत और सदर मैक्रों की जानिब से एक जोराने के इनका के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने दौरे के अगले मरहले के तहत स्लोवाकिया रवाना हो जाएंगे। फ्रांस के शहर नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस में अगले हफ्ते G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अमरीकी इंतजामिया के एक आला ओहदेदार के मुताबिक इस बातचीत में मुआशी तरक्की,

0: है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान मियारी हिफ्ज़ाने सेहत को और ज्यादा कम खर्च और ज्यादा लोगों तक पहुंच पहुंचाने के लिए भरपूर अंदाज से काम किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क को उस वक्त बड़े फख्र का एहसास होता है जब भारत को दुनिया के हिफ्ज़ाने सेहत के सबसे बड़े प्रोग्राम आयुष्मान भारत के मुल्क के तौर पर जाना जाता है। इसके तहत कमजोर तबकों के लोगों को आला मियार के हिफ्ज़ाने सेहत सहूलियात फराहम की जाती हैं। जनाब मोदी ने कहा कि पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना जैसी कोशिशों से दवाएं कम कीमत की हो गई हैं। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि सरकार एक सेहतमंद भारत की तामीर की खातिर अब तक की पेशरफ्त को बरकरार रखते हुए यह सिलसिला आगे बढ़ाएगी। मरकजी वजीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान भारत के हिफ़्ज़ाने सेहत के शोबे में बड़ी पेशरफ्त हुई है जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि सेहतमंद शहरी एक मजबूत मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत PMJAY और आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर डिजिटल हिफ़्ज़ाने सेहत के मुख्तलिफ इकदाम तक हिफ़्ज़ाने सेहत की मियारी सहूलियात अब पहले से कहीं ज्यादा लोगों तक पहुंच रही हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के महकमे के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान भारत के हिफ़्ज़ाने सेहत के शोबे में बड़ी तब्दीली आई है और सभी शहरियों के लिए कम खर्च और काबिल रसाई हिफ़्ज़ाने सेहत को यकीनी बनाने पर खास तवज्जो दी गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गडकरी ने कहा कि हिफ़्ज़ाने सेहत से मुतालिक हुकूमत के सरकर्दा इकदाम से मुल्क के सेहत के बुनियादी ढांचे को काफी तकवीत मिली है और एक स्वस्थ भारत के नजरिए को फरोग हासिल हुआ है। कॉमर्स और सनत के महकमे के वजीर पीयूष गोयल ने भी जोर देकर कहा है कि भारत आज हिफ़्ज़ाने सेहत के दुनिया के कई सबसे बड़े इकदाम में कायदाना रोल अदा कर रहा है। अकलियतों के उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि गुज़िश्ता 12 साल में मुल्क में अकलियती बिरादरियों की जिंदगी मियार और मजमू सूरत हाल में नुमाया सुधार आया है। एक कौमी रोजनामे के साथ इंटरव्यू में जनाब रिजिजू ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में सबका साथ सबका विकास के नजरिए की बदौलत इस बात को यकीनी बनाया जा सका है कि तरक्की के फायदे मुआशरे के हर तबके तक पहुंचें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की शिकायत पर अमेरिका में कायम एक तंजीम और 6 दीगर इदारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस शिकायत में गैर मुल्की डेबिट कार्ड्स के नेटवर्क के जरिए गैर मुल्की फंड्स को गैर कानूनी तरीके से बरोएकार लाने का इल्जाम लगाया गया है जिसमें मुल्क के बाई बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासरा इलाके भी शामिल हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की शिकायत की बुनियाद पर बेंगलुरु की कोथनूर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की मुख्तलिफ दफात और गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक एक्ट के तहत 11 जून को केस दर्ज किया। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आज 5,000 से ज्यादा भरतनाट्यम डांसर्स ने मिलकर एक साथ रक्स का मुजाहरा किया जो एक तारीखी सकाफती संगे मील है और इस तरह उन्होंने भरतनाट्यम के सबसे बड़े रक्स प्रोग्राम का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज तारीख रकम की गई। 5,000 से ज्यादा भरतनाट्यम फनकारों ने एक साथ परफॉर्म करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम डांस क्लास का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। रंग ताल और रिवायत के शानदार इंतजाज ने पूरे माहौल को एक सकाफती जश्न में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद पाया तकमील को पहुंचाने वाला ये तारीखी प्रोग्राम भारतीय क्लासिकी रक्स की आलमी मकबूलियत को नई बुलंदियों तक ले गया है। इस कामयाबी के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का साइटेशन भारत हाई कमिश्नर संतोष झा ने फनकारों और मुंतजमीन की नुमाइंदगी करते हुए हासिल किया। भारत और श्रीलंका के सकाफती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने वाला ये प्रोग्राम फन और विरासत की एक नाकाबिले फरामोश मिसाल बन गया है। अहमद मुईन फारूकी, कोलंबो।
0: झारखंड में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान बिजली गिरने के अलग अलग वाकयात में कम से कम 7 अफराद की मौत हो गई। इनमें 3 खवातीन और 10 साल का एक लड़का शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक रांची में 2 अफराद की मौत हुई जबकि गढ़वा जिले में भी 2 अफराद मारे गए। दीगर अमवात की इत्तला चित्रा, गिरिडीह और सरायकेला खरसवान जिले से मिली है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कहा

0: and friends. Raja is a unique celebration of womanhood and Odisha's enduring reverence for nature and its life-sustaining processes. Prakash Das, Akashvani News, Bhubaneswar.
1: Indian Space Research Organization, ISRO Chairman V. Narayanan has informed that they've collaborated with the Department of Atomic Energy to develop an advanced artificial heating system that can protect lunar lander from the freezing weather of the moon. Addressing the CSIR RISE conclave in Bengaluru, the ISRO chief explained that Chandrayaan-3 lander Vikram, fueled by solar energy, operated only for 14 days on moon. ISRO will now work with the Atomic Energy Department to develop a lunar lander that can survive on the moon for up to 200 days. The White House has said that U.S. President Donald Trump will meet Prime Minister Narendra Modi and other world's leaders during the next week's G7 summit in France. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. The India Meteorological Department, IMD, has forecast favorable conditions for further advancement of southwest monsoon into remaining parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, some more parts of Odisha, and some parts of South Chhattisgarh during the next 2 to 3 days. The IMD predicted heavy rainfall over parts of the northeastern region, Andaman and Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Odisha, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. The weather agency said that thunder squall conditions are likely to prevail over Madhya Pradesh, Telangana and West Rajasthan till tomorrow. It added that Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh, Jharkhand, Maharashtra, Uttarakhand, interior Karnataka and West Bengal will witness thunderstorms accompanied with lightning and gusty winds today. Moving on to sports news, first the news from FIFA. Australia made a dream start to their FIFA World Cup 2026 campaign, defeating Turkey 2-0 in their Group D opener. Goals from Nestori Ayankunda and Connor Metcalf capped two clinical counter-attacking moves as the Socceroos claimed all 3 points. Australia remained compact and organized throughout the contest, frustrating their opponents and capitalizing on their chances. For Turkey, competing in their first World Cup in 24 years, the much-anticipated return to football's biggest stage ended in disappointment. Earlier in the day, Scotland moved to the top of Group C with a hard-fought 1-0 victory over Haiti in their Group C opener in Massachusetts. With this, Scotland ended a 28-year wait for a World Cup victory. And in ICC Women's T20 World Cup, India will begin their campaign against arch rivals Pakistan in a Group A fixture at Elverston in Birmingham today. The match will start at 7 p.m. India time. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi begins his two-nation Europe visit with engagements in Nice, France to inaugurate Bharat Innovates 2026 jointly with French President Emmanuel Macron in a short while. Bilateral talks with President Macron to review progress in India-France special global strategic partnership will be held later today. Some people killed in separate lightning strikes in Jharkhand since yesterday. Southwest monsoon to advance into parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh in the next 2 to 3 days. And in ICC Women's T20 World Cup, India will begin campaign against Pakistan in Birmingham this evening. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेक्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
3: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
4: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
2: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य

0: प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के

0: संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्यौहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्यौहार के खास पकवाने जैसे पूड़ा पीठा, आरिसा पीठा, चकोरी पीठा और मशहूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। रजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कार्यकाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। कुछ पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार।

जहाँ लौट कर आ गए हैं हम आपके लिए, और कार्यक्रम चल रहा है एक ही कलाकार, और मैं हूँ आपका रेडियो साथी रमेश द्विवेदी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

फिल्म जो कि 1969 में रिलीज हुई थी, इसका गाना आप सुन रहे हैं मुकेश कुमार साहब की दर्द भरी आवाज में। और इस गाने को लिखा है भारत व्यास ने और इस विरह गीत को फिल्माया गया है हमारे आज के कलाकार भारत भूषण पर।

दोस्तों, गुजरे जमाने के जाने माने एक्टर भारत भूषण ने अपने करियर में कालिदास, तानसेन, कबीर, बैजू बावरा और मिर्जा गालिब जैसी एक से बढ़कर एक फिल्में दी और आज हम उनके बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं। भारत भूषण साहब का जन्म 14 जून 1920 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ था और उनके पिता राय बहादुर मोतीलाल पेशे से वकील थे और उनके पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मों में काम करे। वे तो चाहते थे कि उनका बेटा वकील बने, लेकिन भारत भूषण को तो एक्टर ही बनना था और आखिरकार उन्होंने अलीगढ़ से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और चले आए माया नगरी बंबई, जिसे आजकल हम मुंबई कहते हैं। इसके बाद किस तरह से उनका स्ट्रगल शुरू हुआ और किस तरह से उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना सफल करियर बनाया, ये सब हम बताएंगे आपको आज के अपने इस कार्यक्रम में। बस आप सुनते रहिए कार्यक्रम एक ही कलाकार, अपने रेडियो दोस्त अरुणेश द्विवेदी के साथ।

फिल्म बरसात की रात जो कि 1960 में रिलीज हुई थी और मोहम्मद रफी साहब की मखमली आवाज में सुन रहे हैं आप ये गीत, और ये गीत आज भी भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ रोमांटिक गानों में से एक है।

और इसी बीच आपके संदेश लगातार हमारे पास आ रहे हैं। और गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा। और चंडीगढ़ से संदेश आया है राहुल खुराना, रचित खुराना, केशव रिधान खुराना का। और इन्होंने लिखा है कि आज आप एक ही कलाकार कार्यक्रम में भारत भूषण के बारे में जो बता रहे हैं और जो गाने सुनवा रहे हैं वो हमें बेहद पसंद आ रहे हैं। जी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ऐसे ही हमारे कार्यक्रम को सुनते रहिए।

तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज भारत भूषण साहब की। और अभी इस गाने से पहले हमने आपको बताया था कि उनका जन्म मेरठ में हुआ और इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई अलीगढ़ से पूरी किया और फिर जब वो मुंबई पहुंचे तब उनका संघर्ष शुरू हुआ। और एक बार की बात है कि वे मशहूर डायरेक्टर महबूब खान के पास पहुंचे और उन दिनों महबूब खान साहब अली बाबा 40 चोर की शूटिंग में बिजी थे। इसके बाद उस फिल्म में तो कोई रोल बचा नहीं था, लेकिन उसी समय उनको किसी ने बताया कि एक और डायरेक्टर है रामेश्वर शर्मा, जो कि भक्त कबीर नाम से एक फिल्म बना रहे हैं, आपको उनसे जाकर मिलना चाहिए और आपको वहां पर कुछ काम मिल सकता है। और हुआ भी ऐसा ही, उन्होंने रामेश्वर ने उन्हें फिल्म में काशी नरेश का रोल दिया और 60 रुपए महीने की नौकरी दे दी और 1942 में रिलीज हुई फिल्म भक्त कबीर में उनका पहला रोल था। और इस तरह से फिल्मी दुनिया में भारत भूषण साहब का करियर की शुरुआत हुई। आगे बढ़ने से पहले एक और प्यारा सा नगमा सुनवाते हैं भारत भूषण की ही एक फिल्म से।

बाजू बावरा जो कि 1952 में रिलीज हुई थी और ये गाना इसी फिल्म से है और ये फिल्म भारत भूषण साहब के करियर में मील का पत्थर साबित हुई और ये फिल्म और इसके गाने आज भी लोगों को बेहद पसंद आते हैं।

और इसी बीच आपके कुछ और संदेश ले लेते हैं। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता और सुभाष योगी का मैसेज आया है और इन्होंने लिखा है कि आप अभिनेता भारत भूषण जी के बारे में जो कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं वो बेहद पसंद आ रहा है और उनके फिल्मों के गाने को भी वे सुन रहे हैं।

दोस्तों, जब भक्त कबीर फिल्म हिट हो गई तो इसके बाद तो जैसे भारत भूषण साहब की किस्मत ही खुल गई और इसके बाद उन्होंने कई फिल्में एक के बाद एक की, उनमें से भाईचारा, सावन, जन्माष्टमी, बैजू बावरा और मिर्जा गालिब प्रमुख फिल्में थी। यह वो दौर था जब किस्मत भारत भूषण पर मेहरबान थी और देखते ही देखते उन्होंने मुंबई में कई बंगले खरीद लिए और कई महंगी महंगी बड़ी कारें भी खरीद ली। और इसके बाद उनके जीवन में क्या कुछ हुआ, किसने उनको सलाह दी कि वे शानदार अभिनेता तो नहीं, अब उनको फिल्म प्रोड्यूसर भी बनना चाहिए, और इस सलाह को उन्होंने माना या नहीं माना, और इसके बाद उनके करियर में, उनके जीवन में क्या कुछ हुआ, हम आपको बताएंगे इस गाने के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम एक ही कलाकार अपने रेडियो दोस्त अरुणेश कुमार के साथ।

फिल्म मिर्जा गालिब और आवाज सोनिया तलत महमूद की दिल नादा तुझे हुआ क्या है, इस फिल्म में भी थे हमारे आज के कलाकार भारत भूषण।

और इसी बीच आपके कुछ संदेश ले लेते हैं। दत्तरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और बुद्ध वर्मा का मैसेज आया है और उन्होंने लिखा है।

आप से हमारे साथ हमारे श्रोता जुड़ चुके हैं, संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत, भरत, कमल, सहनी और उनका पूरा परिवार।

दोस्तों, जब भारत भूषण साहब को उनके भाई रमेश ने उन्हें फिल्म प्रोड्यूसर बनने की सलाह दी और ये कहा कि अब वे एक एक्टर के तौर पर तो सफल हो ही चुके हैं, अब उन्हें फिल्म मेकिंग में उतरना चाहिए, उन्हें प्रोड्यूसर बनना चाहिए, और इस बात को भारत भूषण ने दिल से ले लिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो प्रोड्यूसर बनकर भी अपनी किस्मत आजमाते हैं। और उन्होंने कई फिल्में प्रोड्यूस की, इनमें से दो फिल्में हैं बसंत बहार और बरसात की रात। ये दोनों फिल्में तो सुपर डुपर हिट साबित हुई, लेकिन इसके बाद और उन्होंने जो फिल्में बनाई वे उतनी बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हो पाई और आखिरकार उन्हें बहुत अधिक नुकसान हो गया। और इस तरीके से उन्होंने प्रोड्यूसर बनने का जो उनका फैसला था वो उन्होंने अपने बाद में एक इंटरव्यू में कहा कि वो अच्छा फैसला नहीं था, और इस तरीके से वो फिर से अभिनय की दुनिया में यानी एक्टर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। और आगे बढ़ने से पहले एक और गाना आपको सुनवाते हैं, बहुत ही प्यारा सा गाना है ये, आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, एक परदेशी मेरा दिल ले गया।

0: फागुन, और इस को गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब ने। एक बेहद ही चौबला और सुपरहिट डांस नंबर है ये, और फिल्माया गया है भारत भूषण साहब पर।
1: पर

0: मोटी मोटी अखियों में आंसू ले गया, ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू ले गया।
1: गोपालगढ़ राजस्थान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे नियमित श्रोता हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार। इन्होंने लिखा है कि आप बेहतरीन अभिनेता रहे, भारत भूषण के बारे में बहुत ही अच्छी बातें बता रहे हैं और उनकी फिल्मों के गाने भी सुनवा रहे हैं, हमें बेहद पसंद आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: देसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू ले गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू ले गया।
1: गन्नौर कस्बा यूपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा। इन्होंने लिखा है कि आप भारत भूषण के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं वो तो हमें भी नहीं पता था और हमें आपका ये कार्यक्रम, आपका प्रस्तुतिकरण बेहद पसंद आ रहा है। ये बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही कार्यक्रम को सुनते रहिए।
0: आँखों से उजाले,
2: आँखों का उजाला पर दिस ले गया, जति जति मीठा मीठा हम दे गया।
0: जान पर जैसे तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया।
1: गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह का भी संदेश हमें प्राप्त हुआ है।
0: उसको बुला

0: तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया।
1: एक परी तुसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया।
2: दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है एक ही कलाकार, और आज के हमारे कलाकार हैं भारत भूषण साहब, और इनकी कई फिल्में सुपर डुपर हिट साबित हुई हैं, और उनमें से जैसे कि बरसात की रात फिल्म का हमने आपको गाना सुनवाया, और इसके अलावा रानी रूपमती फागुन जिसका भी आपने गाना सुना, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, और एक बहुत ही अच्छी फिल्म आई थी और उसमें एक बहुत ही अच्छा जिसको कहते हैं कि गाने तो होते ही हैं, साथ ही में क्या होता है कि आपके इन गानों के साथ साथ में बहुत सारी कव्वालियां भी होती हैं, तो वो कौन सी वो कव्वाली है और वो आपको सुनाते हैं मन्ना डे साहब आशा भोसले जी की आवाज में। ना तो कारवां की तलाश है,

एक और संदेश आया है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। पीएस नवकर, निर्मला, विशाल मलकापुर से, नारायण, सोपान और आशीष का।

रात्रि से संदेश आया है भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा का। इन्होंने लिखा है कि आपकी प्रस्तुति और भारत भूषण साहब के बारे में आप जो जानकारी दे रहे हैं और उनकी फिल्मों के गाने बेहद पसंद आ रहे हैं, ये बहुत बहुत धन्यवाद।

बरसात की एक रात इस फिल्म से आप इस कव्वाली को सुन रहे हैं, जो इसमें आवाज़ भी है वो बहुत ही अच्छी आवाज़ है आशा भोसले जी की और मन्ना डे साहब की।

दोस्तों अभिनेता भारत भूषण भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग यानी गोल्डन एरा के एक ऐसे सदाबहार अभिनेता थे जिन्होंने अपनी फिल्मों में शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय संगीत के अलावा जो गाने हैं और उनकी जो भावपूर्ण प्रस्तुति है वो आज भी लोगों को बेहद पसंद आती है। उनकी फिल्मों में उनके गानों को मुख्य तौर पर मोहम्मद रफी, मुकेश कुमार और मन्ना डे जैसे महान गायकों ने आवाज दी है। और एक ऐसा ही अब कार्यक्रम के आखिर में आपको एक गाना सुनवाते हैं जो कि एक भक्ति गीत है, शास्त्रीय संगीत पर आधारित है, राग है मालकौंस और इस पर आधारित यह बेहतरीन और शुद्ध भक्ति गीत है फिल्म बैजू बावरा से मोहम्मद रफी की आवाज में।

दोस्तों इसी के साथ घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमारे इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो अपने रेडियो साथी अरविश द्विवेदी को दीजिए अनुमति, फिर जल्द ही आपसे इसी चैनल पर किसी न किसी कार्यक्रम में होगी मुलाकात। तब तक कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

11:05 पर खबरें नशे की जाएंगी और 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद। से पहले 3:30 तन्हाई का जहर, इसमें चुपताई के अफसाने पर मबनी इस ड्रामे का दूसरा और आखिरी हिस्सा आप सुनेंगे। शाम 4:00 आप लुत्फानंदोज होंगे फिल्मी मौसीकी से। फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। शाम 4:50 पर खबरें नशे की जाएंगी और शाम 5:00 उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामने ये एक मुख्तसर तारुफ़ से मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। दिन के 3:05 हो जाते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के शहर नीस में मीटिंगों के साथ यूरोप का अपना दौरा शुरू कर दिया है। जनाब मोदी फ्रांस के सदर इमे

मैनुअल मैखों के साथ मिलकर भारत इनोवेट 2026 का इफ्तिताह करने वाले हैं। आज सदर मैखों के साथ दो तरफा बातचीत में खसूसी आलमी क्लिदी साझेदारी में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। कोलंबो में 5,000 से ज्यादा भरतनाट्यम डांसर्स ने सबसे बड़े भरतनाट्यम रक्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने से मुतालिक माहदे पर आज दस्तखत किए जाएंगे। और क्रिकेट में खवातीन के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों के हमराह नीस में भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करने वाले हैं। ये अहम तकरीब भारत और फ्रांस के इख्तिरा के साल के तहत हो रही है और इसमें 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप इदारे, आलमी सरमायाकार, टेक्नोलॉजी के माहिरीन और कारोबारी अफराद शिरकत कर रहे हैं, जिसमें भारत के तेजी के साथ फरोग पाते हुए इख्तराई इको निजाम की अक्कासी की जाएगी। बाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर मैखों दो तरफा बातचीत करेंगे, जिसमें भारत फ्रांस खसूसी आलमी क्लिदी साझेदारी में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। दोनों रहनुमा अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर इमैनुअल मैखों मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। इस तकरीब के दौरान जिद्दतराजी, सनतकारी और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के शोबों में भारत की बढ़ती हुई ताकत का मुजाहरा किए जाने का इम्कान है। बाद में दोनों रहनुमा दो तरफा बातचीत करेंगे, जिसमें भारत फ्रांस से खसूसी आलमी क्लिदी साझेदारी में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा और टेक्नोलॉजी, तजारत और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन में मजीद इजाफा करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दो तरफा बातचीत और सदर मैखों की जानिब से एक जोहराने के इनेकाद के बाद वज़ीर आज़म मोदी अपने दौरे के अगले मरहले के तहत स्लोवाकिया रवाना हो जाएंगे। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस में अगले हफ्ते G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अमरीकी इंतजामिया के एक आला अहदेदार के मुताबिक इस बातचीत में मुआशी तरक्की, सप्लाई निजाम, मसनू जहानत, सरमाकारी से मुतालिक साझेदारी और आलमी सिक्योरिटी को लाक मुख्तलिफ चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज किए जाने की उम्मीद है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान मियारी हिफ़्ज़ान सेहत को और ज्यादा कम खर्चे और ज्यादा लोगों तक बहम पहुंचाने के लिए भरपूर अंदाज से काम किया गया है। इस सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क को उस वक्त बड़े फख्र का एहसास होता है जब भारत को दुनिया के हिफ़्ज़ान सेहत के सबसे बड़े प्रोग्राम आयुष्मान भारत के मुल्क के तौर पर जाना जाता है। इसके तहत कमजोर तबकों के लोगों को आला मियार के हिफ़्ज़ान सेहत सहूलियात फराहम की जाती हैं। जनाब मोदी ने कहा कि पीएम भारतीय जनऔषधि परियोजना जैसी कोशिशों से दवाएं कम कीमत की हो गई हैं। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि सरकार एक सेहतमंद भारत की तामीर की खातिर अब तक की पेशरफ्त को बरकरार रखते हुए यह सिलसिला आगे बढ़ाएगी। मरकजी वजीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान भारत के हिफ़्ज़ान सेहत के शोबे में बड़ी पेशरफ्त हुई है, जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि सेहतमंद शहरी एक मजबूत मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत, PMJAY और आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर डिजिटल हिफ़्ज़ान सेहत के मुख्तलिफ इकदाम तक हिफ़्ज़ान सेहत की मियारी सहूलियात अब पहले से कहीं ज्यादा लोगों तक पहुंच रही हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के महकमे के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान भारत के हिफ़्ज़ान सेहत के शोबे में बड़ी तब्दीली आई है और सभी शहरियों के लिए कम खर्च और काबिल रसाई हिफ़्ज़ान सेहत को यकीनी बनाने पर खास तवज्जो दी गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गडकरी ने कहा कि हिफ़्ज़ान सेहत से मुतालिक हुकूमत के सरकर्दा इकदामात से मुल्क के सेहत के बुनियादी ढांचे को काफी तकवीत मिली है और एक स्वस्थ भारत के नजरिए को फरोग हासिल हुआ है। कॉमर्स और सनत के महकमे के वजीर पीयूष गोयल ने भी जोर देकर कहा है कि भारत आज हिफ़्ज़ान सेहत के दुनिया के कई सबसे बड़े इकदाम में कायदाना रोल अदा कर रहा है।
اقلیتوں کے امور

सज्जन अयंगर आपका पूरा नाम था। आज ही के दिन आपने इस दुनिया को अलविदा कहा था, आज उनकी बरसी है। 25 अक्टूबर सन 1933 को आपने जन्म लिया। मुंशिका शंकर जयकिशन ने उनकी सलाहियतों को पहचाना और पहला ब्रेक दिया। फिल्म सूरज का नगमा, तितली उड़ी उड़ जो चली, ये नगमा उनकी पहचान बना। यूं तो सन 1970 की फिल्म जहां प्यार मिले के नगमे बात जरा है आपकी के लिए उन्हें फिल्म फेयर एजाज से नवाजा गया था। आइए उन्हीं के गाय चंद्रा में इस प्रोग्राम में आपकी नजर करते हैं।

0: 干
1: 了。哎呀，恰哈咋哈提高不咋提，杜老娘呢，他给班级没被他呀，好个，都别家中干。काले जा ही निकल पड़ा होगा। आए हमारे दूल्हा ने तो हमें जब से पोल की तरह उठा।
0: चलमुई सूखी तरह खटाई की पाक। आए बहना, कभी कोई कपड़ा तुम पे न खिलाए
1: हको।
0: पोतनी मिट्टी का सा रंग जिस पे ये भड़कदार कपड़े के शोख बसंती के जामनी के काकरेजी तौबा तौबा जब देखो जोड़े तक रही है जोड़े तक रही है। अरे बुआ, तुमने तो अपने हसम की सारी कमाई कपड़े लत्तों पे ही गवा दी। अरे कल कला को हाथ रोक के चली होती तो आज यू मेरे तेरे आगे हाथ न फैलाने पड़ते।
1: जी आए हम तो खर्चीले थे। आए बहना, तुमने कौन सा कारून का खजाना गाड़ लिया। आए हमने कपड़े लत्तों पर खर्च किया, तुमने खाने पीने पर उड़ा दिया। आए हर घड़ी हलवे मांडे से काम, नाज कोई तुम्हारी तरह न दीदा हो।
0: न दीदी तो तुम थी बुआ। आए हर दम दस्तावे थे।
1: नाज मुझे दस्ताते? हाँ, पेट भारी हो जाया करे था कभी कभी। सदा की रिया की बीमारी जो है मुझे। अरे बुआ, तुम तो पत्थर भी डकार जाया करो थी।
0: अकेली डकार जाऊं थी, तुम्हें नहीं निगलवाया करूं थी।
1: अल्लाह न करे जो मैं तुम्हारे टुकड़ों पे पलटी।
0: झूठों पर आली की फिटकार।
1: फिटकार तो तुम्हारी सूरत पे बसे।
0: आईने में अपनी थूथनी तो देख, मुई पुरानी जूती की शक्ल। मौत भी तो नहीं आती।
1: अरे मौत आए तुझे तेरे हो तो सोतो को।
0: हम तो अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी मैयत गार के मरेंगे।
1: अरे अल्लाह पाक, अरे सुन ले मेरी। हाँ हाँ कोस, अरे पानी पी पी के कोस।
0: हाँ हाँ कोसूंगी, अरे पानी पी पी के कोसूंगी। अरे हजार बार कोसूंगी, किसी की आई ना बुरा को लगे।
1: अरे
0: आप परवरदिगार, इस जलमुही का पर्दा ढाक ले। मुश्किल कुशा।
1: अरे अब चुप्पी होती है कि नहीं। कल जी भी इमाम हुसैन की कसम ज्योति से मोहब्बत से
0: फसल
1: सही मैं
0: तील कवे।
1: अरे तील कवे हम कब्र में भी जो मजोले।

0: हो गए तुम्हें देखे हुए, कितनी बदल गई हो, मुमानी पहचानी भी नहीं जाती हो।
1: कुछ ना पूछो बेटी जी, अच्छा नहीं रह रहे है। बाकर खुदाए ख्वार ने बासी गाँव जबान भिजवा दिए है। बेटी इधर खाए उधर पै हो गई, मुई पे जिसने तो मेरा खून ही निचोड़ लिया। बेटी तेरा मना किया मगर जहर मार करती गई, खाना देख के।

0: स्त्री पति जाए थे आए बुआ तुम न होती तो दीवारों से सर मोड़ मोड़ के मर जाती।
1: क्या करियर जवान था, तुमसे ज्यादा तो वो मुझे प्यारा था।

0: अरे ठीकरी की मांग निकाह से अव्वल हुआ करे थी।
1: अल्लाह पाक ने सबको बुला लिया, हम ही रह गए हड्डियां घसीटने को। खुदा जाने के नामालों की सजा मिल रही है।
0: अरे बुआ, मैं तो खैर गुनाहगार बंदी हूँ, पर तुम तो हमेशा आई पांच वक्त नमाज पढ़ती हो, आई कुरान की तिलावत कभी नागा न पी, कभी रोजे न खोए, फिर अल्लाह मियाँ आई तुमसे क्यों रूठ गए?
1: मर्जी उस कहारो जब्बार की बीवी, इसमें किसी को क्या दखल है?
0: बहना, हमें तो मौत भी भूल बैठी। दिन पूरे हो गए मगर मुश्किल आसान नहीं बहुत।
1: खुदा न करे नौला, अल्लाह जानता है ऐसी बातें करोगी तो अच्छा ना होगा। एक तुम्हारा ही तो दम है, सब छोड़ के चल दिए, एक तुम ही रह गई बहना। इतना लंबा साथ

0: किसने दिया?
1: हाय अब तो तुम जा रही हो, तुम्हारी भला से चाहे हम पे मक्की या बिल्के।
0: अरे जा रही हूँ तो क्या, बकरी तक लौट
1: आने वाले भला कब लौटे हैं?
0: आए फिर वही बकवास।
1: अब तो जी कहता है बस अल्लाह फैली। और नहीं तो क्या, मुझे तो अभी से ये घर काट खाने को दौड़े
0: हैं। न जाने
1: किस घड़ी बुलावा आ जाए, जाने को यासीन सुनाने वाला भी होगा के नहीं।
0: क्या कहूँ,
1: कोई अलग में दो बूंद पानी भी डालेगा के नहीं। लोगों को तो ये भी याद नहीं रह गए कि कोई नसीब हो चली इस कब्रिस्तान में रह भी है कि नहीं। अगर आज ही दम निकल जाए तो किसी को पता न चलेगा मैयत पानी सड़ेगी।
0: नालास खाना
1: और नहीं तो क्या, चंदू की बहू कहे बुआ लाले काम पर चले जाए, घर अकेला किस पर छोड़ कर आऊं? अरे बुर्का सर पर डाल कर मस्जिद की सीढ़ियों पे जा पड़ूंगी। और नहीं तो क्या, जाने कोई कब तक थाल सजा के लाएगा।
0: लीला नौला सब बस भी करो, खुदा का वास्ता तुम्हें।
2: तैयार हो गई मुमानी, रिश्का ले आई हूँ।
0: आई मुमानी।
3: हाँ बेटी।
0: आई क्या सारा कबाड़ ले चलोगी?
3: आए बेटी ये हुक्का तुम्हारे मामू की निशानी है, और बेटी ये पोटली जरा संभाल के।
0: हाँ।
3: पंसूरा है।
0: हाँ।
3: बेटी एक बात कहूँ, तुम्हारा घर तो अच्छा बड़ा है ना?
0: अरे और नहीं तो क्या, दो कोठरियाँ सेंची यहाँ से लेकर वहाँ तक दलान, अच्छा बड़ा आंगन, धनिया पुदीना बोलिया करना। अब के तो बेर भी खूब आए हैं, गाय तो पिछले महीने ही भी आई थी और क्या ढेरों पे उसी बनी थी। तुम्हें बहुत सरमारी थोड़ा ना करनी पड़ेगी, बैठे बैठे बीड़े चबाया कर।
3: नहीं बेटी, मैं ऐसी गई गुजरी थोड़े ही हूँ कि बैठी बैठी बीड़े ही चबाऊ।
0: आई मुमानी, वो तो मुझे पहले ही पता है कि तुम्हें काम काज का बहुत शौक है। मुमानी बैठे बैठे हड्डियाँ भी तो दुखने लगे है, जरा हाथ पाँव खुले रहा करेंगे और क्या।
3: दूध तो खूब होता होगा?
0: आए ढेरों होने हैं, बस मुमानी पास पड़ोस में जाके दे आया करेंगी, अच्छी खासी आमदनी भी हो जाया करेंगी। अब उठो अभी मुमानी, तैयार भी हो जाओ।
3: अरे बेटी खैरन।
0: हाँ मुमानी।
3: अरे बेटी मुझे अकेली से तो तुम्हारे घर का इतना काम सिमटेगा नहीं।
0: आए लो, आए तो क्या नौकरानी लगाओगी? वही छोटी जमाने भर की आंखों का काजल चुराने, किसी को खबर भी ना मिले काम की नकार की मुलधाई से रनाज की।
3: अरे नहीं बेटी, नौकरानी की भला क्या जरूरत है, हम दोनों मिलके काम निपटा लिया करेंगे।
0: अरे मुमानी हम दोनों?
3: अरे बेटी नौलास को भी ले चलना, आखिर ये भी तो तुम्हारी अम्मा की दुपट्टा बदल बहन है।
0: मुमानी क्या बच्चों की सी बातें करो हो तुम तो।
3: दो टूक जवाब दो खैरन।
0: आए लो, दो टूक जवाब की भी अच्छी रही। अरे मुआ बालिश भर का घर, बाल बच्चे सभी को तो रहना हुआ।
3: आए तो फिर मुझे ले जाके क्या करोगी?
0: अरे मुमानी
3: बेटी मरता वक्त है, अब कहाँ जाऊंगी इस उम्र में।
0: आए लो और सुनो, अभी क्या खुशी खुशी जाने को तैयार हुई? अरे मुझे ले चलो मेरी चिंदा यहाँ से, मुआ जी उठ गया इस कब्रिस्तान से। है अब घड़ी भर में बदल गई?
3: अरे हाँ बदल गए तो फिर।
0: मैं समझ गई।
4: वाह जुर्वा, मुझे काहे को इल्जाम दे रहे हैं? लो और सुनो,
0: चोर की दाढ़ी में टिंका खैरन। आई इधर मैं गई और उधर इन्होंने कान भरे। आए मुमानी हो बड़े कच्चे कानों के।
3: अरे मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ, किसी के भरे में आ जाओ।
4: सब खुदा का खामखा मेरे साथ थोप रही है, कसम ले लो जो मुँह से कुछ पूछी हूँ जबान सड़ जाए।
0: हाँ हाँ खूब समझती हूँ मैं भी, सारी उम्र मुमानी दुखिया की छाती पर मूंग दली, अब बुढ़ापे में भी जान को जोंक लगी।
4: पाक परवरदिगार अब तो तू मिट्टी अजीज कर ले, ये कान बराबर की लोटिया मुँह को आ रही है।
3: अरे तुम्हारी बला से हमारी छाती पे मूंग दली?
0: अंधेर है के नहीं, खून सफेद हो गया है मुमानी तुम्हारा तो, अगारों के पीछे अपनों को टुकरा रही है।
3: अरे बस बस रहने दो ये चोचले, अरे कैसा खून, तू शेखानी मैं मुगलानी, अरे तेरी मुमानी ही तो हूँ।
0: आए लो और सुनो, अरे मामू के निकाह में आई तो

0: रिश्ता हुआ।
1: अरे बस बस, मेरा मुंह ना खुलवा, कोई ऐसी वैसी बात निकल गई मुंह से तो पता यही लग जाएंगे। अरे उस दिन खून ने जोश ना मारा जिस दिन मामू बेसहारा छोड़ गए। अरे तब ना पूछा मुमानी किस खेत की मूली हो।
0: अंधेर है कि नहीं मुमानी, मैं तो तुम्हें इतनी दूर से लेने चली।
1: लेने आई तो अपनी गरज से, अम्मा मर गई तो सोचा चलो ना मुराद मुमानी ही को ले चलूं। मुफ्त की मामा मिलेगी, ना तनख्वाह देनी पड़ेगी ना कुछ, मोटा झोटा खा के कोने में पड़ी रहेगी। फायदे का फायदा, एहसान का एहसान, और कुछ नहीं, बुढ़िया दूध ही पिलो लेगी, गोबर ही खाप लेगी। आए सच कहो खैरन, अपनी अम्मा मरने वाली से गोबर थपवाती थी कि नहीं?
0: लो खुदा की कसम।
1: आए खुदा की नहीं, अपने बड़े लौंडे की कसम खा के कह दे।
0: हाय बढ़िया, ये बड़े लौंडे की कसम खिलाने वाली, सबका करूँ ऐसी मुँह जली मुमानी को। मैं तो तुम्हें अल्लाह नाम पे ले जा रही
1: हूँ। अरे बस रहने दे, जैसी खैरात तेरी वैसी मोहल्ले वालों की, वो तेरी तरह छिछोरे और थोड़े दिले तो नहीं है।
0: खून सफेद हो गया है मुमानी तुम्हारा।
1: अरे बुआ, खून की मैयत कब तक बीतोगी? अरे अम्मा मर गई तो मुमानी के लिए पतली फड़कने लगी।
0: बिन लाहक मेरा इतना वक्त खराब करवा दिया, आते ही मुंह से फूट दिया होता कि मुझे नहीं जाना है। वो रिश्का के पैसे चढ़ गए तो अलग, खुदा की।
1: अरे बेटी खैरन, तुम्हें चलने से कब इनकार करूँ हूँ?
2: अरे मुमानी तो क्या चलो हो।
1: अरे बेटी खैरन, नौलाद को भी ले चलना, अब इस बुढ़ापे में इसे कहाँ छोड़ जाऊँ।
0: हाँ, सारा कुनबा जोड़ के ले चलो, और जो कोई तुम्हारी टखना फोड़ने को होवे उन्हें भी बटोर लो। आए मुमानी कान खोल कर सुन लो, अरे खसम है मेरा यार रही जो सारे टब्बर को पालेगा। अरे चूल्हे में जाओ तुम और धार में जाए नौला।
1: अरे जा दूर हो मुंडी काटी।
3: क्या करो हो
1: मुई खान की।
3: आए, बस करो बुआ, तुम्हारी तो जबान को लगा नहीं। अरे अम्मू काहे को छुताए पड़ी हो। आए बुआ, आए कल कला को ये ना कह देना कि मैं नौलास की खातिर नहीं गई।
1: आए मैं क्यों किसी के मारे बांधे से ना जाती, अपना जी चाहा ना गई।
3: हाँ भाई, यहाँ किसी को क्या पड़ी है कि हाथ पकड़े। आई जाती हो तो जाओ, आई नहीं जाती हो तो ना जाओ। क्या सोचती होगी दुखिया खैरन, इतनी दूर से लेने दौड़ी आई और तुम ना गई,
1: और तुम्हें अकेला छोड़ जाती
3: है। आई मैं कोई नन्नी बच्ची हूँ कि तुम छोड़ जाती, और मैं थोड़ा थोड़ा के जान दे देती। क्या मैं कोई लंगड़ी लूली या अपाहिज हूँ कि तुम चली जाती तो मेरा तो दम निकल जाता।
1: अब मेरे मुंह ना लगना ला।
3: आए तुम्हारे मुंह लगे मेरी जूती।
4: सब्र इलाही सब्र, सब्र टूटे तुम्हारे मुद्दे पर।
1: अरे नौलास बंदी तेरी खाट कटे, अरे आधी रात को जनाजा जावे, अरे कोई कांधा देने वाला भी ना छोड़े।
3: ऐसा
1: जाए
5: बंद कीजिए बकवास, शर्म नहीं आती आप लोगों को? बच्चों की तरह लड़ रही है।
3: अरे लड़की,
5: अरे लड़की क्या, आप दोनों को सिवाय एक दूसरे का भेजा चाटने के और कोई काम नहीं।
3: टांग बराबर की लौंडिया।
5: सुना है आपको संदीले से कोई लेने आया था और आप नहीं गई?
1: अरे हाँ, इस नामुराद की वजह से ना गई कि अकेली रह जाएगी।
3: आई बड़ी आई मेरी चाहने वाली, मुझे ये कुछ ना पैसी बात है, एक आँख नहीं भाए।
5: सच बताइए, आपका इस दुनिया में एक दूसरे के सिवा कौन है?
3: हाँ बच्ची, अपने पराए सब छोड़कर।
5: फिर आप क्या चाहती हैं? अगर आप साथ नहीं रहना चाहती तो मैं अभी अम्मा से कहकर आपको एक अलग कोठड़ी दिलवा सकती हूँ।
3: अलग?
5: न साथ रहेंगी और न लड़ाई होगी।
3: नहीं नहीं,
5: मगर नहीं, आप दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकती, आप एक दूसरे के बगैर पागल हो जाएंगी। फिर क्यों लड़ती हैं नूर?
6: इसलिए कि दुनिया से कटकर ये दोनों अछूतों की तरह यहाँ फेंक दी गई है। सुबह शाम रोटी का टुकड़ा डाल दिया जाता है, ये भी कोई जिंदगी है?
5: हमारे यहाँ बूढ़ों की यही दुर्गत है, खासतौर पर औरतों की। मर्द तो बाहर घूम फिर लेते हैं, जिंदगी के दरमियान रहकर जिंदा रह लेते हैं। ये पर्दे वाली शरीफ बीवियां तो पिंजरे में बंद पंछी की तरह खुट खुट कर मरती हैं, और तो किसी पर बस नहीं चलता, बस एक दूसरे की चोटियां नोचती हैं।
3: हाँ बेटी, ठीक कहती हो तुम, यहाँ बात परवरदिगार अब तो उठा ले।
6: फिर वही मौत को बुलावा, जिंदगी को पुकारिए खाला।
3: जिंदगी तो हमें भूल गई बेटी।
5: ये जिंदगी का कसूर नहीं बल्कि हमारे समाज का कसूर है जो जिंदा इंसानों को दफन कर देता है। जिस्म का कोई हिस्सा काट कर फेंक दिया जाए

0: गल जाता है, सड़ जाता है।
1: ठीक कहती हो बेटी, हम तो अब सड़ गल चुके हैं।
0: नहीं, आप जिंदा हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, हमारा माजी है। अपने माजी को ठुकराकर हम कैसे जी सकते हैं। अच्छा खाना जान, उठिए, मैं मोटर लाई हूँ। चलिए, आप जिसे चाहे वोट दीजिए, और कुछ नहीं तो जरा सैर हो जाएगी।
2: चलो उम्दा खानम, चलिए।
3: हाँ चलो नौला खानम।
2: उम्दा खानम, आज तुम्हारा जो पट्टा तो बहुत ही मेला चुआ हो रहा है। आई लो, ये मेरा ओढ़ लो।
3: नहीं, रहने दो,
2: और भी लो।
3: अरे नहीं, फिर तुम क्या ओढ़ोगे?
2: मेरा तो बिल्कुल साफ है, आए पिछले जुम्मे को तो बदला है।
3: आई लो, ओढ़ लो ना, रहने दो,
2: लो अब। आई लो, और भी दो, ये नखरे का देखो।
3: आई लो,
2: मैं काहे को नखरे का, तुम्हारी तो क्या समझो तुम अपने आप।
0: अच्छा चलिए तो सही, चलिए ना।
4: तन्हाई का जहर, इसमें चुकता है कि अफसाने पर मबनी ये ड्रामा, इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा भी आपने समाप्त किया। तर्तीब पेशकश अजीज कुरैशी की थी, मुआविन थे सरफराज अहमद, हिस्सा लेने वाले फनकार थे राजकुमारी, मंजू बैनी, कमला कुमारी चोपड़ा, सरला नागिया, वीना प्रभाकर और माला कुमार। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशा जारी है मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। फिल्मी मौसीकी की तह सुनिए चंद फिल्मी नगमे। आगाज मुगल आजम फिल्म की कवाली से, लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और साथियों की आवाजों में कलाम शकील बदायूनी का, मौसीकी नौशाद की।

बैजू बावरा फिल्म का ये भजन आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, शकील बदायूनी का लिखा हुआ, मौसीकी नौशाद की थी। और ये सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में शबाब फिल्म का नगमा, नगमा निगार शकील बदायूनी, मौसीकी तरतीब दी है नौशाद ने।

आशुभू से सुधा मल्होत्रा, शंकर शंभू और साथियों की आवाजों में सुनिए बरसात की रात फिल्म की कव्वाली, साहिर लुधियानवी की लिखी हुई, मौसीकी रोशन की।

और ये सुनिए मिर्जा गालिब फिल्म की गजल तलत महमूद और सुरैया की गाई हुई मौसीकी गुलाम मोहम्मद की।

ये फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। अगली पेशकश फागुन फिल्म का नगमा आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। नगमा निगार कमर जलालाबादी, मौसीकी ओपी नैयर की।

चंपक अली फिल्म का ये नगमा सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में हेमंत कुमार की मौसीकी में, और ये सुनिए गेटवे ऑफ इंडिया फिल्म का दो गाना, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

0: दोस्त का शान फिल्म का नाम आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। इस नाम के साथ ही फिल्मी मौसीकी का यह प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 4:50 हुए हैं, अब खबरें नशे की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के शहर नीस में मीटिंगों के साथ यूरोप का अपना दौरा शुरू कर दिया है। जनाब मोदी ने फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों के साथ मिलकर भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह किया। सदर मैक्रों के साथ दो तरफा बातचीत में खसूसी आलमी किलीदी साझेदारी में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। कोलंबो में 5,000 से ज्यादा भारत नाट्यम डांसर्स ने सबसे बड़े भारत नाट्यम रक्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। जुनूब मगरबी मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और जुनूबी छत्तीसगढ़ में पहुंचने का इम्कान है। और क्रिकेट में खवातीन के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज शाम बर्मिंघम के मकाम पर भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों के हमरा नीस में आज भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह किया। ये अहम तकरीब भारत और फ्रांस के इख्तिरा के साल के तहत हो रही है और इसमें 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप इदारे, आलमी सरमायाकार, टेक्नोलॉजी के माहिरीन और कारोबारी अफराद शिरकत कर रहे हैं, जिसमें भारत के तेजी के साथ फरोग पाते हुए इख्तिराई इको निजाम की अक्कासी की गई है। इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसमें शिरकत करने वाले सरकर्दा सरमायाकारों और इख्तिराकारों के साथ गुफ्तगू की। इस मौके पर वजीर खारजा डॉ

0: एस जयशंकर, कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल, कौमी सलामती के मुशीर अजय डोभाल, प्रिंसिपल साइंस के मुशीर अजय कुमार सूद, इन्फोसिस के बानी नारायण मूर्ति और कई सरकर्दा कारोबारी रहनुमा भी मौजूद थे। भारत इनोवेट्स में मुल्क के सरकर्दा इख्तराकार, स्टार्टअप इदारे, सरमायाकार और आला तालीम के इदारे भी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें IITs और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस शामिल हैं। इसके जरिए आलमी सतह पर जदीद तर्ज की टेक्नोलॉजियों और इख्तरा पर मबनी हल पेश किए गए हैं। इसमें 13 अहम शोबों में मुख्तलिफ तरह की जिद्दत तराजी की अक्कासी की गई है। इसमें जदीद तर्ज की कम्प्यूटिंग, सेमी कंडक्टर्स, मसनूई जहानत AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी, खलाई टेक्नोलॉजी, माहौलियात के लिए साजगार तवानाई और बायो टेक्नोलॉजी शामिल हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस में अगले हफ्ते G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर अजम नरेंद्र मोदी और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अमरीकी इंतजामिया के एक आला अहदेदार के मुताबिक इस बातचीत में माशी तरक्की, सप्लाई निजाम, मसनूई जानत AI, सरमाकारी से मुतालिक साझेदारी और आलमी सिक्योरिटी को लाक मुख्तलिफ चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज किए जाने की उम्मीद है। अकलियतों के उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि गुज़िश्ता 12 साल में मुल्क में अकलियती बिरादरियों की जिंदगी मेयार और मजमू सूरत हाल में नुमाया सुधार आया है। एक कौमी रोजनामे के साथ इंटरव्यू में जनाब रिजिजू ने कहा कि वजीर अजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में सबका साथ सबका विकास के नजरिए की बदौलत इस बात को यकीनी बनाया जा सका है कि तरक्की के फायदे मुआशरे के हर तबके तक पहुंचे। सरकार ने नामवर इकतसादी माहिर प्रोफेसर अलक एन शर्मा को लेबर आदाद शुमार से मुतालिक आला सतह की तकनीकी माहिरीन की कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया है। लेबर मार्केट इशारियों को मुस्तहकम बनाने और वक्तन फवक्तन इनका जायजा लेने, नीज मुल्क के लेबर मार्केट के उभरते हुए ढांचे का जायजा लेने के लिए ये कमेटी तश्कील दी गई है। भारत के महकमे मौसमियात ने कहा है कि जनूब मगरबी मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक के बकिया हिस्सों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ और हिस्सों, नीज जनूबी छत्तीसगढ़ में पहुंचने के लिए हालात साजगार हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक शिमाल मशरकी खित्ते, अंडमान व निकोबार जजायर, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज तेज बारिश होने का इम्कान है। आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आज ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए एक माहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इसके फौरन बाद अहमियत के हामिल आबनाए हुरमुस को सभी मुल्कों के लिए खोल दिया जाएगा। उनके इस बयान से कुछ घंटे पहले ही पाकिस्तान ने इंदिया दिया था कि अमरीका और ईरान मुजाकरात के आखिरी मरहले में हैं और ये कि आज इस माहदे पर डिजिटल तरीके से दस्तखत किए जाने का इम्कान है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि यह समझौता एक अहम कदम साबित होगा। उन्होंने ये दावा भी किया कि ईरान अब एटमी हथियार नहीं चाहता। इसके साथ ही उन्होंने ये तजवीज भी पेश की है कि अमरीका अफजूदा बनाए गए यूरेनियम हटाने की गरज से किसी मुनासिब वक्त पर ईरान के साथ मिलकर काम करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस अमल में खुशुसलूबी के साथ पेशरफ्त होती है तो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मुख्तलिफ और बेहतर हो जाएंगे। अलबत्त ईरान ने समझौते पर दस्तखत किए जाने के ताल्लुक से अभी तक कुछ तस्दीक नहीं की है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने मुबैना तौर पर इस बात से इनकार किया है कि ईरान और अमरीका के दरमियान आज एक मुफहमतनामे पर दस्तखत किए जाएंगे। जनाब बकाई ने जोर देकर कहा कि इस तरह का कोई भी मुफहमतनामा मजीद मुजाकरात के लिए महज एक खाका फराम करेगा और ये कि इस खाके को एक हतमी समझौता नहीं समझा जाना चाहिए। खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो के चेयरपर्सन वी नारायणन ने बताया है कि उन्होंने एक ऐसे जदीद मसनूई हीटिंग निजाम को तैयार करने के लिए एटमी तवानाई के महकमे के साथ इश्तराक किया है जो चांद की सतह पर उतरने वाले खलाई जहाज को चांद के बेहद ठंडे मौसम से महफूज रख सकेगा। बेंगलुरू में CSIR RISE कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए इसरो के सरबराह ने बताया कि शमसी तवानाई वाले चंद्रयान स्वयं मिशन का खलाई जहाज विक्रम चांद पर महज 14 दिन ही काम कर पाया। इसरो अब एटमी तवानाई के महकमे के साथ एक ऐसे खलाई जहाज को तैयार करने के लिए काम करेगा जो 200 दिन तक चांद की सतह पर काम कर पाए। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आज 5000 से ज्यादा भरतनाट्यम डांसर्स ने मिलकर एक साथ रक्स का मुजाहरा किया, जो एक तारीखी सकाफती संग मील है और इस तरह उन्होंने भरतनाट्यम के सबसे बड़े रक्स प्रोग्राम का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। इस तकरीब का एहतमाम भारत की संगमम आलमी एकेडमी और श्रीलंका की समगामिजलिया ने किया था। इसमें भारत के क्लासिकी रक्स और सकाफती विरासत का जश्न मनाने के लिए श्रीलंका, भारत और कई दीगर मुल्कों के हजारों डांसर्स ने हिस्सा लिया। इटली की राजधानी रोम में कल इमिग्रेशन के मामले पर इसकी हिमायत और मुखालफत में अलग अलग मुजाहरे हुए। यह एहतजाज उस वक्त सामने आया जब रेमिग्रेशन एंड रिकॉन्केस्ट की पहल के तहत तारिकी ने वतन के खिलाफ सख्त इकदाम की तजवीज के हक में दस्तखत किए गए ताकि पार्लियामेंट में बहस के लिए इसे पेश किया जा सके। इससे मुतालिक 50,000 दस्तखत जमा हुए जो पार्लियामानी गौर खोज के लिए जरूरी हद है। तमाम इस पर वोटिंग के लिए कोई तारीख अभी तय नहीं की गई है। इस तजवीज में गैर मुल्की अफराद के खिलाफ सख्त इकदाम अपनाने की बात कही गई है। इटली के अलग अलग हिस्सों से आने वाले हजारों अफराद ने इमिग्रेशन मुखालिफ रैली में शिरकत की और कौमी तराना गाया। दूसरी जानिब इमिग्रेशन के हक में मुजाहरा करने वाले दसियों हजार अफराद ने रोम के दूसरे हिस्से में मुजाहरा किया। दोनों ग्रुपों को एक दूसरे से दूर रखने के लिए काफी तादाद में पुलिस तैनात की गई थी। खवातीन के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत आज ग्रुप ए में रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। यह मैच बर्मिंघम में एच बेस्टन के मुकाम पर खेला जाएगा और यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के शहर नीस में मीटिंगों के साथ यूरोप का अपना दौरा शुरू कर दिया है। जनाब मोदी ने फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों के साथ मिलकर भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह किया। सदर मैक्रों के साथ दो तरफा बातचीत में खसूसी आलमी क्लीदी साझेदारी में पेशरफ का जायजा लिया जाएगा। और कोलंबो में 5000 से ज्यादा भारत नाट्यम डांसर्स ने सबसे बड़े भारत नाट्यम रक्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव से 1071 के लोहर्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्रेडिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 5 बजे चाहते हैं हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शब के 9:15 पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। तब तक के लिए हमें इजाजत।
2: नमस्कार, आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिन दिए पंजाबी सेवाएं शाम दे 5 बजे ने हुण साडी दूजी सभा शुरू हुंदी है। सभा दा आगाज कर रहे हैं सराय के प्रोग्राम दे नाल। सभा फरमाओ जोक माहिदी।

0: शहर मुंबई सपों दा शहर मशहूर शहर मुंबई चारों पासे भीड़ ही भीड़ जिथा तक देखो इंसाना दे सर दिखदे हैं चलदे फिरदे दुरकदे।
1: वाह क्या बात।
0: चारा पासे भीड़ ही भीड़ जिथा तक देखो इंसाना दे सर दिखदे हैं चलदे फिरदे दुरकदे। ना रात नूं सुनणेंदे हैं ते ना दिन नूं सुनणेंदे हैं हर वेले भजदे पैन। ना रात नूं सुनणेंदे हैं ना दिन नूं सुनणेंदे हैं हर वेले भजदे पैन। बस पैसा पैसा ते पैसा छोटा जई हथी बने अपना छोटा जई हथी बने अपना जिवें तिवें जिथा तक अपनी छत भी कोनी बस पराई है दूजे दी। अगला बुआ कहना है पत्ता कोनी कोई सुनने ना भी कोनी। छोटा जई घर थी बने अपना जिवें तिवें जिथा छत भी अपनी कोनी पराई है दूजे दी। अगला बुआ कहना है पत्ता कोनी कोई सुनने ना भी नहीं। बिची उत्ते चाके चा देखो बिची उत्ते चाके चा देखो इन्हें लगता है जिवें कंक्रीट दा जंगल उग पोया होए। बिची उत्ते चाके चो देखो इन्हें लगता है जिवें कंक्रीट दा जंगल उग पोया होए। बस दूर तो ही बस दूर तो ही हाय हैलो किथे वेना पई किथो आना पई दिन सप्ताह महीने ते वेले वेले सारा बीत वेने हैं। दिन सप्ताह महीने ते वेले वेले सारा बीत वेने हैं हेक दूजे को मिले लिठे झपियां पाते ते हां दा हाल बने दे। बस हेक गल बहु सोनी लगदी है इथा बावा सिन्नी सिन्नी रेत ते भज्जा समंदर दे उत्ते।
1: क्या बात
0: करना हुआ या हुए कोई संगी साथी जीवन साथी ठंडी ठंडी हवावां ते होवे उठदी लहरां दा शोर।
1: शोर
0: वसुआ बीच मड बीच रॉक बीच जू बीच या हुए मैरिन ड्राइव। बैंदा कोई शीर्ष ते कोई बैंदा धरती ते ए वल मशहूर है शहरां तो शहर मुंबई शहर मुंबई सपनों दा शहर मशहूर शहर मुंबई शहर मुंबई।
1: बहुत बढ़िया जी
0: धन्यवाद।
1: मुंबई की पूरी कहानी इन्होंने अपनी कविता दे विच सौरा जी ने दस दिती है। बहुत कमाल की है बहुत अच्छा लगे बड़ी लेखनी बहुत ही शानदार है। तो मैं इसी कड़ी विच ते निवेदन करने दा पिया बहन सोनिया दुआ जी को आप बड़े ही अच्छे लेखक आए कवित्री उपन्यास भी लिखे इन्होंने कभी काव्य संग्रह लिखन पता नहीं कितने अवार्ड के विजेता भी हैं। बहन सोनिया जी
2: शुक्रिया। एक सुफियाना नज़्म पेश करूंगी भैया
0: स्वागत है।

0: जहां जो हो बड़ा होटा ते मुस्कान रखी
1: अखा
0: बे जहां जो हो बड़ा होटा ते मुस्कान

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर तरानों में बहन जी ने सुनाए, बहुत चंगा लगे। मैं भी, मेरा भी मन कर दो कि मैं भी कुछ सुनावा।
1: बिल्कुल जी, तो सुना
0: तरानों में कोशिश करता पा। अजकल जिन्हें हालात थे पन साडे मुल्क विच, कुछ लोग मुल्क विच रह के साडे देश दा खानदान, लेकिन बहुत किसी होर दे खानदान देश दे
1: जी।
0: उन्होंने बारे च मैं थोड़ा कोशिश की है। जिखा दा खांदे हो, जिखा

हाँ जेड़ा देश दे टोटे करन दे चार रख दे उना दे वास्ते फांसी द तख्त हाजर है उना दे वास्ते फांसी द तख्त हाजर है जिथा दखांदे हूं के दूजे मुल्का दिशे ते पिया तू टपदा है के दूजे मुल्का दिशे ते पिया तू टपदा है के बन के

0: बदल तू अमला को, जेकर बदल तो सकदा है।
1: सही बात, सही
0: बदल तो अमला को, जेकर बदल तो सकदा है। जिथा दा खांदे हो, कभी तो सोची मेरा देश ए महान क्यों है। कभी तो सोची मेरा

0: क्यों है
1: क्या बात, बहुत बढ़िया।
0: जरा विचार करी दुनिया तो उच्च शान क्यों है, जिथा दखांदे हो तू प्रेम कर सी तमिल सी एदा गुणा करके, तू प्रेम कर सी तमिल सी एदा गुणा करके, पले से नफरत तराणा पोसीहा डर डर के, पले से नफरत तराणा

0: करता है तुम्हारी कतलेआम ना कर। बहुत बहुत
1: बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं दोबारा इस कड़ी विच अपने छाबड़ा साहब को दोबारा निवेदन करेगा कि आप एक और कविता पेश करो सुंदर लाल जी छाबड़ा
0: जी। हूं मैं तुम जी कविता सुना पाया हूं। कविता का शीर्षक है हूं मैं ना लिख सा। बहु सोचिया है हूं मैं ना लिख सा। बहु सोचिया है हूं मैं ना लिख सा। वत सोचिया है ना लिख सा ते क्या करे सा। वत सोचिया है ना लिख सा ते क्या करे सा। गन्ना जो कीतियां हन असा हां दी हां विच रासन ते क्या करे सा। गन्ना जो कीतियां हन असा हां दी हां विच रासन ते क्या करे सा। मैं ते तू तू ते मैं ते तू तू ते मैं केड़े केड़े सपने डिठे हन। मैं ते तू तू ते मैं केड़े केड़े सपने डिठे हन। कभी दरिया किनारे बै पानी विच पैर घत छप छप छप छप ताई कीती है। कभी दरिया किनारे बै पानी विच पैर घत छप छप छप छप ताए कीती है। तमाए पानी दी बुक्का भर तेरे ते पाती है। तमाए पानी दी बुक्का भर तेरे ते पाती है। खेत मुंडेरा ते बैके खेत मुंडेरा ते बैके सुपने असा बुनन हन। खेत मुंडेरा ते बैके सुपने असा बुनन हन। हेक सिलाई तेरी है ते हेक सिलाई मेडी
2: है।
0: खेत मुंडेरा ते बैके सपने असा बुनन हन। हेक सिलाई तेरी है ते हेक सिलाई मेडी है।
3: क्या बात।
0: ओ सोना सोना बाल है अपना ओ सोना सोना बाल है अपना। निके निके पैर वधेंदा ते हाथ चाके भजदा आंदा। ओ सोना सोना बाल है अपना। निके निके पैर वधेंदा ते हाथ चाके भजदा आंदा। तू ते मैं ते तू तू ते मैं ते तू झप्पी पाके हाना लाके कोल बिलाके खिलदे हासे। तू ते मैं ते तू झप्पी पाके हाना लाके कोल बिलाके खिलदे हासे। ते हुण किथां गई ओ तेरी खिल ते हुण किथां गई ओ खिल ओ झप्पी ओ सपने ते ओ तेरी सिलाई। ते किथां गई हुण ओ तेरी खिल ओ झप्पी ओ सपने ओ तेरी सिलाई। मैं बैके हुआ मुंडेरा ते मैं बैके हुआ मुंडेरा ते ते भर पानी दी बुक्का हाथ सिलाई फाड़ के अपनी सोचदा हां। मैं बैके हूं मुडेरा ते भर पानी दी बुक्का हाथ सिलाई फाड़ के अपनी ते सोचदा हां। हुण मैं ना लिख सा हुण मैं ना लिख सा हुण सुंदर ना लिख सी हुण सुंदर ना लिख सी।
2: बहुत सोहना पर लिखते रहो
0: जी।
3: आपका
0: लिखते रहो आशीर्वाद असी तो लिखते रहो जी। चाहिए आशीर्वाद बड़े लोगों का।
1: वाह जी वाह बहुत वधिया
0: जी।
1: ते मैं फिर दोबारा दरखास्त करता पिया बहन जी सोमिया दुआ जी को कि एक मोहब्बत की कविता उन्होंने आखिया जस पेश करे सो
2: जी।
1: ते निवेदन है
2: दो नज़मा पेश करें दी भैया
0: जी। स्वागत
2: एक तरन्नुम विच
0: जी।
2: तिलस्मी खावा विच तेरे होमण दा एहसास रिया।
1: बहुत बढ़िया
2: ਤਿਲਸਮੀ ਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤੇੜੇ ਹੋਵਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਹੋ ਕਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਹੋ ਕਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਪਾਕੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਇਸ ਕਦਰ ਹਾਈ ਮੇਰੀ ਬੇਪਾਕੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਇਸ ਕਦਰ ਹਾਈ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਤਨਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚ ਤਨਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਇਕ ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ

0: कुछ किताबा, हिक कुर्सी ता कुछ किताबा नाल रही मेडे, हिक कुर्सी ता कुछ किताबा नाल रही मेडे, कुछ नाल चाह दी चुस्किया दा वी रिया, गुमा हाई शजर को मेडे होवण दा, गुमा हाई शजर को मेरे होवण दा, मैं सफर सारा उस दे नाल जो कटिया, मैं सफर सारा उस दे नाल जो कटिया, हवावा दी तस्वीर कहनी होंदी, हवावा दी तस्वीर कहनी होंदी, उस दा वजूद हर सांसा विच दिखिया, मेरी बेबाकी दा असर कुछ इस कदर हाई, मैं सब दे विच भी तनहा ही रिया, मैं सब दे विच तनहा ही रिया।
1: बहुत खूब जी, बहुत खूब। हवा में दा कोई
0: तस्वीर
1: नहीं होंदी, क्या बात,
2: बहुत।
0: लेकिन हर सांसा विच
1: एहसास रहना ही पैंदा,
2: बहुत
1: वधिया, बहुत
0: वधिया। तरन्नम विच मोहब्बत
1: जी,

0: बहुत बढ़िया,
1: शुक्रिया
0: अच्छा
1: शुक्रिया,
0: लगा।
1: आप सब बहुत बहुत शुक्रिया।
0: वेल और लास्ट बीच में अभी अपनी कविता
1: जी जी
2: हाँ जी
1: जरूर
0: मेरे जब दिल के बलबले उठते पैन
1: हाँ जी जी जरूर
0: हाँ मैं कविता मेरी पेश है दुनिया दे
2: जी
0: जिन्हें बिना सदा गुजारा है कोई नहीं
2: जी स्वागत
0: किसी का भी गुजारा कोई नहीं
2: जी हाँ
0: मैं देखना इस कविता से अगर अमल करन लोग तब सुखी थे जसन जो मैं आखना चाहता
2: बिल्कुल
0: तो पेश है कविता जाला दे चलना समर्पित है तो मैं सबको यो गल करे सा
3: रन दे कर घन बंदिया

I'm sorry.

सरकार ने यह टीचा मिथ्या है कि जल्दी ही मुकम्मल साकरता का निशाना हासिल कर लिया जाएगा। भारतीय पंजाब विच सिक्ख्या स्कूलां तकनीकी संस्थावां दा एक तरह नाल हर पासे जाल बिछा दिता गया है। अज पंजाब विच चप्पे चप्पे उत्ते स्कूल मौजूद हन। पिछले कुछ सालां दी मेहनत नाल पंजाब ने साखरता दर विच भारी वाधा कीता है। अज सूबे विच 75.63% पुरश अते 64.55% औरतां सिक्ख्या प्राप्त हन। भारत दे सारे राजां विच पंजाब नूं सिक्ख्या दे नज़रिए तों 16वां स्थान हासिल होया है। पंजाब विच सिक्ख्या दे नज़रिए तों हुशियारपुर जिला सब तों मोहरी है, जिथे साखरता दर 2011 दे अंकड़े अनुसार 85.04% है। इसका अर्थ यह भी है कि अजे हुशियारपुर विच भी 14.6% लोग अनपढ़ता की श्रेणी विच आउंदे हन, जदों कि होर जिलों विच अनपढ़ा की गिनती होर भी वधेरे है। पंजाब सरकार इस गल लई लगातार यतनशील है कि समुचे पंजाब नूं पूरी तरह सिखित बना दिता जावे। इसे तरह लेंदे पंजाब अर्थात पाकिस्तानी पंजाब दी शाहबाज सरकार ने स्कूली सिख्या उत्ते वधेरे ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिता है। इस संबंध विच सिख्या माहरां दी राय एकत्र करन पिछों वख वख प्रोजेक्ट अते प्रोग्राम उलीके जा रहे ने। इन्हां प्रोग्रामां अधीन जिथे सरकारी स्कूलां दे कार विहार विच कुछ अहम तब्दीलियां कीतियां जा रहियां ने, उत्थे प्राइवेट प्रबंध अधीन चल रहे स्कूलां लई एक विशेष प्रोग्राम उलीकिया गया है। पाकिस्तान दे इतिहास विच यह पहला मौका है कि पंजाब दे सारे प्राइवेट स्कूलां दे संबंध विच रायशुमारी करवाई जा रही है। इस मुहिम अधीन स्कूलां दी समुची कार्य प्रणाली का मुलांकन किया जाएगा, तां जो इस संबंध विच सरकार नूं लोड़ींदी जानकारी हासिल हो सके। पंजाब सरकार वल्लों हालांकि पहलां वी स्कूलां दे संबंध विच लोड़ींदे तत्थ एकत्र कीते जांदे सन अते इस कम लई 31 अक्तूबर नूं आधार मन्निया जांदा सी, पर हुण नवीं मुहिम अधीन प्राइवेट स्कूलां बारे मुकम्मल राय इकट्ठी कीती जावेगी। इस तों पहलां स्कूलां बारे लोड़ींदी जानकारी नतीजे अते होर तत्थ इकट्ठे करन दा कम पंजाब स्कूल सिख्या विभाग दी देखरेख हेठां कीता जांदा सी, पर इस वार स्कूलां संबंधी सारा डाटा एक प्राइवेट कंपनी वल्लों इकट्ठा कीता जावेगा। इस संबंध विच बकायदा पंजाब स्कूल सिख्या विभाग ने एक पत्र सारियां संबंधित धिरां नूं जारी कर दिता है। इस पत्र च लिखा गया है कि सरकार ने प्राइवेट स्कूलां दी रायशुमारी करवाउण दा फैसला कीता है, तां जो सिख्या दे संबंध विच प्राइवेट स्कूलां वल्लों पाए जा रहे योगदान दा मुलांकण कीता जा सके। इस दौरान स्कूलां दे संबंध विच मुकम्मल वेरवे इकट्ठे कीते जाणगे, किसे स्कूल विच विद्यार्थियां अते अध्यापकां दी किन्नी गिनती है, किस स्कूल ने किन्ने फीसदी नतीजा हासिल कीता है अते मैरिट विच किन्ने विद्यार्थी आए हन, इह जानकारी भी इकट्ठी कीती जावेगी। पाकिस्तानी पंजाब दी सरकार दा कहना है कि पूरे वेरवे हासिल करन तों बाद सिख्या दे संबंध विच लोड़ींदियां योजनावां करन अते फैसले लैण विच आसानी होवेगी। पत्र विच प्राइवेट स्कूलां दे संदर्भ विच इह आख्या गया है कि रायशुमारी दे घेरे विच सारे रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड प्राइवेट चैरिटी स्कूल अते होर अदारे शामिल होणगे। सरकारी अते नीम सरकारी स्कूलां बारे वखरे तौर ते जनगणना करवाई जावेगी। रायशुमारी दे इस मनोरथ लई सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी दीआं सेवावां लईआं हन। कंपनी दी चोण वेले भी खुली प्रतियोगिता करवाई गई सी। कंपनी दे मैंबरां नूं सारे स्कूलां विच निजी तौर उते जाणा पवेगा अते उस स्कूलां विच कम करदे अध्यापकां विद्यार्थियां अते सहूलतां संबंधी वेरवे एकत्र करनगे। इस मुहिम दा मनोरथ सूबे दी सिख्या संबंधी मुकम्मल तस्वीर नूं सामणे लिआउणा है। इन्हां यत्नां उपरंत जदों दोहां पंजाबां दे लोक मुकम्मल तौर ते सिखित हो जाणगे तां ओह आपसी रिश्तियां नूं इक नवीं दिशा दे सकणगे। लोड़ है कि सरहद दे दोही पासी अमन शांति प्यार अते भाईचारे दा पाठ भी पढ़ाया जावे।

पंजाब यानी पंज दरियावां वाला देश पंजाब। पंजाब पाकिस्तान दा होवे जां हिंदुस्तान दा, मूल च इक ही सभ्याचार, रिवाज, भाषा, खान पीन ते पहरावा देखन नूं मिलदा है। पंजाब यानी पंज दरियावां वाला देश पंजाब। पंजाब पाकिस्तान दा होवे जां हिंदुस्तान दा, मूल च इक ही सभ्याचार, रिवाज, भाषा, खान पीन ते पहरावा देखन नूं मिलदा है। उंज दा पाकिस्तान दा पंजाब साडे पंजाब नालों वड्डा है। जिथे पाकिस्तान दा पंजाब 2,05,000 वर्ग किलोमीटर दे एरिया च फैलिया होया है, उथे ही साडा पंजाब 50,632 वर्ग किलोमीटर च फैलिया होया है। दोहां दी आबादी अलग है, पर इक चीज जो दोहां नूं जुदा नहीं होण दिंदी, ओह लगभग इको जिहा खान पान ते पहनावा है। जबान च वी ज्यादा फर्क नहीं। हालांकि जेड़ी पंजाबी दोनों पासे बोली जांदी है, उसकी लिपि च फर्क है। पाकिस्तान च पंजाबी शाहमुखी लिपि च बोली जांदी है ते साडी पंजाबी गुरमुखी डायलैक्ट दा फर्क हो सकदा है, पर फर्क इन्ने वड्डे नहीं कि सानू अलग कर सकन। दोहां पंजाब दे विचकार एक बॉर्डर ही है जो सानू अलग करदा है। पंजाब दे इतिहास की गल करिए तां इह साडा दोहां दा सांझा है। सिर्फ इतिहास ही नहीं, इतिहास च कहे गए किस्से, काव, कवि, पीर मुर्शद, ओ भी साडे सांझे ने। पंजाब जदो अज दी शकल च नहीं सी, उस दे बनन, टुटन, हमले झेलन ते फिर खड़े हो जान दियां कहानियां भी साडियां सांझियां ने। सांझे पंजाब दी गल करिए तां इलाका सब तो पहला मुगल राज दे अधीन सी। सिख उदो घट गिनती च सी, लगातार हमलियां दे बावजूद सिख डटे रहे। उन्हां दा युद्ध कौशल ही महाराजा रणजीत सिंह दे राज स्थापित होण दा सबब बनिया। लाहौर नूं राजधानी बनाया गया सी। महाराजा रणजीत सिंह दा राज खैबर पास तक वध गया ते दक्खण वल कश्मीर तक। बाद च इस नूं पंजाब कहा जाण लगा। उस समय तक पंजाब बेहद रईस, अमन चैन वाला ते धर्म निरपक्ष राज बन चुका सी। ब्रिटिश राज आउण तों बाद कश्मीर अलग हो गया ते 1947 च पंजाब दे वी दो हिस्से हो गए। हालांकि अखीर तक अमृतसर किसदा होवेगा ते लाहौर किसदा, इह किसे नूं नहीं सी पता। अज अमृतसर साडा हिस्सा है ते लाहौर पाकिस्तान दा। पर जद वी अमृतसर तों कोई लाहौर जांदा है तां इह कहिंदा होया वापस परतदा है कि लाहौर दे बाजार साडे अमृतसर दे बाजारां वर्गे ने, उत्थे दा खाण पान साडे तों अलग नहीं। खासकर अमृतसर वालियां नूं लाहौर वालियां दी जबान च ज्यादा फर्क नजर नहीं आउंदा। जे असीं भुल जाइए कि दोहां मुल्कां विचकार इक हद वी है, तां इंज लग ही नहीं सकदा कि तुसीं किसे होर मुल्क च चले गए हो। इतिहास दे पन्नियां चो इक ना वारस शाह दा वी है, जिन्हां दा लिखिया ते कहा गया दोहां पासे उन्ना ही प्यारा है। दोहे पंजाब वारस शाह दे लिखे नूं उन्नी ही इज्जत दिंदे ने ते वारस शाह दी हीर दोहां पासे उन्नी ही मकबूल है। वारस शाह दा जन्म 18वीं सदी च जंडियाला शेर खान च होया, जो अज उधरले पंजाब च है। वारस शाह खुद नूं कसूर दे पीर मखदूम दा शागिर्द कहंदे सी। वारस शाह दे वालिदान छोटी उम्र च ही चल बसे। कहा जांदा है कि उन्होंने अपनी सिख्या कसूर तो लई। ओह बाद च मलका हांस इलाके चले गए। ओह उथे दी इतिहासक मस्जिद दे नाल वाले कमरे विच रिहा करदे सी, लिखिया करदे सी। अज ओह मस्जिद मस्जिद वारस शाह दे नां नाल जानी जांदी है। वारस शाह दी हीर नूं दोहां मुल्कां च अलग अलग गायकां ने गाया ते वारस शाह दी जिंदगी ते लिखतां नूं लै के दोहां पंजाब च फिल्मां भी बणियां ते डॉक्यूमेंट्री भी। इह वारस शाह ने उन्हां दी लिखी हीर रांझा है, जो सदियां तक पीढ़ी दर पीढ़ी दोहां पंजाब नूं जोड़ के रखेगी। साहित कुछ समय बाद इतिहासक दस्तावेज दी शक्ल अख्तियार कर लैंदा है। हद्दां ने भले ही सानू अलग कर दिता होवे, पर इह साहित ए इतिहास सानू जोड़ी रखदा है। इसी साल पाकिस्तान दे वारस शाह हिंदुस्तान दे वारस शाह दी हीर ने 250 वरे पूरे कर ले ने। इसी अगस्त च पंजाब च दोहां पंजाब च दरअसल उन्हां दी याद च समागम करवाए गए। इत्थे साडी अजीम अफसाना निगार अमृता प्रीतम दा कहा याद आउंदा है, अज आखां वारस शाह नूं किते कब्रां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वरका फूल। किसे पंजां पाणियां विच दित्ती जहर रला, ते उन्हां पाणियां धरत नूं दित्ता पाणी ला। सच ही तां है, पता नहीं क्यों कुछ लोकां ने अपने फायदियां खातिर साडे सांझे पंजाब नूं नजर ला दित्ती है। ओह पाणी जो साडा सांझा रहा, उस च दुश्मनी
ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੀ। ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ।

लोक रंग तहत सामने तो सी समाज फरमारे हो अनिल आफताब दी आवाज इन्हें दी आवाज जगह सुने अच्छी अगला लोकगीत है माया।

ਲੋਕ ਰੰਗ ਤਹਿਤ ਅਨਿਲ ਆਫਤਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਛੋਲਾ।

लोक रंग तहत सामने तो सी समाज पर मारे सी अनिल आफताब दिखाए लोकगीत ते हुण आखिर सिलसिला देश पंजाब मजलिस दा तमन्ना तमन्ना तहत अज श्री गंगानगर तो फरमाइश आई है जी इन्हां दी तमन्ना है बलजीत दोसांझ दा गाया गीत सुनना चाहुंदे ने ते तमन्ना भेजण वाले ने बजरंग लाल शर्मा जगमोहन सिंह गरनेचा दिनेश कुमार शर्मा ते नरेश कुमार शर्मा कहिंदे ने जी कि पंजाबी लोक गायक होण पंजाबी फनकार होण पंजाबी नाटककार होण पंजाबी शायर होण या पंजाबी गायक होण हरेक नु सुनना साडे लई बड़ी माण फखर वाली गल है। ए ओ लोक ने जो पंजाबी विरसे नु कायम रखे हुए ने ते लगातार आउण वालियां पीढ़ियां लई इक सरमाया संजो के जाण वाले ने जो रहिंदी दुनिया तक पंजाबी सभ्याचार ते पंजाब दा माण वधांदी रहेगी। एहो जे फनकारां दे विच इक नां आउंदा दलजीत दोसांझ होरां दा। सोचाउंदे ने कि दलजीत दोसांझ दा गाया कोई भी गीत इन्हां दी तमन्ना पूरी कर देवे। सो बहुत बहुत शुक्रिया श्री गंगानगर वाले थोड़ी फरमाइश पूरी कर रहे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया।

0: नेता भारत आत्मविश्वास की नई उड़ान के साथ मैदान में है, जबकि पाकिस्तान की टीम अपने जज्बे जुनून से बड़ा उलटफेर करने का सपना लेकर आएगी। आसमान में तिरंगे की उम्मीदें हैं, मैदान पर खिलाड़ियों का हौसला और रेडियो के इस सफर में आपके साथ क्रिकेट का सबसे रोमांचक कारवां। मैं हूं आपका होस्ट आनंद श्रीवास्तव और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट साक्षी मांडवाल।
1: Thank you so much, Anand, and a very warm good evening to all our listeners of Akashvani. We are back over here once again, bringing you the first game of the ongoing Women's World Cup 2026, the big one, India versus Pakistan. Joining me over here in the studio today are three very special guests. It's a pleasure to introduce you all to them, to all of you today. First of all, I would like to welcome over here with us former cricketer Vaishali Mathur. Namaskar, good evening.
2: Good evening.
1: और दोस्तों उनके साथ हमारे साथ यहाँ पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर क्रिकेटर कर्नल भूपराज सिंह। गुड इवनिंग, नमस्कार कर्नल।
3: हेलो, गुड इवनिंग।
1: एंड सीनियर शुड आई से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राइटर एंड ऑल्सो अ पर्सन हु वेरी पैशनेटली कवर्स एंड फॉलोज क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स मोना पार्थ के साथ दीजिए। गुड इवनिंग मोना, नमस्कार।

0: मैच कहते हैं, और कागजों पर भी भारत का पलड़ा बहुत भारी है, और ये ग्रुप हमने देखा है कि कितना कठिन है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, इसमें साउथ अफ्रीका भी है, तो किसी भी कोताही की यहाँ गुंजाइश नहीं है, तो यहाँ आइडिया यही होगा कि एक बड़ा स्कोर खड़ा किया जाए।
1: जी हाँ बिल्कुल, भारत और पाकिस्तान के बीच 16 T20 मुकाबले हुए हैं, इनमें भारत ने 13 और पाकिस्तान ने 3 मैच जीते हैं। T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो दोनों टीमें 8 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें भारत ने 6 बार और पाकिस्तान ने 2 बार मात मारी है। जनरल, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब से वहाब रियाज ने कमान संभाली है पाकिस्तान टीम की, एक अटैकिंग इंटेंट नजर आया, जो जिम्बाब्वे के साथ उनकी बाइलैटरल सीरीज हुई थी वहां हमने देखा कि 200 से ज्यादा स्कोर बने, लेकिन प्रैक्टिस जो मैचेस थे वर्ल्ड कप के वहां वो टीम स्ट्रगल करती नजर आई, क्या उस माइंडसेट से भारत किस तरह के टोटल के आसपास आज देखेगा पहले बल्लेबाजी करते हुए?
2: देखिए, अगर आप पाकिस्तान का परफॉर्मेंस देखेंगे लास्ट 4 मंथ्स में, दैट इज दिस ईयर, तो एक्सेप्ट फॉर द सीरीज अगेंस्ट जिम्बाब्वे वेयर दे प्लेड ऑन देयर ओन ग्राउंड, सो दे स्कोर्ड वेल, रेस्ट ऑफ द मैचेस दैट इज इन साउथ अफ्रीका एंड ऑल्सो इन इंग्लैंड एंड आयरलैंड, दे हैव लॉस्ट ऑल मैचेस एक्सेप्ट वन विच दे वन। So generally if you see their batting revolves around Fatima Sana. If she gets out early, then they are scoring in the range of 120 to 130 runs. So in wickets ke upar, mere khayal se hum agar batting first jo abhi hum kar rahe hain, batting hamari strong hai, to agar hum score 170 se upar kar dete hain, to it will be a very challenging total for Pakistan and we should be able to beat them.
1: जी हाँ बिल्कुल, 2025 के बाद से फातिमा सना ने 12 मुकाबलों में 335 रन बनाए हैं, 13 विकेट भी लिए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 183.06 का है।
3: जी एंड आनंद, दिस इज ऑल्सो फॉर ऑल आर लिसनर्स हु आर जॉइनिंग अस टुडे ओवर हियर, आवर कॉलिंग लाइंस आर ओपन। जी हाँ, हमारी कॉलिंग लाइंस खुल चुकी हैं 011-2342-1084, 011-2342-1085। आप हमें कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हैं आप कर्नल भूप्राज सिंह, वैशाली माथुर और मोना पार्थसारथी आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। एंड नाउ टू टेक दिस कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड, वैशाली आई कम टू यू। बर्मिंघम की जो पिच कही जाती है, इट्स ऑलवेज बीन अ स्लो पिच, 6.77 का यहाँ पर हमने देख रहे हैं एवरेज रन रेट पर ओवर चलता है जब बात करते हैं। उस एंगल से हमने आज भी देखा कि वन वी फर्स्ट वन द टॉस, हरमनप्रीत सेड दैट वी आर ब्रिंगिंग इन 3 स्पिनर्स एंड 2 मीडियम पेसर्स। फ्रॉम अ बोलिंग पर्सपेक्टिव फॉर द इंडियन साइड, आप किस तरह से देख रहे हैं आज भारत अपनी स्ट्रैटेजी लेकर कर रहा है?
1: वैशाली मैम, इससे पहले कि आप इस सवाल का जवाब दें, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, नमस्कार, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? भाई साहब की उम्मीद लगा रहे हैं। जी वैशाली,
0: जैसे कि मैंने अभी बताया कि पिच के बारे में, बैटिंग पिच है, पाटा पिच है बिल्कुल, तो डेफिनेटली 140 से तो अबव ही जाएगा, 180 तक का टारगेट जरूर होगा भारतीय टीम का। लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के स्पिनर्स भी कोई कम नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि स्मृति वंदना जब उनके सामने नासर संधु और सादिदा आती है ना, तो उन्होंने 3 मैचेस में 2 बार उनको आउट किया है। लेकिन आज हमारी स्मृति वंदना को इनसे बचना होगा, इन खुल के खेलना होगा, क्योंकि हमारे जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बात करें हम स्मृति वंदना, हरमनप्रीत कौर, हमारी दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, तो ये एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, इनको पता है कि किस तरीके से खेलना है, कहाँ उनको लैग करके उसको इम्प्रूव करना है ड्यूरिंग द मैच। लेकिन जो हमारे यंगस्टर्स, जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनको भी कैसे लेके साथ चलना है। और उसके बाद मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि जो फातिमा है पाकिस्तान टीम की कैप्टन, वो उनको नी इंजरी है, सो हमारी टीम को ये पता है कि उनको नी इंजरी है, तो ये एक बेनिफिट भी हमारी टीम के लिए है।
1: जी बिल्कुल, इस मैच से पहले ऐसा लग रहा था कि शायद वो नहीं खेलेंगी, आपने पाकिस्तान के कुछ स्पिनर्स की चर्चा की। 2025 के बाद से सादिया इकबाल ने 12 मुकाबलों में 14 विकेट लिए, फातिमा सना के नाम 13 विकेट है, जबकि नासरा संधु जिनका आप जिक्र कर रही थी उनके नाम 9 विकेट है। तुबा हसन एक और ऐसी गेंदबाज जो मिडिल ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करती हैं। पुनः अगर भारतीय बल्लेबाजी की थोड़ी चर्चा करें, जिस तरीके से शिफानी फॉर्म में है, जनवरी 2025 के बाद 21 मुकाबलों में 677 रन उनके नाम है, और वनडे वर्ल्ड कप में एंट्री के बाद से लाजवाब फॉर्म कैरी कर रहे हैं स्मृति, हम सब जानते हैं कि बड़े टूर्नामेंट्स के बड़ी प्लेयर हैं, यहां किस तरह का स्टार्ट देख रही होंगी? चूंकि पिच पर काफी चर्चा हो रही है, बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है, आते ही स्टार्ट करेंगी या कुछ ओवर देखेंगी?
4: देखिए, फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 रन बनाने के बाद स्मृति एक भी अर्धशतक नहीं बना पाई है।

0: गई है ऑलमोस्ट, जो फलक्रम है टीम का वो वही है, टीम वही है ऑलमोस्ट। तो इन्हें पता है, जिसको कहते हैं ना बीन देयर डन दैट, एक खिताब हम जीत चुके हैं, हमें पता है खिताब कैसे जीते जाते हैं। तो वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो स्ट्रेटजी है जो कागजों पर बनती है, उसको मैदान पर रणनीति पर अमल करना जरूरी होगा। और यहां पर चूंकि आपने बल्लेबाजी चुनी है तो आपको शुरू से ही आक्रामक खेल दिखाना होगा, और ये पाकिस्तान के खिलाफ मैच है तो थोड़ा कैरिड अवे होने से भी यहां बचना बहुत जरूरी होगा।
1: राइट, एंड वी टोल्ड वी हैव अनदर लिसनर ज्वाइनिंग अस राइट नाउ विद अस। नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अविनाशी, बताएं क्या पूछना चाहते हैं आप? Right, I'll take that question straight to our expert Colonel Hoopraj. What do you want to address that? Richa Ghosh coming in at number 3 is his ask or suggestion. How good or bad do you think that is in terms of placement at number 3 for Richa Ghosh over there?
2: Well, what I feel is that we've got a very settled first 4 or 5 batsmen and their experts in their position. And Richa Ghosh may not be a good option to send at number 3. Let her play at number 6 or 7 at whatever stage she comes, so that she can get good quick runs in the later part of the innings. And Harmanpreet, Shefali Verma and Mandana, they are good players. They will, you know, manage on top along with Giovanna Rodriguez.
1: राइट, आई जस्ट एक क्वेश्चन विद वैशाली ऑल्सो आपके पास आऊंगी मैं। आनंद ने अभी बहुत अच्छी बात रखी थी कि 13-3 का आंकड़ा है, 13-3 का आंकड़ा भारत के पक्ष में अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान इज ऑलवेज अ वेरी बिग थिंग बिकॉज इट्स इंडिया पाकिस्तान, बट इन टर्म्स ऑफ द क्रिकेट एंड हाउ द क्रिकेट ऑफ दीज टू नेशंस हैज इवॉल्व्ड, डू थिंक इट इज नो मोर अ फाइट और अ राइवलरी बिटवीन, इफ यू टॉक स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ हाउ द टू नेशंस टुडे स्टैंड इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग द काइंड ऑफ क्रिकेट दे आर प्लेइंग?
3: आई थिंक इट्स अ माइंडसेट, क्योंकि अगर एक प्लेयर अगर खेल रहा है तो उसके साथ साथ हमें ना सिर्फ ये देखना चाहिए कि उसका किस तरीके की अचीवमेंट्स है, उसने क्या क्या एक्सपीरियंस है उसके पास और वो कैसे प्ले करता है, रेदर देन हम अपनी पॉलिटिक्स साइड में रख के देखें तो। एंड उसके साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि वो किस तरह का फील्डर है, कितना अच्छी बैटिंग करता है और वो कितना इन्वॉल्व है टीम के साथ, और वो सब फैक्टर्स भी देखे जाते हैं। और अभी मैं एक और चीज ज्वाइन करना चाहती हूँ इसमें कि रिचा घोष के बारे में अभी हम बात भी कर रहे थे, तो रिचा घोष हमारी इंडियन टीम के लिए एक्स फैक्टर है, क्योंकि वो उस जगह पे खड़ी है जहां पे उनको कहीं भी भेजेंगे, किसी भी डाउन पे भेजेंगे, वो वहां जाके अपने आप को शो करती है। हमेशा हमने देखा होगा कि ऊपर का बैटिंग लाइनअप खराब हो जाता है हमारा कभी कभी, हर दिन एक जैसा नहीं होता है, लेकिन एक रिचा घोष ऐसी है इस टीम के अंदर जो हर दिन अपने आप को शो करती है एंड वो बैटिंग करके दिखाती है। और उसके साथ जेमिमा रोजर्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें उनको पाकिस्तान के साथ बैटिंग करना बहुत ही मजेदार लगता है, और उनने जो एशिया कप में 2022 में जो खेला था उन्होंने 53 की नाबाद बारी खेली थी उनके साथ, और वो मुझे लगता है कि वो आज उतने ही जोश में भी होंगी।
4: जी बिल्कुल, अगर हम अपने श्रोताओं के लिए भारत की प्लेइंग 11 की बात करें तो स्मृति मंदाना है, शेफाली वर्मा है, जेमिमा रॉड्रिग्स है, हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तान, भारती फुलवाली, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्रियंका पाटिल, श्री चरणी और क्रांति कौर, इस टीम के साथ खेल रही है टीम इंडिया। थोड़ी बात हरमन की जाए, हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम की कप्तान, इनकी कप्तानी में भारत ने T20 वर्ल्ड कप में 19 में से 13 मैच जीते हैं, 6 हारे हैं और 2025 के बाद से 19 मुकाबलों में 486 रन बनाए हैं। मुना एक ऐसी खिलाड़ी जो काफी समय से स्ट्रगल कर रही है, बीच में कुछ एक मैचेस में अच्छी पारियां खेलती हैं, लेकिन टीम की सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। क्या लगता है इस बड़े मंच पर दबाव होगा उन पर?
0: देखिए, ये कहना तो गलत होगा कि दबाव नहीं होगा, और खासकर अब ज्यादा दबाव होगा क्योंकि हम वनडे में विश्व चैंपियन हैं, और उस लय को बरकरार रखने का दबाव जो होता है भारतीय क्रिकेट में हर कोई जानता है किस तरीके से कैसे होता है। हरमन की हम बात करें तो एज अ बैटर मुझे अभी भी उनकी वो ऑस्ट्रेलिया वाली इनिंग याद आती है जब अकेले दम पर उन्होंने मैच जिताया था। अभी हम बात भी कर रहे थे कि टूर्नामेंट से ठीक पहले 2 हाफ सेंचुरी लगाई है उन्होंने, अलू है, रवानगी से पहले एक प्रेस इवेंट में उनसे पूछा गया था कि क्या ये आपका आखिरी वर्ल्ड कप है, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, यू वांट मी टू रिटायर बाय. तो ये एक बॉडी लैंग्वेज होती है कप्तान की, जहां आक्रामकता दिखानी होती है वहां वो

0: आक्रामक रहती है और मुझे लगता है हरमन वो एक धुरी है जो इस पूरी टीम को जोड़ के रखती है और एक कप्तान के तौर पर उनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है भारतीय महिला क्रिकेट में। तो मुझे लगता है कि वो दबाव जरूर होगा लेकिन उस दबाव से कैसे पार पाना है उस खेल की वो अब माहिर हो चुकी है।
1: Just to take that question for you, because aap jawab dena cha rahe the about how the cricket of both the countries has evolved and whether possibly India ka cricket se zyada uchch ho gaya hai compared to Pakistan ka cricket.
0: Sakshi, aapne jo sawal pucha tha ki dono desh kahan thehrte hain mahila cricket mein, ye aapka question tha, to aapko ye bhi dhyan rakhna hoga ki bhartiya team khastaur pe WPL aane ke baad se ya fir exposure ki hum baat kare to lagatar khelti aa rahi hai aur Pakistan 2 saal mein ek ya do shrinklaen khela hai. जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है उसको तो मैं कहूंगी बेमेल ही श्रृंखला है, उसमें शायद सबसे फास्ट हाफ सेंचुरी बनाई फातिमा सना ने, लेकिन जो हार्ड टेस्ट होते हैं किसी भी बड़े टूर्नामेंट से पहले उनसे होकर पाकिस्तानी टीम नहीं गुजरी है और भारतीय खिलाड़ी न सिर्फ WPL, आप हंड्रेड्स में देख लीजिए, आप बिग बैश में देख लीजिए भारतीय खिलाड़ी खेलते हैं, तो काफी अनुभव हो गया है बड़े मुकाबले खेलने का और वर्ल्ड कप फाइनल तक खेल चुके हैं, तो बहुत ही फर्क है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी हम देखें या प्लानिंग वाइज भी हम देखें या कहां पर दोनों टीमें खड़ी हैं और बोर्ड का कितना सपोर्ट है पाकिस्तान में महिला क्रिकेट को और भारत में, तो काफी फर्क पड़ता है, आप कितनी साउंड होकर उतर रहे हैं मैदान पे वो काफी मायने रखता है, तो मुझे लगता है यहां पर निश्चित तौर पर भारत का पलड़ा काफी भारी है।
2: गेंदबाजी की बात करें तो श्री चरणी पर सबकी नजरें होंगी, 2025 के बाद से 20 मुकाबलों में 28 विकेट और दीप्ति शर्मा एवरग्रीन दीप्ति शर्मा के नाम 23 विकेट है और अरुंधति रेड्डी ने 20 खिलाड़ियों को आउट किया है। श्री चरणी की थोड़ी बात करते हैं कर्नल, काफी नई खिलाड़ी हैं लेकिन रनों पर अंकुश लगाना हो, मिडिल ओवर्स में विकेट लेना हो, ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती है इस वर्ल्ड कप में।
3: देखिये श्री चरणी इज अ वेरी गुड बॉलर, कंट्रोल से बॉल करती है, फ्लाइट करती है एंड आपने WPL में भी अगर इनका परफॉर्मेंस देखा था तो उन्होंने ऑलमोस्ट हाइएस्ट विकेट टेकर थी, तो शी इज वेरी गुड एंड ऑल्सो इन दीज लास्ट 4 मंथ्स दैट वी बीन टूरिंग साउथ अफ्रीका इंग्लैंड शी इज टेकन लॉट ऑफ विकेट्स, 2 विकेट्स, 3 विकेट्स इन एवरी सेकेंड इनिंग शी इज टेकन, सो शी इज वेरी गुड, बट वॉट इज मैटर ऑफ कंसर्न इज द फॉर्म ऑफ दीप्ति शर्मा।
2: बिल्कुल सही, मैं इसी सवाल पर आ रहा था, कर रही है,
3: शी इज जस्ट टेकन इन 1 मैच 5 विकेट, रेस्ट ऑफ द मैचेस शी इज नॉट दैट ओल्ड दीप्ति शर्मा दैट वी नो हर टू बी, पर आज उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी बॉलिंग करेगी एंड बट आई हैव गॉट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन श्रियंका पाटिल ऑल्सो, शी इज बोल्ड वेरी वेल इन WPL एंड ऑल्सो इन दी प्रैक्टिस मैचेस दैट वी हैड इन इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका, सो दीज 3 स्पिनर्स वी आर लुकिंग एट एंड अरुंधति द फास्ट बॉलर ऑल्सो शी इज डन वेल, तो आर बोलिंग इज क्वाइट गुड एज वेन वी कंपेयर आवर सेल्फ विद पाकिस्तान।
1: Of Deepti Sharma abhi, Deepti Sharma just requires 5 more wickets to go past actually Thipachha Puttawong of Thailand to become the leading wicket taker in women's T20. Hona, aapke paas aa jaate hai is baat se ki a moment of pride, kyunki hum Indian women's cricket ke evolution ki baat kar rahe hain, Deepti Sharma today stands at accomplishing a feat where she could become the record holder in terms of the number of wickets, 5 more wickets to go and she becomes the highest wicket taker in women's T20 cricket.
2: इस सवाल के जवाब पर आएंगे, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका जी, नमस्ते जी, बताएं क्या बताना चाहते हैं आप जी, शुक्रिया जी। हाँ, इस विश्व कप में भारत के सभी मैचों का प्रसारण हम आपके लिए लेकर आएंगे, आप इस मैच से जुड़ा क्या बताना चाहते हैं जी? हाँ, करोड़ों भारतीय प्रशंसक टीम इंडिया को शुभकामना देना चाहते हैं जी। मोना, दीप्ति शर्मा के बारे में आप बता रही थी
0: जी, बिल्कुल आपने बात की, रिकॉर्ड की दहलीज पर खड़ी है और पर्सनल माइलस्टोन्स इतना ज्यादा जब आप क्रिकेट खेलते हैं अक्रॉस द फॉर्मेट और ये T20 में खास तौर पे दीप्ति शर्मा का जो प्रदर्शन रहा है, जैसे अभी सर बोल रहे थे कि उतना उस कॉन्फिडेंस में वो नहीं दिख रही है, उस लय में वो नहीं दिख रही जिसकी वजह से वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी थी, लेकिन बड़े मैच की खिलाड़ी हैं।

0: माइंड चाहे वो कितना भी बोले कि हमारा ध्यान नहीं रहता है पर्सनल माइलस्टोन पे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ माइंड रहता ही है कि अभी इतने विकेट बाकी हैं, तो बड़े मैच की खिलाड़ी है, बड़ा टूर्नामेंट है और सही समय पर पीक करना उन्हें आता है। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि न सिर्फ वो माइलस्टोन बल्कि इस टूर्नामेंट में भारत को बहुत डीप ले जाने में भी वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
1: वैशाली, आपसे जानना चाहेंगे कि जब भारतीय फुलमाली की एंट्री होती है प्लेइंग 11 में, क्या हम इस टूर्नामेंट में बैटिंग ऑर्डर में शफल देख सकते हैं, जो कि एक ऐसी प्लेयर है जो किसी भी ऑर्डर पर आकर तेज तर्रार पारी खेल सकती है?
2: अगर भारतीय की बात करूं तो ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिया ए में जो उन्होंने खेला था उन्होंने नाबाद 50 प्लस स्कोर किया था एंड वो कंटिन्यूस करती हुई आ रही हैं, दैट्स व्हाई वो इस टीम के अंदर आज प्लेइंग 11 का हिस्सा है। और उसके उनके अंदर एक खासियत और है कि उनके अंदर पेशेंस भी है। जैसे कि हम देखें, अगर कंपेरिजन करें शेफाली वर्मा और भारती का, तो शेफाली के पास उतना पेशेंस नहीं है जितना कि भारती के पास है। और मान सकते हैं कि पहला मैच खेल रही है, लेकिन पहला मैच हो सकता है उनका जिंदगी का मैच हो और वो इसी मैच से आगे भी आए, तो मेरी तो यही उम्मीद है कि वो 50 प्लस स्कोर करे और हो सकता है कि जहां भी वो ओपनिंग या फर्स्ट डाउन आए तो वहां पे अपने आप को प्रूव करे।
3: राइट, आई कम टू यू नाउ कर्नल भूपराज एंड आस्क यू, डज इंडिया गो इन एज हैवी फेवरेट्स इन द गेम टुडे?
4: Oh yes, we are heavy favorites and I'm hoping for a one-sided match.
3: One-sided, wow. Mona ji,
0: hands down, बिल्कुल इंडिया फेवरेट है। और जैसे हम बार बार बात करें कि पाकिस्तान के लिए सब कुछ निर्भर करता है उनकी कैप्टन पर, वो आज कैसे खेलती है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, टूर्नामेंट से पहले मैंने एक बार उनका इंटरव्यू किया था और उन्होंने कहा था कि उनके फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी है, काफी कुछ कूल डिमेनर जो महेंद्र सिंह धोनी का है वो उसी तरह से कप्तानी में विश्वास रखती है। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सफलता के मामले में धोनी की वो नक्शे कदम पर ना चले और आज बिल्कुल भारत फेवरेट रहे।
1: कर्नल भूप राज, आपसे समझना चाहेंगे, भारत और पाकिस्तान की टीम जब भी मैदान पर उतरती है और विश्व कप का जब मंच होता है, गहमा गहमी बहुत बढ़ जाती है। और हम देख भी रहे हैं कि पिछली बार जब दोनों टीमें पुरुष विश्व कप में खेली थी तो किस तरीके का माहौल था, यहां पर क्या इंटेंसिटी आप फील कर रहे हैं?
4: देखिए, इस बड़े मैच में थोड़ी बहुत टेंशन तो होती है दोनों टीमों के लिए, बट लेटली अगर आप देखिए तो इंडिया बोथ मेंस एंड वेमेन्स में बड़े आराम से जीत रहा है, तो वो जो टेंशन इंडियन प्लेयर्स में है वो थोड़ी सी कम होगी इस बार एंड मेरे ख्याल से हम लोग अच्छा खेलेंगे।
1: जी हाँ, बिल्कुल, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम अच्छा खेलेंगे। वैशाली, क्विक आपसे टेक लेना चाहेंगे, भारतीय बल्लेबाज किस तरीके की शुरुआत की उम्मीद कर रहे होंगे? हमने शेफाली की बात की, स्मृति की बात की, हमने ये भी चर्चा की कि स्मृति का फॉर्म उनके साथ नहीं है, जो टीम दक्षिण अफ्रीका खेलने गई थी, जो इंग्लैंड में वो बल्लेबाजी करके आई है, लेकिन हम सब जानते हैं वो बिग मैच प्लेयर है।
2: जी बिल्कुल, और मैं यही उम्मीद करती हूँ और बाकी फैंस भी यही उम्मीद करते होंगे कि जो पावर प्ले है उसका भरपूर फायदा उठाया जाए और जितने रन हम लूट सकते हैं उतने रन हम लूटे हमारी टीम वो उसके बाद जब हमारी शेफाली वर्मा मारने को आती है ना तो वो रुकती नहीं है, ये हमने काफी टाइम तक देखा है। और स्मृति वर्मा का जब बैट चलता है वो ग्लांस करती है, जिस तरह से वो स्लाइस करती है बैट को और उसके साथ साथ जैसे वो कवर ड्राइव लगाती है वो रुकनी नहीं चाहिए आज के मैच में।
1: हम सब उम्मीद करते हैं कि आज भारत रुकेगा नहीं, तो विश्लेषण आंकड़ों और उम्मीदों का ये सफर यही थमता है, लेकिन असली रोमांच अब शुरू होने वाला है। बर्मिंघम का मैदान तैयार है, खिलाड़ी तैयार हैं और करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें इस महामुकाबले पर टिकी हैं। भारत और पाकिस्तान की टक्कर में हर गेंद इतिहास लिख सकती है। वैशाली आपका, कर्नल भूपराज आपका और मोना आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
3: थैंक यू।

मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास। मैं आशीष चरंगू अपने साथी कमेंटेटर दर्पण तिखिया, स्कोरर रजत सिन्हा और स्टेटिस्टिशियन तुषार त्रिवेदी के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का 10वां संस्करण शुरू हो चुका है 12 जून से और अब तक इस प्रतियोगिता के इस विश्व कप के 5 मुकाबले खेले जा चुके हैं और आज 6वां मुकाबला है जो कि अब से थोड़ी ही देर बाद

भारत और चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान की टीमों के बीच शुरू होने वाला है एडविस्टन बर्मिंगम पर। और इस मैच में टॉस जीता है भारत के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने, और टॉस जीतकर जैसा कि तमाम खेल के जानकारी अनुमान लगा रहे थे कि जो भी कप्तान टॉस जीतेगा पहले वो बल्लेबाजी करने का निर्णय लेगा इस पिच पे, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए ये उपयुक्त फिलहाल काफी बेहतर नजर आ रही है। और हरमनप्रीत कौर ने भी ठीक वैसे ही किया, टॉस जीतने के बाद उन्होंने बल्लेबाजी करना पसंद किया, उसका फैसला किया। और जो 11 खिलाड़ी आज वो टीम में उतारे गए हैं वो हैं स्मृति मांधना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर जो कि टीम की कप्तान है, भारती फुलमली, ऋचा घोष टीम के विकेट कीपर, दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, श्री चरणी और शंका पाटिल। तो ये है भारतीय टीम, जबकि पाकिस्तान की तरफ से जो कप्तान है वो है फातिमा साना, होने वाली टीम के विकेट कीपर गुल फिरोजा, आयशा जफर, सायरा जबेन, नतालिया फरवेज, आलिया रियाज, रमीन शमीम, नाशरा संधु, सादिया इकबाल और तासिया रुबाब। तो ये है दोनों टीमों का लेखा जोखा। फिलहाल बीच मैदान पर भारत के दोनों ही प्रारंभिक बैटर्स स्मृति मांधना और शेफाली वर्मा बीच मैदान की तरफ अग्रसर होती हुई, और निश्चित रूप से यहाँ पर भारत के तमाम जो खेल शायकीन हैं, खेल के जानकार हैं या खेल प्रशंसक हैं, उनको यही उम्मीद होगी कि ये जोड़ी भारत को एक अच्छी शुरुआत दे। और जैसा कि हमने देखा भी है कि 2024 के विश्व कप के बाद स्मृति और शेफाली की जोड़ी ने सबसे ज्यादा 762 रन बनाए हैं T20 मुकाबलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खासतौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल है। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया। तीन दिन के इस आयोजन में भारतीय डीपटेक स्टार्टअप, नव परिवर्तनकारी अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव परिवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्वेक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: फ्रांस के राष्ट्रपति ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, विशाल प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
0: इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी का वहां स्लोवाक शैली में पारंपरिक तरीके से ब्रेड और

लौट देकर स्वागत किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 वर्षों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्यभर में 1.25 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रूपये से अधिक की राशि अंतरित की गई। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिसमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है। 3 अन्य लोगों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय नौसैनिक पोत शारदा ने श्रीलंका के कोलंबो की यात्रा पूरी कर ली है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग और आपसी संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। यात्रा के दौरान श्रीलंका की नौसेना के साथ कई पेशेवर प्रशिक्षण और खेल संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज और किशोरी कुमकुम मोहन ने स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओ ये जिन और किम जे देओ को हराया। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: अश्वनी भाई
1: जी,
0: भाई देखिए जून का महीना चल रहा है और गर्मी भी बहुत पड़ रही है
1: जी।
0: मौसम में जो हम बदलाव देख रहे हैं, इसके कई बार जैसे कि बहुत तेज गर्मी पड़ रही है उसके कई फायदे भी लिए जा सकते हैं, जैसे कि इस समय जुताई करके खेतों में जो हानिकारक कीट है, खरपतवार है, उनको नष्ट किया जा सकता है। इसके साथ साथ जब खाली खेत होते हैं तो कुछ ऐसी कृषि क्रियाएं हैं जो आपको भविष्य में फसल उत्पादन में मदद करती हैं, जैसे कि जमीन का समतलीकरण अगर करना है तो इस समय खेत खाली हैं, या मिट्टी का नमूना आपको लेना है तो खेत खाली हैं, बहुत आसान रहता है मिट्टी का नमूना लेना इस समय, ताकि आप अपनी मिट्टी की सेहत की जानकारी ले सकें। इसके साथ साथ आप समतलीकरण का काम हुआ, मिट्टी की जांच का काम हुआ, या इस तरह से जुताई करके धूप में छोरीकरण करने का काम हुआ, इन कामों को इस समय आप कर सकते हैं। और साथ साथ जब हम माइक्रो इरिगेशन की बात करते हैं, सूक्ष्म सिंचाई की पद्धतियां, उसमें आप चाहे उसमें स्प्रिंकलर सिस्टम लगाना है आपको, या पक्की नाली बनवानी है, या बूंद बूंद सिंचाई सिस्टम लगाना है, इस समय खाली खेतों में आसानी से वो भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर हम मौसम की बात करें तो जो आगामी हमारी खरीफ की फसलें आएंगी उनकी तैयारी इस समय आप कर सकते हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, उनकी बिजाई की तैयारी इस समय कर सकते हैं, धान की नर्सरी तैयार करने के लिए अभी से तैयारी कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जब आप इनमें से किसी भी फसल को उगाते हैं तो उसकी प्रमाणिक किस्म आपके पास होनी चाहिए, अच्छी किस्म आप लेंगे तब आपको फायदा होगा। और साथ साथ जब आप बीज की बिजाई करेंगे उसको उपचारित करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ दलहनी फसलें हैं उनके लिए बिजाई के लिए खेत की तैयारी आप कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि जो दलहनी फसलें हैं उनकी जड़ों के अंदर एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, अगर आप अलग से भी टीका लगा देते हैं राइजोबियम का तो और ज्यादा उसमें गांठें बनेंगी, और दलहनी फसलें आपके जमीन को अतिरिक्त नाइट्रोजन की मात्रा उपलब्ध कराएंगी, जिससे कि अगली फसल में नाइट्रोजन कम देने की जरूरत पड़ेगी, जरूरी है। इसके अलावा टमाटर, बैंगन, मिर्च की नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं। आम में फल मक्खी जैसे कीटों का नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अगर उद्यान फसलों की हम बात करें तो अभी समय है आपका खाली खेतों में कि आप गड्ढे तैयार कर सकते हैं, ताकि उसमें नए जो फल वृक्ष हैं उनको लगाने के लिए छोटे पौधों का रोपण किया जा सके। इसके साथ साथ जो अगली हमारी आगे की जरूरी चीज है, बारिश का महीने अगर आ रहे हैं आगे
1: जी,
0: तो बारिश में जल संरक्षण की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। जैसे कि धान की फसल अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें एक तरीका है, उसकी मेड़ों को ऊंची कर देंगे जिससे कि आपके खेत में पानी रुकेगा, और अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है तो निकासी का प्रबंध भी आपको रखना है। और इसके लिए जिन किसान भाइयों के पास इस तरह की व्यवस्था है कि खेत में कुछ ऐसे स्थान बनाए जा सकते हैं जिसमें कि मछली पालन करने वाले एक बड़ा गड्ढा अगर बना करके ज्यादा से ज्यादा पानी को संरक्षित करेंगे तो जो उनका भूमिगत जल का स्तर है उससे ऊंचा हो जाएगा। और साथ साथ जो जल प्रबंधन की हम बात करते हैं, जैसा कि स्प्रिंकलर की हमने बात करी, इसी समय उसे स्थापित कर लेंगे तो खड़ी फसल में जो काम मुश्किल होता है वो इसी समय आप पूरा कर सकते हैं। अब जो हमारे फल वाली जितनी किस्में हैं उनका चुनाव आप अभी से कर लें कि आपको कितने पौधे, जैसे कि आपको अगर आम लगाना है, या आपको अमरूद लगाना है, या फिर आपको सिट्रस लगाने हैं, अपने एरिया में जो आपके यहाँ अच्छे फल चल सकते हैं उनका चुनाव करके और अच्छी किस्मों का चुनाव करके आपको उनको लगाना है। और तैयारी आपको अभी से करनी है, गड्ढे अभी से तैयार कर लेंगे तो जब बारिश होगी उसमें आपके पौधे अच्छे चल पाएंगे। और पौधों की खास बात यह आपको ध्यान रखना है, खासतौर पर उद्यान की फसलों में, बाकी तो सभी फसलों में आपको पहले से देख लेना चाहिए कि कौन सी किस्म आपको लगाना चाहते हैं और प्रमाणित जगह से उसको लेना है। लेकिन फलों की बात करें तो कई साल के बाद आपको अगर ये पता चलता है, आपने मान लीजिए दशहरी लगाया है और दशहरी नहीं है, तो जब 5-6 साल का आपका पेड़ तैयार हो जाता है तो उस समय उसको दूसरी किस्म को आप लगाना, उसको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब आप कोई भी फसल लगाते हैं, चाहे धान है, ज्वार है, बाजरा है, सभी में आपको ये ध्यान रखना है कि प्रमाणित जगह की हम बार बार बात करते हैं, जैसे कि आपके कृषि विश्वविद्यालय हैं या दिल्ली के आसपास के लोग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा खंड विकास अधिकारी के कार्यालय राज्यों में हैं या कृषि विज्ञान केंद्र है देश के लगभग हर जिले में चल रहे हैं, वहां पर संपर्क कर सकते हैं। तो बीज पे खास ध्यान देना है, और बीज में भी उनके उपचार में इसके साथ साथ जो जैविक चीजें हैं, जैसे कि जैविक टीके लगाने की जरूरत जिन फसलों में है, जैविक टीके लगा सकते हैं। और अब एक बहुत जरूरी चीज और कहेंगे अश्वनी भाई,
1: जी
0: कि बारिश का मौसम आने वाला है, तो बारिश में जो हमारा पशुधन है
1: जी
0: उनमें भी बीमारियां बहुत ज्यादा आती हैं। इसलिए अभी से भाइयों को ये ध्यान रखना है कि अपने पशुओं का टीकाकरण जरूर करा लें, ताकि आने वाले मौसम में वो बीमारियों से उनके पशु बचे रह सकेंगे। और इसमें जो आसपास का पशु चिकित्सालय है सरकारी, वहां पर संपर्क कर सकते हैं, वहां से कर्मचारी आकर आपके घरों में पशु के पास भी खुद आकर के टीके लगा सकते हैं। और अगर कहीं ऐसी सुविधा नहीं है तो आप पास के पशु चिकित्सालय में ले जाकर अपने पशुओं को भी टीकाकरण करा सकते हैं। और टीकाकरण कई जगह तो मुफ्त है, और अगर कहीं पर अगर पैसे देकर भी होता है तो उसकी कीमत बहुत कम आपको मिलेगी। सरकार की तरफ से अभियान चलाए जा रहे हैं कि हमारा पशुधन भी स्वस्थ रहे, हम भी स्वस्थ रहें, और पशुओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस मौसम में जब आप काम में लगे होते हैं, पशुओं का ध्यान भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि गर्मी में प्यास उनको भी लगती है। पानी का प्रबंध करें, काम में अगर लगे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें, और खान पान का उनका भी ध्यान रखना है। तो ये कुछ ऐसी जरूरी चीजें थी इस समय मौसम में जो ध्यान रखने की थी। और अब अश्वनी भाई कहो तो भाइयों का पहले मनोरंजन करवा देते हैं।
1: बिल्कुल, मनोरंजन करने से पहले मैं ये कहूंगा कि जितनी भी जानकारी आपको दी जा रही है, दी जाती है जो हमारे नरेंद्र भाई, सारे के सारे जो अभी सलाह होनी चाहिए इस आने वाले मौसम में, क्योंकि बारिश की बात भी की उन्होंने, उन्होंने खरपतवार की बात करी, उन्होंने उर्वरक की बात करी, उन्होंने सब हर एक

0: पहलुओं की बात करिए जो हमारे किसानों के लिए आज और आने वाले कल में बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी पूंजी बचेगी, आपका वक्त बचेगा, आपकी फसल बचेगी और उत्पादन आपको बहुत अधिक होगा। क्योंकि इन बातों का अगर हमारे किसान भाई अगर ध्यान रखते हैं तो इन सभी का सभी का पूरा लाभ कहीं ना कहीं हमारे किसान को डायरेक्ट पहुंचता है।
1: तो मैं आपको बता दूं, विनोद कुमार की आवाज में उपदेश हम सुनेंगे, लेकिन हमारे श्रोता नाराज ना हो जिनके नाम बच गए थे उनको भी पढ़ देते हैं।
0: जी बिल्कुल, ये पहला पत्र मैं ले लेता हूँ जो बचा हुआ है। जिला मुरादाबाद गांव दुलापुर उत्तर प्रदेश में मिला मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, सीमा और उनका पूरा परिवार। यहीं पर एक और पत्र शामिल करता हूँ, ये है गांव थाना पंजाब से है, हरजीत ने छिप्पा, जसबीर छिप्पा और उनका पूरा परिवार। और ये पत्र मिला है नरगौड़ा छत्तीसगढ़ से है ये, और ये महाराज पूरी गोविंद सिंह, लक्ष्मी देवी और जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी और उनका पूरा परिवार।
1: और ये हैं अभिजीत गवानवर, राही सरिता गवानकर, अर्जुन गवानकर और इनका परिवार। ये हैं मेरठ कैंट दिग्दर्शन और कविता गोड़। और आगे हैं जालौन ग्राम पंजोनिया यूपी से सत्येंद्र कुमार चंदोलिया, आदर्श सार्थक और इनका परिवार। और यह आदर्श नगर मलोट कैंप से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और इनका परिवार। और ये हैं ढाणा नरसाना भिवानी से जगदीश चंडालिया, राजवीर चंडालिया, सतीश चंडालिया, ऋतिक चंडालिया और इनका परिवार। ये है बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, उत्कर्ष चौहान। और ये हैं अगला सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। और डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीय, राधिका गजबीय, अनिष्का और तन्मया गजबीय। और कुदरा कुगदा छत्तीसगढ़ से बलराम बया, दामिनी बया और डोमेश बया। ये हैं ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा और इनका परिवार। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता और इनका परिवार। छत्तीसगढ़ हसदा नंबर दो कमलेश साहू, जितेंद्र साहू, पायल साहू।
0: गोविंदगढ़ मांझी जिला कानपुर से राजस्थान से ये पत्र मिला, राजू उर्मिला, जिमू, शिव, सेठी और इनका पूरा परिवार। ये चौधरीवास हिसार से पत्र मिला है, राजू अग्रवाल और इनका पूरा परिवार। ये पत्र और शामिल कर लेते हैं, ये है
1: गांव शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से मंटू शर्मा, सुशीला शर्मा जिलाधर और इनका परिवार। ये है
0: जिला श्रीनगंगा राजस्थान से है मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और इनका पूरा परिवार।
1: और ये हैं जेल रोड बक्सर से राज एस डी अंसारी, फातिमा और इनका परिवार। भोला भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और परिवार। ननोई तहसील शिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन कुमार जांगड़ा, राजबाला और इनका परिवार। ये हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़ और भरत मक्कड़, पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से। और जो अगला मैसेज हमारे पास है, जिदेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और इनका परिवार। और ये मुरादगढ़ गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से रमेश कुमार काम्बोज, पिंकी वंश और इनका परिवार।
0: जी
1: तो सुनते हैं विनोद कुमार को।
2: रहे मन मूरख तेरी तरह के, कितने आके चले गए।

0: तो ये भाई सुन रहे थे एक उपदेश और ये सुन रहे थे विनोद कुमार से, और अब अगला उपदेश भी हम सुन लेते हैं। एक और उपदेश सुनते हैं
1: जी
0: टुकी गिरी की आवाज में।
1: जी

0: और टुकी गिरी के गाय इस उपदेश के साथ ही हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सुनने वाले सब बहन भाइयों को राम राम, राम।
1: और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है तुषार पराशर और संयोजक है शिवंदन लाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। आइए अब सुनते हैं गजल और कव्वालियों का ये कार्यक्रम। सबसे पहले सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

और राम अली की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये गजल। यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। 7:45 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
3: मैंने बचत
4: सुनो,
3: हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ, बाकी रहो इंजेक्शन के।
4: लगाओ
3: इंजेक्शन।
0: आरबीआई कहता है
2: वित्तीय समझदारी समझो धनारी।
5: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार, दिल्ली पुलिस शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए सभी थानों में साप्ताहिक जन सुनवाई आयोजित करेगी। यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए आज राजधानी में 28 घाटों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्रा सिंह ने बवाना में लगभग 10 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। आयुष मंत्रालय के वैश्विक ऑनलाइन योग सत्र में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उपलब्धि दर्ज। और फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल का 78वां संस्करण आज मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देशों के बाद जनता की शिकायतों के त्वरित निपटारे और पुलिस जन संवाद को मजबूत करने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इस संबंध में पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस पहल के अंतर्गत राजधानी के सभी थानों में प्रत्येक शनिवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक जन सुनवाई आयोजित की जाएगी। इस दौरान लोग अपनी शिकायतें, सुझाव और सुरक्षा संबंधी मुद्दे सीधे पुलिस के समक्ष रख सकेंगे। इन कार्यक्रमों में विशेष पुलिस आयुक्त से लेकर सहायक पुलिस आयुक्त स्तर तक के अधिकारी अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। पुलिस आयुक्त हरगोविंद सिंह धालीवाल ने कहा कि यह निर्णय लोगों के हित में है। उन्होंने कहा कि इससे शिकायतकर्ताओं के लिए हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा होगा जब वे थाने जाकर अपने जांच अधिकारी या पर्यवेक्षक अधिकारी से मिल सकेंगे।
6: हर शनिवार विदाउट फेल, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो चाहे ना हो, चाहे 15 अगस्त 26 जनवरी के अरेंजमेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन हर शनिवार को 10 से 2 बजे पुलिस थाने में एटलीस्ट मिनिमम स्टाफ मिलेगा जो कि जिसकी कंप्लेंट है, जो उस थाने में रहता है या उस थाने में जिसने दी है, अगर वो कंप्लेनेंट जाएगा उसकी सुनवाई होगी।
5: दिल्ली पुलिस की अपराध नियंत्रण शाखा ने ऑपरेशन विश्वास के तहत

0: पिछले 2 महीने में 1000 से अधिक खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए हैं। इसके अंतर्गत सभी थाना क्षेत्रों में तकनीकी निगरानी, फील्ड इंटेलिजेंस, दूर संचार सेवा प्रदाताओं और अन्य उपायों की मदद से मोबाइल फोन का पता लगाया गया है। यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए आज राजधानी में 28 घाटों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित राज्य के सभी सांसद, विधायक और हजारों स्वयं सेवकों ने श्रमदान किया। इसमें चिल्ला गांव घाट, निजामुद्दीन घाट, सोनिया विहार, कालिंदी कुंज समेत कई घाट शामिल हैं। सफाई अभियान में जनप्रतिनिधि, अधिकारियों और 500 से अधिक सामाजिक तथा स्वयंसेवी संगठनों, हजारों स्वयंसेवकों और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। श्रीमती गुप्ता ने गीता कॉलोनी घाट पर श्रमदान करते हुए कहा कि यमुना केवल एक नदी नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और जीवन का आधार है। उन्होंने कहा कि यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाना दिल्ली सरकार तथा समाज दोनों की साझा जिम्मेदारी है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी सभी कार्यकर्ताओं ने श्रमदान दिया। लगातार यहाँ यमुना सफाई का काम चल रहा है। मैं ये सोचती हूँ यमुना सफाई जहाँ सरकार का पूर्ण रूप से दायित्व है, वहीं हम नागरिकों को भी इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और यमुना में किसी भी प्रकार का कोई कूड़ा हम लोग ना डालें। हमें मिलकर के काम करना होगा। मैं सभी वॉलेंटियर्स का, सभी संस्थाओं का धन्यवाद देती हूँ कि आपने 22 किलोमीटर लंबी यमुना पर अलग अलग पॉइंट पे श्रमदान देकर के माँ यमुना की आज सेवा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यमुना पुनर्जीवन के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि अमृत योजना के अंतर्गत नजफगढ़ क्षेत्र में 860 करोड़ रुपए की लागत से 12 नई स्थानीय अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली स्थापित किए जा रहे हैं ताकि अपशिष्ट जल को यमुना में जाने से रोका जा सके। वहीं दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने पुराना लोहा पुल स्थित यमुना छठ घाट पर स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि केवल धन खर्च करने से नदी का जीर्णोद्वार संभव नहीं है और इसके लिए जन भागीदारी और जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। श्री गुप्ता ने कहा कि स्वच्छ घाट और निर्मल यमुना दिल्ली की सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक पहचान के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यमुना की गरिमा बहाल करने के लिए इसे जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह ने भी आज आईटीओ स्थित हाथी घाट पर यमुना स्वच्छता महाअभियान में भाग लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस अभियान में हजारों नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर स्वच्छ, सुंदर और निर्मल यमुना के निर्माण के संकल्प को मजबूत किया है।
1: पूरे दिल्ली की सफाई के साथ साथ जो सबसे बड़ा कमांड है माँ यमुना को साफ करना, वो हमको करके दिखाना है। माँ यमुना को साफ करना ये हमारी जान है, ये हमारा कर्तव्य है और अगर हम इसको साफ करेंगे तो दिल्ली का पर्यावरण भी ठीक होगा और लोगों को एक अच्छा स्थान मिलेगा। पूरा सौंदर्यीकरण होगा, रिवर फ्रंट बनेगा। केवल एक विभाग नहीं, सब लोग अपनी साझेदारी से काम कर रहे हैं और आपको 3 साल के बाद में यमुना में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्रा सिंह ने आज बवाना स्थित गांव पूट खुर्द में लगभग 10 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि ये परियोजनाएं दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं।
2: इन परियोजनाओं में सड़कों के सुदृढ़ीकरण, सड़कों के पुनर्निर्माण, नालियों के निर्माण और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के कार्य शामिल हैं। श्री सिंह ने कहा कि इन कार्यों से पूट खुर्द और आसपास के क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा, जल भराव की समस्या कम होगी और लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों को आधुनिक आधारभूत सुविधाओं से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। श्री सिंह ने बताया कि एक दिन पहले दीप विहार में लगभग 20 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था और अब टूट खुर्द में 10 करोड़ रुपए के कार्य शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बवाना विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और आने वाले समय में इन परियोजनाओं का लाभ क्षेत्रवासियों को प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने राजधानी में आग की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कालकाजी अग्निकांड में दूसरी मंजिल पर फंसी 75 वर्षीय महिला को सुरक्षित बचाने वाले दमकल कर्मियों की सराहना की। उन्होंने दिल्लीवासियों से आग से बचाव के लिए सतर्क रहने, घरों और दुकानों की वायरिंग की जांच कराने तथा एसी और अन्य बिजली उपकरणों की नियमित सर्विस कराने की अपील की। श्री मल्होत्रा ने कहा कि भीषण गर्मी में बिजली उपकरण के बढ़ते इस्तेमाल से आग लगने का खतरा भी बढ़ रहा है, इसलिए सभी को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि अब वृद्धि, नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। डॉ सिंह ने कहा कि सार्वजनिक विचार विमर्शों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बढ़ता महत्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदृष्टि को दर्शाता है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने आज ईस्ट किदवई नगर में एक पेड़ मां के नाम रविवार अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का नेतृत्व किया। श्री चहल ने बताया कि पिछले लगातार 28 रविवार से नगर पालिका परिषद यह अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी से ऐसे प्रयास नई दिल्ली को अधिक हरित, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने में सहायक होंगे। दिल्ली पुलिस ने लूटपाट और धोखाधड़ी मामले में कुख्यात ईरानी गैंग के सरगना नासिर हाफिज खान को उर्फ समीर के गिरोह पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों में लूट, ठगी और संगठित अपराध की वारदातों में शामिल था। दिल्ली पुलिस के अपराध नियंत्रण शाखा ने ऑनलाइन निवेश के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पीड़ित को अधिक मुनाफे का लालच देकर 18 लाख रुपए से अधिक की राशि का 4 अलग अलग लेनदेन से ली थी और आरोपी के पास से 1-2 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। मामले की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र की लालकुआ कॉलोनी में आज 5 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने सांसद रामवीर सिंह बिदुड़ी के साथ इन कार्यों की शुरूआत की। आयुष मंत्रालय ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले आयोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत आज सुबह मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि यह उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है।
3: आप सभी ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमने हिबिल के साथ में मिलकर हमारा आयुष मंत्रालय राष्ट्रीय योग संस्थान की एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित किया है कि जैसे कि आज सवेरे 6 बजे के बाद YouTube पर लाइव स्ट्रीम में सबसे अधिक व्यूअर ने पार्टिसिपेट करके जो पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसे भी काट दिया है। 45 मिनट का ये जो योग प्रोटोकॉल था वो सभी ने एक साथ आकर यहाँ पर किया, इसकी मुझे बहुत खुशी है। मैं जो भी लोगों ने पर पार्टिसिपेट किया उन सभी को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
0: फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल का 78वां संस्करण आज मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया। देशभर में लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए प्रत्येक रविवार को इसका आयोजन किया जाता है। इस इवेंट में आज युवाओं से लेकर बुजुर्ग सभी शामिल हुए। फिट इंडिया के एम्बेसडर जितेंद्र आडवाणी ने इस मुहिम को चलाए जाने के लिए फिट इंडिया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद दिया।
4: मैं फिट इंडिया का बहुत आभार प्रकट करता हूँ और प्रधानमंत्री मोदी जी का भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ये फिट इंडिया मूवमेंट को इनिशिएट किया है, जिसके माध्यम से इतने लोग जुड़े हैं। ऑलमोस्ट 10 साल से ये इनिशिएटिव चल रहा है और हर आदमी जो है अपने स्वस्थ और वेलनेस के प्रति जागरूक हो गया इस मुहिम के थ्रू, और इस मुहिम को जो है काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हर जगह से, बिकॉज हर कोई जो आजकल अपने लाइफ स्टाइल की वजह से जो है फिटनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, इस इनिशिएटिव के माध्यम से जुड़ के अब जागरूक हो गया है और अपने लिए टाइम निकाल रहा है फिटनेस के लिए।
0: दिल्ली

0: आज अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, दिल्ली पुलिस शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए सभी थानों में साप्ताहिक जनसुनवाई आयोजित करेगी। यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए आज राजधानी में 28 घाटों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने बवाना में लगभग 10 करोड़ रूपये की विकास परियोजनाओं का शुभारम्भ किया। आयुष मंत्रालय के वैश्विक ऑनलाइन योग सत्र में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया, इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में उपलब्धि दर्ज। और फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल का 78वां संस्करण आज मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मम्मी जी, एक घर के कुछ नियम है, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो जैसे UPI से। हाँ, और सुनो एक और नियम है, वो क्या है मम्मी जी? तुम्हारी वो दिखाई भी UPI से मिलेगी। हाँ भी ना मम्मी जी।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि हैं श्रीमती अभिलाषा विनय, श्री हेमंत जगदीश शर्मा और श्री दिव्य हंस दीपक। गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं श्री दिव्य हंस दीपक।
1: नमस्कार मित्रों, जब कवि और कविता की बात चलती है तो आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक कविता को कवियों ने अपने अपने नजरिए से देखा। कवि पंत जी कहा करते थे कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। फिर कविता का ये सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ा। कवि गोपाल दास नीरज जी ने लिखा कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है कवि होना सौभाग्य। फिर धीरे धीरे कविता वर्तमान काल में पहुंची और वर्तमान काल में कवियों ने कविता को किस नजरिए से देखा। बुलंदशहर के डॉक्टर रामपाल शर्मा विश्वास जी लिखते हैं कि अंतरतम के पट खोले तो कविता होती है, घटघट वंशी वट डोले तो कविता होती है, जीवन में नवरस घोले तो कविता होती है, कवि नहीं कविता बोले तो कविता होती है। और कवि से कविता से कोई भी होता भव्य नहीं, कवि की दुनिया से कोई भी दुनिया दिव्य नहीं, और कविता मन का शून्य यह भावों का शून्य नहीं, मात्र भावना भड़काना कवि का कर्तव्य नहीं। फिर कविता ने धीरे धीरे अपना रास्ता तय किया और वर्तमान काल में पहुंची तो कवि डॉक्टर सुनील जोगी जी ने कविता के बारे में लिखा कि वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता थी जिसने गौरी को शब्द बाण से मारा था, वो कविता थी जिसने दिनकर जी के स्वर में हुंकारा था, वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है, वो वंदे मातरम कविता थी सब गोरे आग बबूले थे, वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है, मत पूछो कविता की उड़ान ये स्वाभिमान बन जाती है, वो कविता है जो सवा अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। तो श्रोताओं, मैं आज के इस कार्यक्रम में आहुति देने के लिए सर्वप्रथम जो मेरे साथी हैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं, श्रीमती अभिलाषा विनय जी जो एक पेशे से शिक्षिका हैं, जब इनकी उपस्थिति काव्य क्षेत्र में होती है तो चार पंक्तियों के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो जिनके घर में हैं बेटी नसीब उन सब के जागे हैं, वो जिनके घर में हैं बेटी नसीब उन सब के जागे हैं, कई धनवान बिन बेटी यहाँ कितने अभागे हैं, और कोई अबला समझकर इनको अब कमजोर न समझे, कोई अबला समझकर इनको अब कमजोर न समझे, यकीनन बेटियां इस दौर में बेटों से आगे हैं, यकीनन बेटियां इस दौर में बेटों से आगे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ श्रीमती अभिलाषा विनय जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और आज जो गीत लेकर के मैं आपके सामने आई हूँ उसका शीर्षक है ख्वाब। ख्वाब देखना हम सभी को चाहिए। देखिए मैंने इस गीत में क्या कहने की कोशिश की है। ख्वाब कुछ ढूंढिए फिर पुराने कभी, जिंदगी हंस उठे इस बहाने कभी। ख्वाब

0: चल चले चल चले चल चले हार को गुनगुनाने, कभी जिंदगी
1: हाँ,
0: हंस उठे इस
1: एक बहाने कभी।
0: बहाने,
1: वाह, बहुत
0: कभी
1: शानदार, बहुत।

से दिल सका दो कदम पे किनारा किसे। दोस्तों हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए कि कब मिली जिंदगी है दोबारा किसे, मिल सका दो कदम पे किनारा किसे, चल चली चल चली।

और पुराने कभी जिंदगी हंस उठे इस बहाने कभी और भूल जाने की आदत जरा डालिए दिल में जिंदा दिली का शहर पालिए भूल जाने की आदत जरा डालिए दिल में जिंदा दिली का शहर पालिए चल चले रंज दिल के मिटाने कभी जिंदगी हंस उठे इस बहाने कभी और इस गीत का अंतिम बंद है तुम अकेले नहीं हो सफर राह में दीप है हौसले की हर एक चाह में तुम अकेले नहीं हो सफर राह में दीप है हौसले की हर एक चाह में चल चले चल चले

0: बहुत
1: अभी
0: शानदार गीत, बहुत शानदार गीत।
1: जी बहुत बहुत आभार है। और एक गीत जो है मौसम के ऊपर लिखा है,
0: स्वागत है।
1: इस गीत का शीर्षक है झूलवा। झूल

0: एक रचना हुई थी जिसका शीर्षक है सूरज लड़कियां।
1: स्वागत है आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज लड़कियां, एक खुला आसमां सुकून भरी सांस, एक खुला आसमां सुकून भरी सांस ढूंढती लड़कियां, रत्ती रत्ती जीती टूटती बिखरती, रत्ती रत्ती जीती टूटती बिखरती बढ़ती लड़कियां, लड़खड़ाती संभलती हाँ नहीं डरती।
1: क्या बात है।
0: लड़खड़ाती संभलती हाँ नहीं डरती निडर लड़कियां।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: मुट्ठी भर आसमां, मुट्ठी भर आसमां हिमालय पढ़ती तूफान लड़कियां।
1: वाह।
0: आंचल भरे सपने रंगोली सजाती दीपित लड़कियां।
1: वाह।
0: उसकी मुक्ता लड़ी घर की चलती घड़ी, उसकी मुक्ता लड़ी घर की चलती घड़ी सूरज लड़कियां। स्वावलंबी विश्वास धूप की सुहास लाठी लड़कियां। लाठी लड़कियां वासंती सुर निखार वीणा की तान जगाती लड़कियां।
1: क्या बात है।
0: और अक्षयवट की कोपल विहान की चौखट बुलबुल लड़कियां।
1: क्या बात है।
0: अक्षयवट की कोपल विहान की चौखट बुलबुल लड़कियां। टुकड़ा टुकड़ा जीती

0: टुकड़ा टुकड़ा जीती गंगा सी सरसाती, बनती लड़कियां।
1: क्या बात है,
0: सूरज लड़कियां, सूरज लड़कियां,
1: बहुत शानदार।
0: धन्यवाद।
1: मुझे कनिष्ठ की पंक्तियां याद आती हैं कि दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए, दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको इतना भी आसान न समझा जाए, मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और अब तो हो जाते हैं बेटे भी घरों से रुखसत, अब तो हो जाते हैं बेटे भी घरों से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। बहुत बहुत साधुवाद। चार पंक्तियां मुझे अपनी याद आती हैं, मैंने कभी लिखा था कि देखना एक रोज हलसम मसले हो जाएंगे, देखना एक रोज हलसम मसले हो जाएंगे, मंजिले मकसूद से कम फासले हो जाएंगे, और राह से दुश्वारियां सब खुद बखुद हट जाएंगी, राह से दुश्वारियां सब खुद बखुद हट जाएंगी, जब बड़े उनसे हमारे हौसले हो जाएंगे।
0: वाह वाह,
1: जब बड़े उनसे हमारे हौसले हो जाएंगे। और मैं अगली प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच हेमंत शर्मा जगदीश जी होते हैं जो कि नोएडा से ही हैं, और मैं चार पंक्तियों के द्वारा उन्हें आमंत्रित करता हूँ उनकी काव्य प्रस्तुति के लिए कि घोर तिमिर में उजियारे को दीप जलाना पड़ता है।
0: क्या बात है,
1: घोर तिमिर में उजियारे को दीप जलाना पड़ता है, दागी चेहरों को खुलकर दर्पण दिखलाना पड़ता है, घोर तिमिर में उजियारे को दीप जलाना पड़ता है, दागी चेहरे को खुलकर दर्पण दिखलाना पड़ता है, और लाख लाख जुबा पर सरकारें प्रतिबंध लगाती हैं, लेकिन लाख जुबा पर सरकारें प्रतिबंध लगाती हैं, लेकिन माँ वाणी के बेटों को कवि धर्म निभाना पड़ता है, माँ वाणी के बेटों को कवि धर्म निभाना पड़ता है। तो उसी कवि धर्म को निभाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री हेमंत जगदीश शर्मा जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैं सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहूंगा कि ना मैं किसी बहर पर लिखता हूँ, ना मैं किसी शहर पर लिखता हूँ, मैं तो सीधी और सच्ची बात से मन की लहर पर लिखता हूँ।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है।
2: कि तेरे सिवा मेरे पास मंजर नहीं कोई, तेरे सिवा मेरे पास मंजर नहीं कोई, खेत मेरा मेरे पास बंजर नहीं कोई, ये लोग मेरे जज्बातों से खेलते रहे, ये लोग मेरे जज्बातों से खेलते रहे, क्योंकि मेरे पास खंजर नहीं कोई,
1: नहीं कोई। वाह वाह वाह।
2: दूसरा इसमें है कि आज ये मौसम तो बड़ा शायराना है, आज ये मौसम तो बड़ा शायराना है, ऊंचे महलों में उसका आशियाना है, ऊंचे महलों में उसका आशियाना है, मुझ पर भी कुछ पत्थर उछालो यारो, मुझ पर भी कुछ पत्थर उछालो यारो, मुझे मेरा कच्चा घर पक्का बनाना है।
1: क्या?
2: मुझे मेरा कच्चा घर पक्का बनाना है, उसको वो मेरे जख्म दिखाई नहीं देते, उसको वो मेरे जख्म दिखाई नहीं देते, शायद उसका वो कोई बड़ा घराना है, शायद उसका वो कोई बड़ा घराना है। कि तेरी रूह से मेरी रूह का रिश्ता गहरा है, तेरी रूह से मेरी रूह का रिश्ता गहरा है, आज फिर से फिजाओं का रंग सुनहरा है, आज फिर से फिजाओं का रंग सुनहरा है, तू चाहती है कि मैं बांध के आऊं सहरा, तू चाहती है कि मैं बांध के आऊं सहरा, पर तेरे घर पर जमाने का सख्त पहरा, तेरे घर पर जमाने का सख्त पहरा है, ये बात तेरी कब समझ में आएगी, ये बात तेरी कब समझ में आएगी कि तेरे मेरे बीच बंदिशों का घना कोहरा है। तो अब इसके बाद मैं एक अपनी गजल लेता हूँ, उसका शीर्षक है जिंदगी। ऐ जिंदगी
0: स्वागत।
2: अब हो गई उससे हमारी सीधी यारी है, जिंदगी बता कितनी बची तेरी देनदारी है, जिंदगी बता कितनी बची तेरी देनदारी है, थपेड़े दिए हैं ए जिंदगी तूने बहुत हमको, थपेड़े दिए हैं ए जिंदगी तूने बहुत हमको, पर हमने भी कर ली पूरी तैयारी है, पर हमने भी कर ली पूरी तैयारी है, कुछ फासले तो जरूरी हैं बड़े लोगों से, कुछ फासले तो जरूरी हैं बड़े लोगों से, समुन्दर बना देता मीठे दरिया को खारी है,
1: क्या
2: समुन्दर बना देता मीठे दरिया को खारी है, जिंदगी बता कितनी बची तेरी देनदारी है, अपनी खुशियों को मांगते तुझसे ताम्र, अपनी खुशियों को मांगते तुझसे ताम्र, पर हमारी अपनी भी तो कोई खुददारी है, हमारी अपनी भी तो कोई खुददारी है, जिंदगी बता कितनी बची तेरी देनदारी है, ए जिंदगी हमें तो तेरी है जरूरत बहुत, ए जिंदगी हमें तो तेरी है जरूरत बहुत, पर हमें रुलाने की तेरी क्या लाचारी है, हमें रुलाने की तेरी क्या लाचारी है, जिंदगी बता कितनी बची तेरी देनदारी है, जीतना है बहुत जरूरी है जिंदगी तुझसे, जीतना है जरूरी है जिंदगी तुझसे, हारने के बाद तो तय मौत की सवारी है, हारने के बाद तो तय मौत की सवारी है।

0: बहुत सुंदर,
1: धन्यवाद। जिंदगी के विभिन्न पहलुओं को छूते हुए काव्य प्रस्तुति श्रीमान हेमंत जगदीश शर्मा जी द्वारा दी गई।
2: जी, अब कवि गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने बुलाने जा रहा हूँ श्री दिव्यांश दीपक जी, वो पेशे से शिक्षक हैं। दीपक जी,
0: बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अरण्य जगदीश जी, पहली बार मेरा आकाशवाणी में आगमन हुआ है। यहीं से शुरू करता हूँ कि बनाता हूँ तुम्हारी मैं चलो तस्वीर पानी में,
0: क्या बात,
1: बनाता हूँ तुम्हारी मैं चलो तस्वीर पानी में, तुम्हारे नाम का किस्सा जुड़ा होगा कहानी में, बनाता हूँ तुम्हारी मैं चलो तस्वीर पानी में, तुम्हारे नाम का किस्सा जुड़ा होगा कहानी में, सुना कर गीत गजलें मैं चला जाऊंगा लेकिन तुम, सुना कर गीत गजलें मैं चला जाऊंगा लेकिन तुम, मुझे रखना बसा कर अपने दिल की राजधानी में, मुझे रखना बसा कर अपने दिल की राजधानी में। और तमाम श्रोताओं से भी, आकाशवाणी के जितने भी श्रोता हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि हमारे सभी कवियों को अपने दिल में बसा कर रखिएगा, कि हमें रखना बसा कर अपने दिल की राजधानी में। और इसी का क्रम में चार पंक्तियां और निवेदित करता हूँ।
0: बहुत बहुत स्वागत।
1: पूरा विश्व अशांति के दौर से गुजर रहा है तो कहीं ना कहीं ये चार पंक्तियां प्रासंगिक हो उठती हैं। मैं चार पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि अगर मन से हमारे दूर हर छल छंद हो जाए, अगर मन से हमारे दूर हर छल छंद हो जाए, तो मुमकिन ही नहीं है फिर किसी में द्वंद हो जाए, अगर मन से हमारे दूर हर छल छंद हो जाए, तो मुमकिन ही नहीं है फिर किसी में द्वंद हो जाए, उस समूचे विश्व में आनंद ही आनंद हो जाए, समूचे विश्व में आनंद ही आनंद हो जाए, मनुजता यदि विचारों से विवेकानंद हो जाए, मनुजता यदि विचारों से विवेकानंद हो जाए, मनुजता यदि विचारों से विवेकानंद हो जाए। और एक गजल और आपके पेशे नजर,
0: स्वागत है।
1: कि जब से हुई है उसकी वफाएं मेरे खिलाफ, जब से हुई है उसकी वफाएं मेरे खिलाफ, चलने लगी है तब से हवाएं मेरे खिलाफ,
0: वाह वाह वाह,
1: जब से हुई है उसकी वफाएं मेरे खिलाफ, चलने लगी है तब से हवाएं मेरे खिलाफ, और चलने लगी है तब से हवाएं मेरे खिलाफ। और शेर कुछ यूं हुआ कि चलने लगी है तब से हवाएं मेरे खिलाफ, कि मैं उसकी मोहब्बत का तरफदार क्या हुआ, मैं उसकी मोहब्बत का तरफदार क्या हुआ, मैं उसकी मोहब्बत का तरफदार क्या हुआ, उठने लगी है सबकी सदाएं मेरे खिलाफ, मैं उसकी मोहब्बत का तरफदार क्या हुआ, उठने लगी है सबकी सदाएं मेरे खिलाफ, और जो है अमन पसंद मेरे साथ में रहे। बतौर खास शेर, जो है अमन पसंद मेरे साथ में रहे, जो है अमन पसंद मेरे साथ में रहे, जो है अमन पसंद मेरे साथ में रहे, नफरत पसंद शौक से जाए मेरे खिलाफ, नफरत पसंद शौक से जाए मेरे खिलाफ, नफरत पसंद शौक से जाए मेरे खिलाफ। और एक शेर कुछ यूं हुआ कि जिनको मेरे वजूद से नफरत है आजकल, जिनको मेरे वजूद से नफरत है आजकल, जिनको मेरे वजूद से नफरत है आजकल, रोका है किसने शौक से आए मेरे खिलाफ, रोका है किसने, जिनको मेरे वजूद से नफरत है आजकल, रोका है किसने शौक से आए मेरे खिलाफ, चलने लगी हैं तब से हवाएं मेरे खिलाफ। और एक शेर और बतौर खास कि रुका है किसने शौक से आए मेरे खिलाफ, कि रब की रजा नहीं है तो होगा ना कुछ मुझे,
0: क्या बात,
1: रब की रजा नहीं है तो होगा ना कुछ मुझे, साजिश कोई भी आप रचाएं मेरे खिलाफ, साजिश कोई भी आप रचाएं मेरे खिलाफ, और इल्जाम बेवफाई मेरे सर पे ना रखें, इल्जाम बेवफाई मेरे सर पे ना रखें, पुख्ता कोई सबूत भी लाए मेरे खिलाफ, इल्जाम बेवफाई मेरे सर पे ना रखें, पुख्ता कोई सबूत भी लाए मेरे खिलाफ, जब से हुई है उसकी वफाएं मेरे खिलाफ। और एक शेर कुछ यूं हुआ कि जिस दिन से मुझ पे आपकी नजरें करम हुई, जिस दिन से मुझ पे आपकी नजरें करम हुई, गुलशन में बन रही हैं फजाएं मेरे।

0: खिलाफ। जिस दिन से मुझ पे आपकी नजरें करम हुई, गुलशन में बन रही हैं फजाएं मेरे खिलाफ, और मक्ता हाजिर करता हूँ गजल का। दीपक मुझे बताइए कब तक मैं चुप रहूं, दीपक दीपक मुझे बताइए कब तक मैं चुप रहूं। बढ़ने लगी हैं उनकी जफाएं मेरे खिलाफ, बढ़ने लगी हैं उनकी जफाएं मेरे खिलाफ, और जब से हुई है उनकी वफाएं मेरे खिलाफ, चलने लगी हैं तब से हवाएं मेरे खिलाफ।
1: बहुत अच्छा।
0: और एक गीत हाजिर करता हूँ, अभी अभिलाषा जी ने एक बहुत शानदार गीत से शुरुआत की आज की इस काव्य गोष्ठी की, तो मुझे मेरा पुराना गीत याद आ रहा है, जब हम घोर निराशा के दौर में हो, तो ये गीत उन परिस्थितियों के लिए विशेष हो जाता है। मैं गीत हाजिर करता हूँ।
2: बहुत बहुत स्वागत है।
0: कि एक प्रण के दिए के सहारे सुनो, एक प्रण के दिए के सहारे सुनो, काली माँ ये निशा की सिमट जाएगी। एक प्रण के दिए के सहारे सुनो, काली माँ ये निशा की

0: रहे डगमगाती डगर तुम जिसे कह रहे, चल के देखो उसी पर नई लीक है। डगमगाती डगर तुम जिसे कह रहे, चल के देखो उसी पर नई लीक है। साध कर लक्ष्य अविराम चलते रहो, साध कर लक्ष्य अविराम
1: चलते
0: चलते
1: रहो।
0: रहो, जो है बाधा स्वयं

0: सुनो। अगला बंद देखें,
1: स्वागत है
0: कि फूल उपवन में फिर से खिलेंगे नए। एक बड़ा निराशावादी दौर आया जब कोरोना पीरियड था, कि फूल उपवन में फिर से खिलेंगे नए। आज पौधों पे पतझर हुआ है तो क्या फूल उपवन में फिर से खिलेंगे नए। आज पेड़ों पे पतझर हुआ है तो क्या

खेत कुछ दिन को बंजर हुआ है तो क्या लहलहाने लगेगी फसल प्यार की। खेत कुछ दिन को बंजर हुआ है तो क्या डोर उम्मीद की छोड़ना मत कभी, डोर उम्मीद की छोड़ना मत कभी, डोर उम्मीद की छोड़ना मत कभी। जाने कब किस की किस्मत पलट जाएगी, गीत आशा के तुम गुनगुनाते रहो। रात कितनी भी लंबी हो कट जाएगी, गीत आशा के तुम। गीत का अंतिम बंद रखता हूँ, मेरा प्रिय बंद है, शायद आप तमाम श्रोताओं को पसंद आया। अंतिम बंद रखता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। एक प्रण के दिए के सहारे सुनो, कि स्वर्ण ढलता है वो ही अलंकार में। रात दिन वक्त की मार जिसने सही, स्वर्ण ढलता है वो ही अलंकार में। रात दिन वक्त

मैं तप के जिस पे निखारा गया, भाल पर दुल्हनों के सजा है वही, इसलिए इसलिए इसलिए

से जो डरा उसकी कीमत जमाने में घट जाएगी। गीत आशा के तुम गुनगुनाते रहो, रात कितनी

0: बहुत बहुत
1: बहुत
0: धन्यवाद आप तमाम श्रोताओं का।
2: अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे। प्रतिभागी कवि थे श्रीमती अभिलाषा विनय, श्री हेमंत जगदीश शर्मा और श्री दिव्य हंस दीपक। गोष्ठी का संचालन कर रहे थे श्री दिव्य हंस दीपक। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अभी ही संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्रवण मीणा।
3: यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। लीजिए सबसे पहले सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाजों में फिल्म ताल का ये गीत।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यही समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। 8:45 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। विमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। अरब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरुत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खासतौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप पंथ को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा

0: नवाचार प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्वेक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
1: The world seeks trusted and reliable partners.
3: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
1: And a scale that few can match.
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
4: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूंगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: Kami saksikan orang jalur pasar kunci ini. Kami saksikan di lokasi ini memberi jasa panjang. Orang saya di www.a-corner.se.com.my. समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे। पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
2: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
0: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
3: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
4: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
0: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मानचिरस तालुका में मासवा पंडरपुर मार्ग पर तानुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे। इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वह डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 12 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें एनटीए की वेबसाइट nit.nta.nic.in से
5: डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनिता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार।

0: एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खासतौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। वाहन तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 173 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: गुड इवनिंग। दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। Headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation-level talks at historic Villa Carlos at Nice. Focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palada Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in the group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron held delegation-level talks at historic Villa Carlos at Nice in France. The discussions between two sides focused on expanding the special global strategic partnership between two countries across key sectors including defense, technology and trade. Prime Minister Modi was accompanied by the National Security Advisor Ajit Doval, External Affairs Minister S. Jaishankar, Foreign Secretary Vikram Misri and senior officials. President Macron was accompanied by French Minister for Europe and Foreign Affairs Jean-Noël Barrot and other senior officials. The two leaders also interacted during a walk and talk session at Villa Carlos. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Palada Expositions at Nice in France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. The flagship event being held under the India-France Year of Innovation brings together over 120 Indian startups and leading investors, technology leaders, and premier educational institutions from across the globe. It features innovations across 13 key sectors, including advanced computing, semiconductors, artificial intelligence, clean energy, and others. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi highlighted India's startup revolution by saying that the country's youth are developing solutions for global challenges in a number of areas.
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: Highlighting the strength of India-France ties, Mr. Modi said, while many nations engage in trade and strategic cooperation, only a few relationships are guided by a shared vision as well as common interests.
2: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
1: Addressing the gathering, French President Macron praised India's emergence as a global innovation powerhouse and said the question today is no longer whether India is innovating, but who will innovate with India.
3: A country with 1.4 billion inhabitants, a country who pays on know-how and research, knowledge and training as many engineers as Europe and

आदाब, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 9:17 हो चुके हैं और अब उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है। आप हमारी नशरियात समाप्त कर रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के जरिए और TD फ्री डिश पर। पेश है आज की इस तीसरी मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। अब से कुछ ही देर में प्रोग्राम 9:20 पर आप सुनेंगे एक फनकार गैर फिल्मी गजलों का ये प्रोग्राम, जिसके तहत आज आप सुनेंगे जगजीत सिंह की आवाज में निदा फाजली, जफर गोरखपुरी, मजरू सुल्तानपुरी, डॉक्टर बशीर बर्र की लिखी हुई गजलें। रात 9:45 पर खबरें नशर होंगी और 9:55 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम हेल्टिप्स के तहत पानी का तहफ्फुज और किफायती इस्तेमाल के उन्वान से एक तकरीर। रात 10 आप सुनेंगे मुशायरा और 10:30 पर नशर होगा आपका पसंदीदा फरमाइशी फिल्मी नामों का प्रोग्राम तामील इरशाद। इसी प्रोग्राम के दौरान रात 11 खबरें बर सगीर से नशर होंगी। रात 11:45 पर आप सुनेंगे कव्वालियां, जिसके तहत आज आप सुनेंगे हाजी इदरीस कुतुबी कव्वाल और साथियों की आवाज में कव्वालियां। रात 12 आलमी खबरें नशर होंगी और 12:10 पर आप सुनेंगे इंस्ट्रूमेंटल मौसीकी के प्रोग्राम के तहत उस्ताद विलायत खान का सितार पर बजाया हुआ राग गुन कल्याण। रात 12:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम आखिर शब के तहत फिल्मी नगमे और 12:50 पर खबरें नशर होंगी। रात 1 उर्दू सर्विस की आज की तीसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होंगी।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम एक फनकार। आइए इस प्रोग्राम के तहत सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में जफर गोरखपुरी और मजरू सुल्तानपुरी की लिखी हुई गजलें।

भारत के खलाई शोबे की कायापलट तब्दीली मुल्क भर में होने वाली वसीतर तब्दीली की अक्कासी करती है, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज से बाहर निकलकर कौमी शऊर का एक हिस्सा बन गई हैं। उन्होंने कहा कि हालिया वर्षों की इंतहाई नुमाया कामयाबियों में से एक साइंस और माशरे के दरमियान बढ़ता हुआ रबता है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर पेश आए एक हादसे में बच्चों समेत 8 अकीदतमंदों की सख्त मौत हो गई, जब उन्हें ले जाने वाली एक पिकअप गाड़ी सड़क के किनारे खाई में गिर गई। यह हादसा मलाशिरस तालुका में महासवर्ण पंढरपुर पर वाके तंदुलवाड़ी के करीब पेश आया। अकीदतमंदों का ताल्लुक पंढरपुर तालुका के रंजनी गांव से है और ये सब सिद्धनाथ मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद वापस आ रहे थे। जख्मियों को इलाज के लिए पंढरपुर मुंतकिल किया गया है। इस दौरान महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस अलमनाक हादसे पर दुख का इजहार किया है। इसके साथ उन्होंने महलूकिन के लवाखिन के लिए 5-5 लाख रूपये माली मदद का ऐलान किया है। ओमान में भारतीय सफारतखाने ने कहा है कि भारतीय परचम बरदार तजारती जहाज विराट 1 के तमाम 14 भारतीय अमले के अफराद को बचा लिया गया है। इस जहाज के इंजन में ओमान के साहिल के करीब खराबी हो गई। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में सफारतखाने ने कहा कि अमले के अफराद महफूज हैं और सेहतमंद हैं, उन्हें दूसरे जहाज एमवी जबल अली 9 पर पहुंचा दिया गया है। सफारतखाने ने मजीद कहा कि अमले के अफराद मुंबई के लिए रवाना किए जा रहे हैं। ईरान ने कहा है कि उसने उस मुजव्वजा मुफाहमतनामे से मुतअल्लिक अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया है, जिसका मकसद अमरीका और इसराइल के साथ कशीदगी खत्म करना है। ईरानी मीडिया ने कहा कि वह भी मुजव्वजा मुआहदे का सियासी, कानूनी और तकनीकी एतबार से जायजा ले रहा है। इस दरमियान कतर का एक वक्त ईरानी हुकाम से सलाह मशवरा करने और ईरान और अमरीका के दरमियान सिफारती तबादलों की राह हमवार करने की गरज से तेहरान पहुंचा है। यह पेशरफ्त ऐसे वक्त हुई है जबकि मुजाकरात जारी हैं। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द ही एक माहदा तय पा सकता है। ईरानी हुकाम इस वक्त मोहतात रद्दमल जाहिर कर रहे हैं, जबकि मुजव्वजा माहदे के खिलाफ ईरान के शहर मशहद में एहतजाज की रिपोर्टें मौसूल हुई हैं। इसराइल की फौज ने आज ऐलान किया कि उसने हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए लेबनान की राजधानी पर हमले किए हैं। इसराइली वजीर आजम के दफ्तर ने कहा कि हमले शुमाली इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए हैं। एनटीए ने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट यूजी के दोबारा इम्तिहानात के वास्ते नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in से उन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। दोबारा इम्तिहानात इस महीने की 21 तारीख को दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक होंगे। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल शुमाल मशरकी भारत और मगरबी बंगाल में शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने कहा है कि महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार और जनूबी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में अगले चार पांच दिनों के दौरान जनूब मगरबी मानसून की पेशकदमी करने के लिए हालात साजगार हैं, जबकि अगले 2 दिनों के दौरान मराठवाड़ा में शदीद गर्मी के हालात रहेंगे। क्रिकेट में खवातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए के इफ्तिताही मैच में बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारत ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 171 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक पाकिस्तान ने 10 ओवर्स में 3 विकेट पर 72 रन बना लिए थे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अमेरिका के ह्यूस्टन में ग्रुप ई के मैच में जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा। भारतीय वक्त के मुताबिक यह मैच आज रात 10:30 बजे खेला जाएगा। डलास में ग्रुप एफ के मैच में दूसरा मुकाबला नीदरलैंड्स और जापान के दरमियान होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 1:30 पर खेला जाएगा। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ कलीदी शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान खसूसी आलमी जामे शराकतदारी को तोसी देने पर तवज्जो मरकूज की। दोनों लीडरों ने पैलाइस डेस एक्सपोजिशंस में भारत इनोवेट्स का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। भारत की खलाई मईशत अगली 2 दहाई में मौजूदा 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक खाई में गाड़ी के गिरने से 8 यात्री हलाक हो गए। ओमान साहिल के करीब एक जहाज से इंजन खराब होने के बाद अमले के तमाम 14 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है। और क्रिकेट में बर्मिंघम में ICC खवातीन के T20 आलमी कप के ग्रुप मरहले के मैच में

0: भारत ने पाकिस्तान के लिए 171 रन का जीत का निशाना रखा है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम हेल्थ टिप्स। हेल्थ टिप्स में आज का मौजू है पानी का तहफ्फुज और किफायती इस्तेमाल। आइए सुनते हैं इस उन्वान के तहत कुछ जरूरी बातें।
1: सामईन, आबादी में इजाफे की वजह से जिंदगी के जिन वसाइल पर दबाव बढ़ा है उनमें पानी भी शामिल है। ट्यूबवेलों की अफराद की वजह से जेर जमीन पानी की सतह नीची होती जा रही है, जिसके नतीजे में कुओं और बावलियां खुश्क होती जा रही हैं। इन हालात की वजह से पीने के पानी की किल्लत एक संगीन बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। बहरहाल दुनिया भर में इस मसले को हल करने के लिए कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। खुद अक्वामे मुत्तहिदा ने पीने के साफ पानी की फरहमी के लिए एक बाकायदा प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। आज की बातचीत में हम इस सवाल का जायजा लेंगे कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में इस मसले का हल करने के लिए किस तरह की कोशिशें हो रही हैं। गांधी पीस फाउंडेशन से वाबस्ता जनाब अनुपम मिश्र मेहमान के तौर पर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जनाब अनुपम मिश्र पिछले 30 साल से इस फाउंडेशन में हैं और बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ हैं। इनकी एक किताब आज भी खड़े हैं तालाब बहुत मशहूर है। जनाब मिश्र, हम आपको खुशामदीद कहते हैं और सबसे पहले जो सवाल हमारे जहन में आ रहा है, आखिर पीने के पानी की किल्लत इससे पहले कभी नहीं हुई, आज इतनी ज्यादा क्यों हो गई है?
2: जी बिल्कुल, इसको बहुत एक आसान तरीके से समझना चाहिए कि कुदरत का पानी का खेल है क्या। हर जगह कुदरत पानी गिराती है
1: जी,
2: न वो अमीर देखती है न गरीब देखती है, न वो किसी मुल्क की सीमा देखती है कि यहां तक इसकी है तो इधर गिराएं उसके बाद वीसा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। सब जगह सबको भरोसे से पानी देती है। ये जरूर है कि कहीं बादल कम आते हैं कहीं थोड़े ज्यादा आते हैं, उस मुताबिक कहीं पानी ज्यादा गिरता है कहीं कम गिरता है। लेकिन हमारे समाजों ने इस बात का ध्यान रखा था बहुत समझदारी से कि कुदरत ने उसको जितना बटुआ दिया है पानी का, उसके घड़े में जितना पानी दिया उस हिसाब से वो उसका इस्तेमाल करता था। अभी पिछले 150 साल में कुछ हमारे मन में ऐसा घमंड आ गया कि साइंस कह लीजिए तरक्की कह लीजिए, हम हर जगह पानी को एक सा इस्तेमाल करने लग गए। इसके लिए हमारे हाथ में एक नया खिलौना आया, उसको हम ट्यूबवेल कह सकते हैं। बिजली आ गई तो बेशुमार हम पानी बाहर निकालने लगे। इसको और एक आसान तरीके से समझना चाहिए कि जैसे बचपन में हम लोग मिट्टी की गुल्लक में एक पैसा दो पैसा दादा ने दिया नानी ने दिया सब इकट्ठा करते थे और जरूरत पड़ने पर उसको तोड़कर उसमें से निकालते थे। तो ये पूरी जो धरती है ये मिट्टी की एक बड़ी गुल्लक है। इसमें कुदरत हमको कहती है कि पैसा डाल दो पानी डाल दो, उतना ही हम निकाल सकते हैं जितना डाला है
1: जी।
2: लेकिन ये ट्यूबवेल बिजली, कई जगह आप जानते हैं कि सियासी कारणों से मुफ्त बिजली दे देते हैं किसान को या मुझको, तो मैं बिना परवाह किए दिन रात पानी निकाल के फेंकने लगा और मैंने ये माना कि ये मेरी सब चीजों का हल हो गया, इसमें से अब मेरा जीवन बड़ा आसान हो गया जिंदगी। लेकिन अब पता चल रहा है कि इस रद्दी आदत के कारण हम सबकी जिंदगी खतरे में पड़ गई है और ये खतरे की घंटी बार बार कुदरत बजा के कह रही है। कभी अकाल के रूप में वो हमको चेत एक तरह से वार्निंग देने आती है कि भाई संभल जाओ
1: जी,
2: अब कुछ ठीक से बर्ताव करो, तो वो हम उसकी बात को समझ नहीं पा रहे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये गुल्लक का मन में इज्जत बढ़नी चाहिए कि इसमें हम 10 बूंदे इकट्ठी करें और उसका खर्च भी किफायत से करें। ये गुल्लक इसलिए नहीं है कि 10 बूंद इकट्ठी करके हम उसको बहा दें
1: जी, जी।
2: तो दोनों चीजें उसमें आनी चाहिए कि रोकने में भी पूरी इज्जत हो इस कुदरत के इस खेल की और उसके खर्च करने में भी
1: जी, जी। पहले हमारे रिवायती मसाइल थे जैसे कुएं थे, हमारे बावलियां थी, उसका चलन अब बिल्कुल खत्म हो गया और अब तो कहीं नजर ही नहीं आती
2: जी।
1: तो उससे ये होता था कि उन बावलियों में जो पानी होता था वो थोड़ा बहुत स्टोर रहता था और हमें मिलता रहता था, तो इसका चलन बिल्कुल नजर क्यों नहीं आ रहा
2: है? जी होता ये है कि एक किसी खास दौर में कुछ नई चीजें आ जाती हैं तो पुरानी चीजें थोड़ी पीछे हो जाती हैं, ये इतनी बात समझ में आ सकती, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुरानी सब कुछ बेकार है और उनको

0: सबको लपेट के रख दो
1: जी।
0: तो हुआ ये कि तालाब कुएं बावड़ी ये सब कुदरत के पानी को रोकते भी थे और हमारे जमीन के जो नीचे का खजाना है उसको बढ़ाते थे। अभी हमने केवल दूसरी तरफ की चीज अपनाई ट्यूबवेल, तो ये पानी उलीचने का कारण है
1: जी जी,
0: उसका औजार है, पानी इकट्ठा करने का नहीं है। तो हमने इकट्ठा करना बंद कर दिया, तालाब बावड़ी कुएं वगैरह में से हम इस तरह से इकट्ठा करते थे, उसको किफायत से इस्तेमाल करते थे। अभी हमारा ध्यान केवल खर्च पे चला गया, जिसको बहुत कई बार लोग इसको सुनते हैं कि भाई जैसे आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो गया हमारा, तो हम भीतर की आमदनी बढ़ा नहीं रहे और खर्च हम रुपए से भी ज्यादा करते जा रहे हैं। आज 1.25 रुपया हो जाएगा, 1.5 रुपया, इसके बाद हमें ये कुदरत बख्शेगी नहीं।
1: तो इसके लिए तो हमें कुछ इकदाम उठाने पड़ेंगे।
0: आपने ठीक कहा, इसलिए हमको कुदरत कभी ये छूट नहीं देती कि कोई नई चीज है कि पुरानी है। देखिए, एक बात हमको दोहरा लेनी चाहिए कि लाखों साल में कुदरत ने पानी गिराने का तरीका नहीं बदला
1: जी,
0: इसलिए हम रोकने का तरीका नहीं बदल सकते। और कई चीजें जिंदगी में बदलती हैं, फैशन बदलती, कपड़े बदलते, खान पान बदलता, तो उसमें सब तरह की चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन पानी गिराने का तरीका कुदरत न बदले तो वैसे ही तालाब फिर से बनाइए, वैसे ही बावड़ियां बनाइए, उसको डिलीवर करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग कीजिए, ट्यूबवेल का कीजिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन केवल यही चीजों के भरोसे अगर हम रहेंगे तो धोखा खाएंगे। जो
1: सामिन अभी आप सुन रहे थे पानी का तहफ्फुज़ और किफायती इस्तेमाल के हवाले से अनुपम खेर की आवाज में उनकी जुबानी समाप्त कर रहे थे कुछ जरूरी बातें। इसी के साथ प्रोग्राम एल्टेप सब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, आइए सुनते हैं मुशायरा।
2: मोहतरम सामिन इकराम, अबरार के उसपुरी का आजाद। आज की शेरी नशस्त में जो शोरा ग्राम शिरकत फरमा रहे हैं उनके इस्माइल ग्रामी हैं जनाब इमरान अजीम, जनाब बिस्मिल्लाह रफी, जनाब अनवर बारी और ये खाकसार अबरार कैरतपुरी। आइए शेरी नशस्त का आगाज नौजवान शायर जनाब इमरान अजीम के कलाम से करें। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब इमरान अजीम से तशरीफ लाएं।
1: आइए इमरान साहब,
3: गजल का मतलब अर्ज कर रहा हूँ। अबरार साहब मुलाहजा फरमाइए। यास के अंधेरे में आस का सवेरा मैं, तेरी प्यासी धरती पर अब्र हूं घनेरा मैं। यार तेरी आंखों में गुम हुई मेरी आंखें, यार तेरी आंखों में गुम हुई मेरी आंखें, हुस्न तेरा मस्कन है इश्क का बसेरा मैं।
2: वाह भाई, क्या कहने क्या कहने, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह।
3: बात को देखिए बिस्मिल साहब, उम्र भर इशारे पर रक्स तुझको करना है, उम्र भर इशारे पर रक्स तुझको करना है, देख मेरी नागिन तू और तेरा सपेरा मैं, देख मेरी नागिन तू और तेरा सपेरा मैं, है मजा रिफाकत में दुश्मनी में रखा क्या, है मजा रिफाकत में दुश्मनी में रखा क्या, तू भी अब मेरा हो जा हो गया हूँ तेरा मैं, तू भी अब मेरा हो जा हो गया हूँ तेरा मैं, मेरे चाहने वाले मुझको लेने खुद आए। अबरार साहब शेर देखिए आप खास तौर से, मेरे चाहने वाले मुझको लेने खुद आए, शहर में कहाँ जाता ढूंढने बसेरा में, शहर में कहाँ जाता ढूंढने बसेरा में, मैं हूँ उनका मोहसिन भी काम उनके आता हूँ, मैं हूँ उनका मोहसिन भी काम उनके आता हूँ, फिर भी एरा गैरा में फिर भी नत्थू खैरा में, फिर भी एरा गैरा में फिर भी नत्थू खैरा में।
2: क्या कहने हैं क्या कहने
3: हैं। और मख्तार्ज कर रहा हूँ, रास्ते अजीम उसके आबलो से वाकिफ हैं, रास्ते अजीम उसके आबलो से वाकिफ हैं, घूमता जो फिरता है आजकल टवेरा में, घूमता जो फिरता है आजकल टवेरा में, यास के अंधेरे

0: में आस का सवेरा में तेरी प्यासी धरती पर अब्र हूं घनेरा में। और बिस्मिल भाई इस गजल का मतलब देखिए, दिल्ली का बशर क्या है सकूं उसको नहीं है, दिल्ली का बशर क्या है सकूं उसको नहीं है, एक बात अजब सर है कहीं पांव कहीं है, एक बात अजब सर है कहीं पांव कहीं है, और मरते हैं तो आगोश में सोते हैं उसी की, मरते हैं तो आगोश में सोते हैं उसी की, हां मां की मोहब्बत के बराबर ये जमी है, हां मां की मोहब्बत के बराबर ये जमी है। और ये देखिए अब्दार साहब, सर अपना झुकाए तो झुकाए वो कहां तक।
1: वाह बहुत खूब बहुत खूब, क्या कहने क्या कहने हैं, वाह।
0: सर अपना झुकाए तो झुकाए वो कहां तक, दर्द तो है बहुत सारे मगर एक जबी है, दर्द तो है बहुत सारे मगर एक जबी है, और शोले से खसो खाक का रिश्ता है अनोखा। अबरार भाई ये देखिए, शोले से खसो खाक का रिश्ता है अनोखा, माना के जमा मैं भी हूं और वो भी हंसी है, माना के जमा मैं भी हूं और वो भी हंसी है, और पैदा भी किया उसने वही रिस्क भी देगा, पैदा भी किया उसने वही रिस्क भी देगा, मैं खाक का जर्रा हूं मुझे उस पे यकीन है, मैं खाक का जर्रा हूं मुझे उस पे यकीन है, पैदा भी किया उसने वही रिस्क भी देगा, मैं खाक का जर्रा हूं मुझे उस पे यकीन है, और एक नाम दिया मुझको ये एहसान है उसका, एक नाम दिया मुझको ये एहसान है उसका, सर पर है फलक पांव के नीचे ये जमी है, एक नाम दिया मुझको ये एहसान है उसका, सर पर है फलक पांव के नीचे ये जमी है। और मख्तर्ज कर रहा हूं, सरगर्म सफर रहने की करता था जो तलकीन, सरगर्म सफर रहने की करता था जो तलकीन, सुनते हैं अजीम अब वो बहुत गोशा नशी है।
1: बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब भाई, क्या वाह, क्या कहने हैं क्या कहने हैं,
2: वाह क्या
3: वाह। अभी जनाब इमरान अजीम अपना कलाम पेश कर रहे थे, आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं, और मैं जनाब बिस्मिल्लाह रफी साहब से दरख्वास्त करूं कि वो अपने कलाम से सामईन को महसूस फरमाएं। जनाब बिस्मिल्लाह रफी
1: जी,
2: एक गजल और मतला एक शेर पहले समाप्त करें। वो मेरे ख्वाब की ताबीर करता रहता है,
1: मेरे ख्वाब की ताबीर करता,
2: वो मेरे ख्वाब की ताबीर करता रहता है,
1: वाह,
2: खुद अपने आप को जंजीर करता रहता है, नवाजिश, वो मेरे ख्वाब की ताबीर करता रहता है, खुद अपने आप को जंजीर करता रहता है, अब कलम उठाने की तहरीक भी उसी ने दी,
1: कलम उठाने की तहरीक भी उसी ने दी,
2: कलम उठाने की तहरीक भी उसी ने दी, और अब वही है कि ताजीर करता रहता है, कलम उठाने की तहरीक भी उसी ने दी, और अब वही है कि ताजीर करता रहता है। नवाजिश, एक मतला और एक शेर आप देखें,
1: क्या कहने हैं,
2: कि रोशनी का सुराग मिल जाए,
3: रोशनी का सुराग मिल जाए,
2: रोशनी का सुराग मिल जाए, गुमराही को चिराग मिल जाए,
1: क्या कहने,
2: रोशनी का सुराग मिल जाए, गुमराही को चिराग मिल जाए, आगही कर दुआ मेरे हक में, दिल के बदले दिमाग मिल जाए, आगही कर दुआ मेरे हक में, दिल के बदले दिमाग मिल जाए। मतलब और एक शेर और समाप्त करें
1: जी, इरशाद,
2: कि यहाँ नहीं न सही,
3: यहाँ नहीं न सही
2: पर कहीं तो हो जाए,
1: अरे वाह क्या मिसरा, वाह वाह वाह वाह,
2: यहाँ नहीं
3: न सही,
1: हाँ सही
2: पर कहीं तो हो जाए,
3: कहीं तो हो जाए,
2: हवस जहाँ की नहीं है जमी तो हो जाए,
1: क्या बात है, क्या कहने हैं क्या कहने, वाह वाह वाह,
2: यहाँ नहीं न सही पर कहीं तो हो जाए, हवस जहाँ की नहीं है زمین تو ہو جائے.

0: मैं अपने सारे तकाजों को ताक पर रख दूं, मैं अपने सारे तकाजों को ताक पर रख दूं, कोई किसी का नहीं है यकीन तो हो जाए। मैं अपने सारे तकाजों को ताक पर रख दूं, कोई किसी का नहीं है यकीन तो हो जाए। नमाज कोई किसी का नहीं है यकीन तो हो जाए।
1: सुभान अल्लाह।
0: और गजल का मतलब देखें,
2: कि
0: तुम आंखों को दरीचा, दिल को दरिया,
1: वाह
0: कैसे करते हो।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तुम आंखों को दरीचा,
2: दिल
0: को दरिया कैसे करते हो, बताओ बैठे बैठे ये करिश्मा कैसे। तुम आंखों को दरीचा, दिल को दरिया कैसे करते हो, बताओ बैठे बैठे ये करिश्मा कैसे करते हो। और शेर पर तवज्जो चाहूंगा कि बड़े उशाक ठहरे तुम कहो तारीख रातों में,
1: बड़े
0: उशाक ठहरे तुम,
1: बड़े उशाक ठहरे तुम
0: कहो तारीख रातों में, मयस्सर जब न हो यादें उजाला कैसे
2: करते
1: हो।
0: मयस्सर जब न हो यादें उजाला कैसे करते हो, नजर पतवार पर रखते हो के मौजे तलातुम पर। नजर पतवार पर रखते हो के मौजे तलातुम पर, हवा जब जिद पे आ जाए किनारा कैसे करते हो।
1: बात है,
0: हवा जब जिद पे आ जाए किनारा कैसे करते हो। और आखिरी शेर पर तवज्जो चाहूंगा कि हुनर ये भी बहुत कुछ झेलने के बाद आता है।
2: हुनर ये भी बहुत कुछ झेलने के बाद आता है।
0: हुनर ये भी बहुत कुछ झेलने के बाद आता है। समझता हूँ कि जुगनू को सितारा कैसे
1: करते,
0: समझता हूँ जुगनू को सितारा कैसे करते हो। और दूसरी गजल का मतलब समाप्त करें, कोई मौसम हो बदलता नहीं मंजर साई।
1: अच्छा,
2: मौसम हो बदलता नहीं,
0: कोई मौसम हो बदलता नहीं मंजर साई, हो गया आके तेरे शहर में पत्थर साई। कोई मौसम हो बदलता नहीं मंजर साई,
1: अच्छा है,
0: हो गया आके तेरे शहर में पत्थर साई।
2: अच्छा,
0: और एक मेरे नाम नहीं तेरी सखावत वरना।
2: अच्छा, मेरे नाम नहीं,
0: एक मेरे नाम नहीं तेरी सखावत वरना, जगमगाता है करिश्मा तेरा दर दर साई। एक मेरे नाम नहीं तेरी सखावत वरना, जगमगाता है करिश्मा तेरा दर दर साई। कोई कुछ भी न कहे शहरे अदावत ही सही,
2: कोई कुछ भी न कहे शहरे अदावत।
0: भाई इस पर तवज्जो चाहूंगा, कोई कुछ भी न कहे शहरे अदावत ही सही, हम तो आबाद हुए हैं यहाँ लुटकर साई। कोई कुछ भी न कहे शहरे अदावत ही सही, हम तो आबाद हुए हैं यहाँ लुटकर साई। और अब तो महसूस ये होता है कि मंजिल है करीब,
2: महसूस ये होता है कि मंजिल है करीब,
0: तो महसूस ये होता है कि मंजिल है करीब, रास्ता ऐसा नहीं होता मुनव्वर साई। अब तो महसूस ये होता है कि मंजिल है करीब, रास्ता ऐसा नहीं होता मुनव्वर साई। आखिरी शहर के शहर का शहर हुआ जाता है कैसे सहरा,
2: शहर का शहर हुआ जाता है कैसे सहरा,
0: शहर का शहर हुआ जाता है कैसे सहराब, कौन आया है यहाँ लेके समुंदर साई। शहर का शहर यहाँ हुआ जाता है कैसे सहराब, कौन आया है यहाँ लेके समुंदर साई। कोई मौसम हो बदलता नहीं मंजर साई, हो गया आके तेरे शहर में पत्थर
2: साई। शहर का शहर हुआ जाता है कैसे सहराब, कौन आया है यहाँ लेके समुंदर। जनाब बिस्मिल आरिफी अपना कलाम पेश फरमा रहे थे। आइए अब जनाब अनवर बारी साहब से दरख्वास्त करें कि वो अपने कलाम से सामईन को महसूस फरमाएं। जनाब अनवर बारी,
1: गजल का मतला समाप्त फरमाएं।
2: इरशाद
1: अबा भाई, मतला है कि अजियतें हमें मिलकर रही मुकद्दर की,
2: अजियतें हमें मिलकर रही मुकद्दर की,
1: अजियतें
2: हमें
1: मिलकर रही मुकद्दर की, सिसकती रह गई तदबीर जिंदगी भर की।
2: क्या बात
0: है,
1: अजियतें हमें मिलकर रही मुकद्दर की, सिसकती रह गई तदबीर जिंदगी।

0: भर की, उसने मतलब देखिए कि हवस निकाल दो सर से पराए सागर की।
1: वाह,
0: हवस निकाल दो
1: क्या बात,
0: सर से पराए सागर की, तुम्हारे पास पहुंच जाएगी मुकद्दर की।
2: क्या बात है,
0: हवस निकाल दो सर से पराए सागर की,
2: बहुत अच्छा शेर है,
0: तुम्हारे पास पहुंच जाएगी मुकद्दर की। और शेर देखिए, अभी मैं किस तरह अपनी तलाश में निकलूं,
2: अभी मैं किस तरह अपनी तलाश
0: अभी मैं किस तरह अपनी तलाश में निकलूं, फजा नहीं है अभी साजगार बाहर की।
2: क्या बात है,
0: अभी मैं किस तरह अपनी तलाश में निकलूं,
2: वाह वाह वाह,
0: फजा नहीं है अभी साजगार बाहर की। और ये भी एक शेर देखिए अब्रार साहब, बिस्मिल साहब ये देखिए कि वो एक नक्श था पानी का धूप की जद में,
2: वो एक नक्श था पानी का जद में,
0: पानी का धूप की जद में,
1: क्या बात,
0: समझ रहे थे जिसे हम लकीर पत्थर की।
1: वो
0: एक नक्श था पानी का धूप की जद में, वो एक नक्श था पानी का धूप की जद में, समझ रहे थे जिसे हम लकीर पत्थर की। और ये भी शेर देखे कि इरादा उसका न था आसमां पे उड़ने का, इरादा उसका न था आसमां पे उड़ने का, जमीन पांव के नीचे से किस तरह सरकी।
1: क्या बात है भाई,
0: इरादा उसका न था आसमां पे उड़ने का, इरादा उसका न था आसमां
2: पे उड़ने का,
0: जमीन पांव के नीचे से किस तरह सरकी।
1: क्या बात है,
0: और ये गजल का आखिरी शब्द देखिए कि लिबास उसके बदन पर है कीमती लेकिन,
2: लिबास उसके बदन पर है कीमती लेकिन,
0: बदन पर है कीमती लेकिन सड़क पे ठोकरे खाती है आबरू घर की। लिबास उसके बदन पर है कीमती लेकिन,
1: क्या हालात है हजरत,
0: लिबास उसके बदन पर है कीमती लेकिन सड़क पे ठोकरे खाती है आबरू घर की, अजियतें हमें मिलकर रही मुकद्दर की, सख्ती रह गई तकबीर जिंदगी भर की। दूसरे गजल का
2: फरमाएं,
0: एक गजल का मतला
1: जी
0: खिदमत है, मतला है कि रुख तेरे सोचने का बदला क्यों,
2: रुख तेरे सोचने का बदला क्यों,
0: रुख तेरे सोचने का बदला क्यों, तू मेरा नाम सुन के चौंका क्यों।
2: बहुत अच्छा है,
1: क्या सादगी,
0: तेरे सोचने का बदला क्यों, रुख तेरे सोचने का बदला क्यों,
2: मेरा नाम सुन के चौंका,
0: मेरा नाम सुन के चौंका क्यों।
2: बहुत अच्छा,
0: और ये भी खासतौर अबरार साहब से देखिए कि घर की दीवारें हो गई ऊंची,
2: घर की दीवारें हो गई,
0: घर की दीवारें
1: हो गई
0: ऊंची, तुमने बाहर का ख्वाब देखा क्यों, घर की दीवारें हो गई ऊंची,
2: भाई बहुत अच्छा है,
0: तुमने बाहर का ख्वाब
2: देखा क्यों,
0: देखा क्यों। और शेर देखिए कि लफ्ज क्यों बुन रहे हैं आवाजें,
2: क्यों बुन रहे हैं
0: लफ्ज, क्यों बुन रहे हैं आवाजें, सांस लेने लगा अंधेरा क्यों, लफ्ज क्यों बुन रहे हैं आवाजें, सांस लेने लगा अंधेरा क्यों। और ये भी खासतौर से शेर देखिए कि लोग पहले ही बदगुमा कम थे, लोग पहले ही बदगुमा कम थे, तुमने मेरा मिजाज पूछा क्यों, लोग पहले ही बदगुमा कम थे,
2: बहुत अच्छा है,
0: लोग पहले ही बदगुमा कम थे, तुमने मेरा मिजाज
2: पूछा
0: क्यों। और फिर देखिए कि जिसने घर ही हमारा फूंक दिया,
2: जिसने घर ही हमारा फूंक दिया,
0: जिसने घर ही हमारा फूंक दिया, तुमने ऐसा दिया जलाया क्यों।
2: बहुत अच्छा है,
0: जिसने घर ही हमारा फूंक दिया,
2: तुमने ऐसा दिया जलाया क्यों,
0: दिया जलाया क्यों। और इसे देखिए, जिस्म तो धूप से जलेगा ही, जिस्म तो धूप से जलेगा ही, तुमने साया शजर का बेचा क्यों।
2: बहुत अच्छा,
0: जिस्म तो धूप से जलेगा ही, तुमने साया शजर का बेचा क्यों। और इस गजल का आखिरी शेर, बात कमजोर अगर न करते आप, बात कमजोर अगर
2: न करते
0: न करते आप, होता मजबूरियों का सौदा क्यों।
2: बहुत अच्छा है,
0: बात कमजोर अगर न करते आप, होता मजबूरियों का सौदा क्यों।
2: वाह वाह,
0: अगर इजाजत हो तो दो चार शेर और गजल के पढ़ू।
2: हाँ, अता फरमाएं, अता फरमाएं।
0: गजल के और चंद शेर समाप्त फरमाएं
2: जी, अता फरमाएं।
0: मतलब देखिए आप अबरार भाई
2: जी,
0: मतलब कि हमेशा जिसने उजालों के तश्त बांटे हैं,
2: हमेशा जिसने उजालों के तश्त बांटे हैं,
0: हमेशा जिसने उजालों के तश्त बांटे हैं, हम ऐसे चांद के रुसवा शुदा अंधेरे हैं। हमेशा जिसने उजालों के तश्त बांटे हैं, हम ऐसे चांद के रुसवा शुदा अंधेरे हैं। और जैसे देखिए, तुम अपनी नजरों को कुछ और मुतवर कर लो,
2: तुम अपनी नजरों को कुछ और मुतवर कर लो,
0: कुछ और मुतवर कर लो, उसे एक चेहरे के पीछे बहुत से चेहरे हैं। तुम अपनी नजरों को कुछ और मुतवर कर लो, उसे एक चेहरे के पीछे बहुत से चेहरे हैं।

0: ये भी शेर देखिए कि न जाने कौन से आलम में खोए रहते हो,
1: न जाने कौन से आलम में खोए रहते हो,
0: आलम में खोए रहते हो, तुम्हारी नींद है सच्ची न ख्वाब सच्चे है, न जाने कौन से आलम में खोए रहते हो,
1: तुम्हारी नींद ही सच्ची,
0: तुम्हारी नींद है सच्ची
1: न ख्वाब
0: न ख्वाब सच्चे है। और इसे देखिए कि नजर को दावत नजारा क्यों नहीं देते,
1: नजर को दावत नजारा क्यों नहीं देते,
0: नजर को दावत नजारा
2: क्यों नहीं
0: देते, वही शजर वही मौसम वही परिंदे हैं, नजर को दावती नजारा क्यों नहीं देते, नजर को दावती नजारा क्यों नहीं देते, वही शजर वही मौसम वही परिंदे हैं। और एक शेर इस पे नात का आज्ञादार साहब देखिए, कोई अदा तो है उनमें खुदाए बरतर की,
1: कोई अदा तो है उनमें खुदाए बरतर,
0: कोई अदा तो है उनमें खुदाए बरतर की, जो उनके हल्का खुदाम में फरिश्ते हैं,
2: क्या बात है भाई,
0: कोई अदा तो है उनमें खुदाए बरतर की,
1: वाह,
0: जो उनके हल्का खुदाम में फरिश्ते हैं। और ये भी शेर देखिए, न जाने कब ये समाज से हो गए महरूम,
1: न जाने कब ये समाज से हो गए महरूम,
0: न जाने कब ये समाज से हो गए महरूम, न जाने कौन सी दुनिया के रहने वाले हैं, न जाने कौन सी दुनिया के रहने वाले हैं। और ये भी शेर देखिए आपके, कदम कदम इन्हें इतना संभालते क्यों हो,
1: कदम कदम इन्हें इतना संभालते,
0: कदम इन्हें इतना संभालते क्यों हो, ये कपड़े तुमने जो पहने हुए हैं किसके हैं, ये कपड़े तुमने जो पहने हुए हैं
1: भाई, ये भी अच्छा पहने
0: हुए हैं। और ये गजल का आखिरी शेर देखिए, ये भी बहुत सच्चाई है, इसमें देखिए आप अबरार भाई के वो लफ्ज, इसे देखिए कि बहुत से लोग हैं अब उनके दावेदारों में,
1: बहुत से लोग हैं अब उनके दावेदारों में,
0: बहुत से लोग हैं
2: अब उनके
0: दावेदारों में, वो लफ्ज तुमने जो बाजार से खरीदे हैं, बहुत से लोग हैं अब उनके दावेदारों में, वो लफ्ज तुमने जो बाजार से खरीदे हैं, हमेशा जिसने उजालों के तश्त बांटे हैं, हम ऐसे चांद के रुस्वा शुदा अंधेरे हैं।
1: वाह वाह,
0: शुक्रिया,
1: बहुत हसीन अशआर आप समाज फरमा रहे थे जनाब अनवर बारी साहब से। आइए अब मैं अबरार के पुरी चंद अशआर हाजिर करने की
0: बिस्मिल्ला
1: आदत हासिल करूं
2: जी,
0: अता कीजिए,
1: मतला नजर समाज है

0: क्या कहने हैं क्या कहने हैं।
1: तू सुखन सुखन में है जो फिशां,
0: क्या कहने हैं।
1: है गजल गजल में तेरा बयां, ये अजीम फिक्र का फैज है,
0: क्या कहने
1: है? ये हसीन ख्याल की बात,
0: क्या कहने, क्या कहने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।

0: कहीं बेपनाह
1: कहीं भी पनाह
0: मसर्रतें,
1: मसर रहते हैं।
0: तो कहीं मलाल की
1: नाइट करें। वाह वाह,
0: पूछा जब निजाम जमाना है,
1: बहुत अच्छा है।
0: मुतजाद इसका फसाना है।

0: वाह, मुतन सामीन, इसी के साथ ये शेरी नशिस्त इख्तिताम को पहुंचती है। इस शेरी नशिस्त में जिन शोरा ने अपना कलाम पेश किया उनके अस्माए गिरामी हैं जनाब इमरान अजीम, जनाब बिस्मिल्ला रफी, जनाब अनवर बारी और ये खासदार अबरार केतपुरी।
1: सामीन, अभी आप सुन रहे थे मुशायरा, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आप हमारी नशियात समाप्त कर रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के जरिए और DD फील्ड डिश पर।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है आपका पसंदीदा फरमाइशी फिल्मी लहमों का प्रोग्राम तामील इरशाद। सामिन की खिदमत में मेजबान मोहम्मद शाहरुख का आदाब। आप सभी से गुजारिश है कि बराए ईमेल आप इस प्रोग्राम से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, अपने पैगाम हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी फरमाइश हमें लिखकर दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है उर्दू सर्विस esg@gmail.com। हाजिर इस प्रोग्राम की पहली पेशकश आप सबकी पसंद, आप सबकी नजर।

राजस्थान बीकानेर से डॉक्टर अशोक कुमार शाही, संतोष शाही और राजश्री गौरव शाही ने, और समय के ख्वाहिशमंद थे राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी हिसार से, सुनचादर लातूर से उस्मान शेख, सायरा बानो शेख और करिश्मा शेख ने, फागुरम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव कंकोर से सुनने के ख्वाहिशमंद थे, और महेंद्र सरकटे, विजय सरकटे, मिलिंद सरकटे और उज्जवलका से सुनने के ख्वाहिशमंद थे। सुनना चाह था मनोज सेन, पूनम सेन और दीपक सोम्या ने खंडवा से, और सुनने के ख्वाहिशमंद थे कुंबर गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले और अंकिता दले, अनिल जैन, संयम जैन, दिव्यम जैन मेरठ से सुनने के ख्वाहिशमंद थे, और सुनना चाहता सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह और प्रखर शाह ने। स्वपन तायडे, वसंतराव भोजने, पी एस नोहानकर महाराष्ट्र से सुनने के ख्वाहिशमंद थे। हाविर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में, जिसको सुनना चाहे नेहरू चौक पैठन से सुरेश यादव, अनीता जादव और प्रसाद जादव ने, विजय सुरलकर, रतमाला सुरलकर, ओम कुमार सुरलकर महाराष्ट्र सुनना चाहते हैं, किशन सबका, लाल सबका, विशाल सबका शास्त्री नगर वीर शहर से सुनने की ख्वाहिशमंद है, और सुनना चाहते हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निकत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज अब्बासी, ऊपरकोट मोहल्ला चुकनट्टी बुलंद शहर से, और सुनने की ख्वाहिशमंद है पंजाब रामटेके, शुद्ध रामटेके, श्रव्य रामटेके, यवतमाल महाराष्ट्र से, और सुनना चाहते हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, और सुनने की ख्वाहिशमंद है कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, मजनू कटीला दिल्ली से, सुनना चाहते हैं मिलवाकी यूएसएस से वर्षा चावड़ा, और इम्तियाज इमाम आतिश, सायरा परवीन आतिश, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा झारखंड से सुनने की ख्वाहिशमंद है। सुनना चाहते हैं वसंत राव भोजने, और सुनना चाहते हैं सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी पंजाब से, और दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायाब सुनना चाहते हैं रघुवीर नगर से।

कीर्ति नगर नई दिल्ली से। और सुनने के हाशवन ने बसेन सिंह छन्ना राजकुमार कुलदीप गांधी अलीगढ़ डबवली से। और सुनने चाहते हैं हनुमंत सिंह शिंदे संगीता शिंदे ऋषिकेश और वसुंधरा सांगली से। भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव बेंगलुरु से सुनने के ख्वाहिशमंद है। और सुनने चाहते हैं कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा सी टी दीवाना। और सुनने चाहते हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी नजम बेगम नाज नजम बेगम सिद्दीकी और रियाज रिफाकत उत्तराखंड से। ख्वाहिशमंद है मनमोहन रजवत मधुर रजवत राशि रक्षित शाहजहांपुर मध्य प्रदेश से। और बाबू सिंह दीवान बलजिंदर कौर दीवान रवनीत निशु सुनने के ख्वाहिशमंद है मुक्तसर पंजाब से। और सुनना चाहते हैं प्रभुदास कोटेजा अंसा कोटेजा राजकोट से। मेरा अरोड़ा ममता अरोड़ा कीर्ति अरोड़ा राजस्थान श्री गंगानगर से सुनने की ख्वाहिशमंद है। मैथिली कुमारी लड्डू कुमारी टुकटुक नजफगढ़ से सुनने की ख्वाहिशमंद है। सुनना चाहते हैं स्वर्ण सिंह गिल दलजीत सिंह और राजदीप सिंह लोहगढ़ ठाकुरवाला से। कल्पना मरंजा मयंक सुनना चाहते हैं गुजरात से। और सुनने की ख्वाहिशमंद है सुनील पाठक कपल कमल वाठक और गव्य मल्होत्रा चलराओं अनारकली बाजार से। पंडार कावड़ा से सुनना चाहते हैं अनिल उषा बुरांदे अनुश्री बुरांदे धनश्री बुरांदे।

अभी आप सुन रहे थे सरस्वती चंद्र फिल्म से नगमा मुकेश की आवाज में, जिसकी तर्ज बनाई थी कन्यान जी आनंद जी ने और बोल थे इन दीवार के। आइए अब सुनते हैं इस प्रोग्राम की अगली पेशकश, और इसको सुनना चाहा है मछलेंद्र पाटिल, कल्पना पाटिल और ने नागपुर से, और ये नगमा है बादशाह फिल्म से, और सुनने की ख्वाहिशमंद ने बबलेश पवार, नेपाल मनीष पवार, बाड़मेर राजस्थान से।

नरेंद्र मिर्गे, प्रियदर्शनी मिर्गे, प्रियंका काल पांडे महाराष्ट्र सुनना चाहते हैं और उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशुताशु पाकुर झारखंड से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। मीना मोहन खार और मीनाक्षी पलोमा और डॉक्टर ईशानी सुनना चाहते हैं हरियाणा से। मंदी चक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और सुनना चाहते हैं कृष्णा बाठे, संदीप बाठे, अमूल्या बाठे महाराष्ट्र से। और सुनने के ख्वाहिशमंद ने बिट्टू भाटिया, रीता भाटी, रजत भाटिया, झज्जर हरियाणा से और राजेश सैन, सुरेखा सैन खंडवा से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और सुनना चाहते हैं बेंगलोर की वैसे से वर्षा चावड़ा और यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, बीबी प्रियांशा सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और सुनना चाहते हैं स्वर्ण सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह ठाकुरवाला से और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज कालका से।

0: अभी अभी आप सुन रहे थे हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, ये नगमा बादशाह फिल्म से, जिसकी तर्ज बनाई थी शंकर जयकिशन ने और बोल थे हसरत जयपुरी के। शब के 11 बज चुके हैं, प्रोग्राम तामिल इरशाद अभी जारी है, आइए इस दौरान सुनते हैं खबरें बड़े सवेर से।
1: ये आकाशवाणी है, बड़े सवेर की खबरों के साथ मैं मोहम्मद शहजाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरिलॉस में बुध के सत्र की बातचीत की।

0: ट्राली सड़क के किनारे खाई में गिर गई। यह हादसा बालीशरस तालुका में महासवड़ पंडरपुर परवा के तंडलवाड़ी के करीब पेश आया। अकीदतमंदों का ताल्लुक पंडरपुर तालुका के रंजन गांव से है और ये सब सिद्धनाथ मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद वापस आ रहे थे। जख्मियों को इलाज के लिए पंडरपुर मुंतकिल किया गया है। इस दौरान महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस अलमनाक हादसे पर दुख का इजहार किया है। इसके साथ ही उन्होंने मेलुकुन के लवाहकीन के लिए 5-5 लाख रूपये की माली मदद का ऐलान किया है। एनटीए ने अंडर ग्रेजुएट्स मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान के वास्ते एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। तबा एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। दोबारा इम्तिहान इस महीने की 21 तारीख को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होंगे। एनटीए ने तलबा को सलाह दी है कि वह एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने से पहले अपने बैंक अकाउंट की तफसीलात की तस्दीक कर लें। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने कल शुमाल मशरकी भारत और मगरबी बंगाल में शदीद बारिश की पेशगोई की है। आईएमडी ने कहा है कि महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार और जनूबी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान जनूबी मगरबी मानसून की पेशकदमी के लिए हालात साजगार हैं, जबकि अगले 2 दिनों के दौरान मराठवाड़ा में शदीद गर्मी के हालात रहेंगे और कोंकण और गोवा में गर्म और हफ्स वाले मौसम का इम्कान है। आईएमडी ने दिल्ली के लिए कल आसमान जुज्वी तौर पर अग्र आलूद रहने की पेशगोई की है। उड़ान में भारतीय सफारतखाने ने कहा है कि भारतीय परचम बरदार तजारती जहाज विराट 1 के तमाम 14 भारतीय अमले के अफराद को बचा लिया गया है। इस जहाज के इंजन में ओमान के साहिल के करीब खराबी हो गई थी। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर सफारतखाने ने कहा कि अमले के अफराद महफूज हैं और सेहतमंद हैं। उन्हें दूसरे जहाज एमवी जबल अली 9 पर पहुंचा दिया गया है। इसराइल की फौज ने आज ऐलान किया कि उसने हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए लेबनान की राजधानी पर हमले किए हैं। इसराइली वजीर आजम के दफ्तर ने कहा कि ये हमले शिमाली इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए हैं। ईरान ने कहा कि उसने उस मुजवजा मुफाहमतनामे से मुतालिक अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया, जिसका मकसद अमरीका और इसराइल के दरमियान कशीदगी को खत्म करना है। ईरानी मीडिया ने कहा कि अभी मुजवजा मुहिदे का सियासी, कानूनी और तकनीकी एतबार से जायजा लिया जा रहा है। इस दरमियान कतर का एक वफद ईरानी हुकाम से सलाह मशवरा करने और ईरान व अमरीका के दरमियान सिफारती तबादलों की राह हमवार करने के गर्ज से तेहरान पहुंचा है। ओमान के शहर मस्कत में भारतीय सफारतखाने ने आज कहा कि वह भारतीय बाशिंदे निशांत उल थानाथन से मुतालिक ओमान के मकामी हुकाम, बंदरगाह सेक के हुकाम और जहाजरानी की कंपनियों के साथ फाल तौर पर ताउन कर रहा है, जो एमटी सेलेस्टियल जहाज पर तिब्बी वजूहात के बाद फौत हो गए थे। क्रिकेट में खवातीन के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए के इफ्तिताही मैच में बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने जीत के लिए पाकिस्तान को 171 रन का निशाना दिया था, जिसके जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 17 ओवर्स में 166 रन पर आउट हो गई। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सर इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला कैरिलॉस में दोनों के सतह की बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ कलीदी शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान खसूसी आलमी जामे शराकतदारी को तौसीह देने पर तवज्जो मरकूज की। दोनों लीडरों ने पैरा डेज एक्सपोजिशन में भारत इनोवेट्स का मुश्तरक तौर पर इफ्तिताह किया। भारतीय खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक खाई में एक गाड़ी के गिरने से 8 यात्री हलाक हो गए। ओमान साहिल के करीब एक जहाज से इंजन खराब होने के बाद अमले के तमाम 14 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम तामिर इरशाद मोहम्मद शाहरुख के साथ। एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। इस प्रोग्राम में हाजिर है इस प्रोग्राम की अगली पेशकश

ऐसे प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने ने। और सुनने के ख्वाहिशमंद थे मजनू वटीला दिल्ली से, कमल बालूजा मधु बालूजा सागर बालूजा और गणेश कामले देवयानी, रमेश कामले महाराष्ट्र सुनने के ख्वाहिशमंद है, दिनेश वर्मा करुणा वर्मा छत्तीसगढ़ से सुनने के ख्वाहिशमंद है, इंदाबाद से कन्वर सिंह और ऋषभ सिंह कालरी से सुनने के ख्वाहिशमंद है। सुनना चाहता राशिद हसन अंसारी, आशना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी ने कुरावली से, बोधराज खोरवाल कमला रानी गीतिका खोरवाल उत्तम नगर नई दिल्ली से सुनने के ख्वाहिशमंद है, और सुना चाहता छत्तीसगढ़ से विश्लाल विश्वकर्मा, मीरा विश्वकर्मा और चेतन विश्वकर्मा ने, कैलाश फुलवाली दीपक फुलमाली वेदिका फुलमाली खंडवा से सुनने के ख्वाहिशमंद थे, संजय पंचोले बंगा पंचोले संप्रीत पंचोले खंडवा से सुनने के ख्वाहिशमंद थे, और सुना चाहता इरफान कुरैशी रिहान कुरैशी और फैजान कुरैशी ने गंजनवाला से, और सुनने के ख्वाहिशमंद है विजय महोबिया कविता महोबिया पेंटर बाबू खंडवा मध्य प्रदेश से, और सुनना चाहा था फातिमा मंसूरी ने बांदा उत्तर प्रदेश से, मनोज जेठवार से जेठवा श्री रामपुर से सुनने के ख्वाहिशमंद है, और सुनना चाहा था नासिर शेख नासिर नाजिया और साजिद शाहिद ने श्री रामपुर महाराष्ट्र से, डॉक्टर दबीरुल हसन बेगम शर्मा अनवार और भुवन प्रकाश गौतम गंजनवाला से सुनने के ख्वाहिशमंद थे, अकोला महाराष्ट्र से गजानन कुंभर पद्मावती कुंभर और मधुरा सुनने के ख्वाहिशमंद थे, और सुनना चाह था संजय डिंगे नमन डिंगिया और अपार डिंगे ने उत्तर प्रदेश से, सुशीष घोष तन्मय पूर्वी गौड़ और पवन गौड़ सुनने के ख्वाहिशमंद थे कासगंज से, और सुनना चाह था सुरेश चौरसिया सरोज चौरसिया ने फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से शिवा चौरसिया के साथ, सहारनपुर से सुरेश नारंग आशु नारंग सुनने के ख्वाहिशमंद थे। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश जिसको सुनना चाहा है कलावती सोनी प्रवीण सोनी और प्रथम सोनी ने गांधीग्राम गुजरात से, और सुनने के ख्वाहिशमंद थे हैं तुलसी मस्किन चैतन्य मस्किन मीना मस्किन गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से और चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता खुराना सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुनना चाहते हैं वरुण अंसारी आसमान अंसारी डुमराव बिहार से और बक्सर से फातिमा राज अंसारी सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुनना चाहते हैं रोहित जाटव मोहित और मिश्री जेवी छत्तीसगढ़ से सहारनपुर से कैफी आजम तबस्सुम परवीन सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुनना चाहते हैं डॉक्टर सोनम डॉक्टर अदीबा चमन पार्क नई दिल्ली से और मोहम्मद साबिर पवाना ताजिद अली रुखसाना खातून बिहार मधुबनी से सुनना चाहते हैं जेल रोड से पूजा वर्मा दीप्ति वर्मा प्रभा वर्मा सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं मोहम्मद कलीम जख्मी फातिमा शेख रेलवे रोड गंजनवाला से।

अभी आप सुन रहे थे बेटी बेटे फिल्म से ये नगमा मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में, जिसकी तर्ज बनाई थी शंकर जय किशन ने। और हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश सुरैया और तलत महमूद की आवाज में, जिसको सुनना चाह है मोहम्मद अकबरुद्दीन मंठाल, आसिफ इकबाल और शब्बीर बनाट्टी ने कर्नाटक गुलबर्गा से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी जोशी खंडवा मध्य प्रदेश से, और सुनने के ख्वाहिशमंद धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नुशा सलमानी, बेबी आलिया, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, निहारिका, हार्दिक बत्ता पटियाला से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुनना चाहते हैं अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबात हुजरे, सांगली जिला जज शहर से, और सुनना चाहते हैं एफएम जावेद, शगुफ्तान जुम, गुमला झारखंड से।

भी आप सुन रहे थे मिर्जा गालिब फिल्म से ये गजल गालिब की सुरैया और तलत महमूद की आवाज में, जिसकी तर्ज बनाई थी गुलाम मोहम्मद ने। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में, जिसको सुनना चाहा है राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार ने, और सुनना चाहते हैं पटियाला रोड गंठोड़वारा से खलील कुरैशी, नुसरत बेगम और अरीबा शेख, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं जोंदी केसर, रोजदी केसर, रोजदी केसर और सहारनपुर से, और राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, मरोड़ पंजाब से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुनना चाहते हैं सेक्टर 5 जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और कल्पित चौहान।

0: अरे
1: जा जा जा जा।
0: अरे सुन सुन सुन सुन।
2: आप सुन रहे थे आर पार फिल्म से नगमा गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसकी तर्ज बनाई थी ओपी नैयर ने। हर फिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश तलत महमूद की आवाज में बारिद अली फिल्म से, जिसको सुनना चाहा है कल्पनताई लोखंडे, सुरेश लोखंडे, लक्ष्मण राव लोखंडे ने महाराष्ट्र से, और नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़ और अमो ओमकार गायकवाड़ महाराष्ट्र सुनना चाहते हैं। और सुनने के ख्वाहिश पर है विदाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा, और सुनना चाहते हैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान इंदूर का, तेजस्विनी चौहान, अंकिता अनिकेत चौहान, बशाद अहमद सिद्दीकी, बेगा हमीद्दीन सिद्दीकी, शनवाज सिद्दीकी सुनना चाहते हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से, और रमेश कुमार जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोरिया मलोट पंजाब से सुनना चाहते हैं। और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती चौधले, शहडोल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुषमा सरोशे, महाराज सरोशे सुनना चाहते हैं विठल सरोशे महाराष्ट्र से।

से और जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा, केथल हरियाणा से सुनना चाहते हैं, पंजाब से हरजिंदर सिंह चिंडा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, सुनना चाहते हैं जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद कलीम अंसारी और मोहम्मद अयान अंसारी गंजुंडवाला से, गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी छत्तीसगढ़ सुनना चाहते हैं, आखिरी दीवान मध्य प्रदेश से रामलाल चंद्रवंशी सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और बाड़ी गैबी वाराणसी से अरुण कुमार मालविया दर साहब सुनना चाहते हैं, और रमेश कड़नकर, विशाल कड़नकर सुनना चाहते हैं अकोला से, और साबिहा खानम, फरीदा खान, शबनम और ईसा बानो उदयपुर से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं।

हमें अभी आप सुन रहे थे दीदार फिल्म से ये नगमा, जिसकी तर्ज बनाई थी शाद ने और बोल थे शकील बदायूनी के। हाजिर इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश थुरैया की आवाज में, जिसको सुना चाहे इस बार लखनऊ से रानी मुकेश गुप्ता, रश्मि नीलम गुप्ता और राजनगर मधुबनी से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, मास्टर रुद्र गुप्ता सुनने के ख्वाहिश पर है। और सुनना चाहते हैं कानला बंदरकत से जगदीश जोरी, पूजा जोरी, और सुनने के ख्वाहिशमंद है मीर हसन निंदवानी, यार मोहम्मद खान निंदवानी, साकिब हुसैन तंगवानी से। और सुनना चाहते हैं दिनेश सेजपाल विहान, कुंटर राजकोट से। और सुनने के ख्वाहिशमंद है सुब्रत चौधरी कलकत्ता से। और निशांत वर्मा, कौशिक वर्मा, मंजू वर्मा, राजेश वर्मा कैंट से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। बाबू ठेकेदार शेख शागिर मोटाला से सुनना चाहते हैं और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं निजामाबाद तेलंगाना से अजीज मतीन और शेख चांद फारूक। प्रमिला देवी, रमेश कुमार साहू छत्तीसगढ़ से सुनना चाहते हैं। बच कमल, मोतीलाल यादव, बसंत भृगु भट्टापारा से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। मोइन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, फरीद हुसैन अंसारी सुनना चाहते हैं बरेली से। और चंदखेड़ा से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आनंदराज साकर। और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा।

आप सुन रहे थे प्रोग्राम तामीर इरशाद के तहत फरमाइशी फिल्मी नगमे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब सुनते हैं हाजी इदरीस इलियास कुतुबी कव्वाल और साथियों की आवाज में कव्वाली है।

के तमाम 14 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला कैरिलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। फरीकैन के दरमियान तबादला ख्याल में दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा, टेक्नोलॉजी और तजारत समेत कलीदी शोबों में खुसूसी आलमी जामे शराकतदारी को तौसी देने पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री और सीनियर हुक्काम मौजूद थे। सदर मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और खारजी उमूर के वजीर जीन नोवेल बैरेट और दीगर सीनियर हुक्काम थे। दोनों लीडरों ने विला कैरिलोस में वॉक एंड टॉक इजलास के दौरान भी बातचीत की। इससे कबल दिन में वज़ीर-ए-आज़म मोदी और फ्रांस के सदर मैक्रों ने नीस में पैलेस डेज एक्सपोजिशियो में भारत इनोवेट्स तकरीब का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। 3 रोजा ये अहम तरीन तकरीब भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स, इख्तिराकार, मुहक्किकीन और सरमायाकारों को आलमी इख्तिराई फंड्स और फुटप्रिंट के साथ यकजा करेगी। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारत के टैलेंट और यूरोपीय कैपिटल के दरमियान एक पुल के तौर पर उभर रही है, जो नौजवान इख्तिराकारों को आलमी महारत के साथ मुंसलिक होने के नए मौके वजह कर रही है। भारत के स्टार्टअप इनकलाब को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क के नौजवान आलमी चैलेंजों के लिए उन शोबों में हल तैयार कर रहे हैं जो मस्नूई जहानत और खलाई टेक्नोलॉजी से लेकर माहौल साजगार तवानाई, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और दिफाई इख्तिरा तक का अहाता करते हैं। उन्होंने वाजे किया कि आज भारत में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हैं और ये इंसानियत के लिए टेक्नोलॉजी के उसूल के जरिए इंसान मरकूज जिद्दतकारी की क्यादत के मॉडल को फरोग दे रहे हैं। भारत फ्रांस ताल्लुकात की तकवियत को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि जब बहुत से मुल्क तिजारत और जामे ताउन में मसरूफ हैं, ऐसे में चंद मुल्कों के ताल्लुकात को ही मुश्तरका विजन के साथ साथ एक जैसे मफादात की रहनुमाई हासिल है। उन्होंने भारत फ्रांस शराकतदारी को एक ऐसी फरोग पाती हुई शराकतदारी करार दिया जिसकी जड़ें बाहमी एतमाद, मुश्तरका इख्तदार, मुश्तरका अखदार और मुस्तकबिल के लिए एक जैसे नजरिए तक फैली हुई है। इज्तिमा से खिताब करते हुए फ्रांस के सदर मैक्रों ने एक आलमी इख्तिराई पावर हाउस के तौर पर भारत के उभरने की सताइश की और कहा कि आज सवाल ये नहीं है कि भारत इख्तिरा कर रहा है, बल्कि सवाल ये है कि भारत के साथ कौन इख्तिरा करेगा। उन्होंने इंजीनियरिंग के टैलेंट के भारत के वसी जखीरे को उजागर किया और भारत की तकनीकी महारत के तौर पर चंद्रयान मिशन जैसी हासिल करदा मुल्क की कामयाबियों की सताइश की। सदर मैक्रों ने कहा कि भारत इनोवेट भारत के इख्तिराई इको निजाम और फ्रांस के वसी तकनीकी मंजरनामे के दरमियान एक मजबूत पुल वजह करता है। उन्होंने इस पहल के पहले एडिशन की भारत से बाहर मेजबानी को फ्रांस के लिए एक एजाज करार दिया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को आजादी के बाद से भारत के सबसे तवील मुद्दत तक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बनने पर भी मुबारकबाद दी। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर, सनत और कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, प्रिंसिपल साइंसी मुशीर अजय कुमार सूद, इन्फोसिस के बानी नारायण मूर्ति और बहुत से सरकर्दा कारोबारी लीडर भी इस मौके पर मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत आलमी जोग्राफियाई, सियासी और तकनीकी तब्दीली के दौर में एक भरोसेमंद और काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि मुल्क में किसानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए गुज़श्ता 12 बरसों में बेमिसाल काम किया गया है। जनाब मोदी ने यह बात मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान के तहरीर करदा एक मजमून को शेयर करते हुए कही। मजमून में जनाब चौहान ने जोर दिया है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क्यादत में ज़राअत, किसानों की खुशहाली, खतरे से बचाव, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, ग्रीन टेक्नोलॉजी और देही तरक्की के लिए एक मुनज़्ज़म बुनियाद बन गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ईरान ने कहा है कि उसने उस मुजव्वजा मुफाहदनामे पे दस्तखत नहीं किया है जिसका मकसद अमेरिका और इसराइल

0: के साथ कशीदगी खत्म करना है। ईरानी मीडिया ने कहा है कि अभी मुजवजा मुआहदे का सियासी, कानूनी और तकनीकी एतबार से जायजा लिया जा रहा है। इस दरमियान कतर का एक वफद ईरानी हुक्काम से सलाह मशवरा करने और ईरान व अमेरिका के दरमियान सिफारती तबादलों की राह हमवार करने की गरज से तेहरान पहुंचा है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त हुई है जबकि मुजाकिरात जारी हैं। इधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब उम्मीद जाहिर की है कि जल्द ही एक मुआहदा तय पा सकता है। ईरानी हुक्काम इस वक्त मुहतात रद्द अमल जाहिर कर रहे हैं जबकि मुजवजा मुआहदे के खिलाफ ईरान के शहर मशहद में एहतजाज की रिपोर्टें मौसूल हुई हैं। ओमान के शहर मस्कत में भारतीय सिफारतखाने ने कहा है कि वो भारतीय बाशिंदे निशांत उरीथनाथन से मुतालिक ओमान के मुकामी हुक्काम, बंदरगाह के हुक्काम और जहाजरानी की कंपनियों के साथ फाल तौर पर ताउन कर रहा है जो एम्प्टी सेलेशियल एम्प्टी जहाज पर तिब्बी वजूहात के बाद फौत हो गए थे। सिफारतखाने ने सोशल मीडिया की एक पोस्ट में कहा है कि इस जहाज के जल्द ही दुख्म बंदरगाह पर लंगरअंदाज होने की तवक्को है। सिफारतखाने ने मजीद कहा है कि जहाज से उनकी जज्द खाकी को हासिल करने के लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। एनटीए ने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान के वास्ते एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। तलबा एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। दोबारा इम्तिहान इस महीने की 21 तारीख को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होंगे। एनटीए ने तलबा को सलाह दी है कि वो एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने से पहले अपने बैंक अकाउंट की तफसीलात की तस्दीक कर लें। ओमान में भारतीय सिफारतखाने ने कहा है कि भारतीय परचमबरदार तिजारती जहाज विराट 1 के तमाम 14 भारतीय अमले के अफराद को बचा लिया गया है। इस जहाज के इंजन में ओमान के साहिल के करीब खराबी हो गई। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में सिफारतखाने ने कहा कि अमले के अफराद महफूज हैं और सेहतमंद हैं। उन्हें दूसरे जहाज एमवी जबल अली 9 पर पहुंचा दिया गया है। सिफारतखाने ने मजीद कहा कि अमले के अफराद मुंबई के लिए रवाना किए जा रहे हैं। इसराइल की फौज ने कल ऐलान किया कि उसने हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए लेबनान की राजधानी पर हमला किया है। इसराइली वजीर आजम के दफ्तर ने कहा कि ये हमले शुमाल इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए हैं। क्रिकेट में ख्वातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए के इफ्तिताही मैच में बर्मिंघम के एग्जिबिशन में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने जीत के लिए पाकिस्तान को 171 रन का निशाना दिया था जिसके जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 17 ओवर्स में 106 रन पर आउट हो गई। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विल्ला कैरिलोस में वक्त की सतह की बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ कलीदी शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान खसूसी आलमी जाम शराकतदारी को तोसी देने पर तवज्जो मरकूज की। दोनों लीडरों ने पहले देश एक्सपोजिशियो में भारत इनोवेट्स का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। ईरान ने कहा है कि उसने उस मुजवजा मुफाहदनामे से मुतालिक अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया है जिसका मकसद अमरीका और इसराइल के साथ कशीदगी खत्म करना है। और ओमान साहिल के करीब एक जहाज से इंजन खराब होने के बाद अमले के तमाम 14 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से आलमी खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है इंस्ट्रूमेंटल मौसीकी का प्रोग्राम। आइए इस प्रोग्राम के तहत सुनते हैं उस्ताद विलायत खान का सितार पर बजाया हुआ राग गुन कल्याण।

नरेंद्र मोदी के साथ कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर, खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री और सीनियर हुक्काम मौजूद थे। सदर मैखा के साथ फ्रांस के यूरोप और खारजी उमूर के वजीर जीन नोएल बैरेट और दीगर सीनियर हुक्काम थे। दोनों लीडरों ने विला कैरिलोस में वॉक एंड टॉक इजलास के दौरान भी बातचीत की। इससे कबल दिन में वजीर आजम मोदी और फ्रांस के सदर मैखा ने नीस में पहले देश एक्सपोजेशियो में भारत इनोवेट्स तकरीब का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। तीन रोजा यह अहम तरीन तकरीब भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स, इख्तिराकार मुहक्कीन और सरमायाकारों को आलमी इख्तिरा फंड्स और फुटप्रिंट के साथ यकजा करेगी। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारत के टैलेंट और यूरोपीय कैपिटल के दरमियान एक पुल के तौर पर उभर रही है, जो नौजवान इख्तिराकारों को आलमी भारत के साथ मुंसलिक होने के नए मौके वजह कर रही है। भारत के स्टार्टअप इनकलाब को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क के नौजवान आलमी चैलेंजों के लिए उन शोबों में हल तैयार कर रहे हैं जो मस्नूई जहानत और खलाई टेक्नोलॉजी से लेकर माहौल साजगार तवानाई, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और दिफाई इख्तिरा तक का अहाता करते हैं। उन्होंने वाजे किया कि आज भारत में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हैं और ये इंसानियत के लिए टेक्नोलॉजी के उसूल के जरिए इंसान मरकूज जिद्दतकारी की क्यादत के मॉडल को फरोग दे रहे हैं। भारत फ्रांस ताल्लुकात की तकवीयत को उजागर करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि जब बहुत से मुल्क तिजारत और जामे ताउन में मसरूफ हैं, ऐसे में चंद मुल्कों के ताल्लुकात को ही मुश्तरका विजन के साथ साथ एक जैसे मफादात की रहनुमाई हासिल है। उन्होंने भारत फ्रांस शराकतदारी को एक ऐसी फरोग पाती हुई शराकतदारी करार दिया जिसकी जड़ें बाहमी एतमाद, मुश्तरका अख्तार और मुस्तकबिल के लिए एक जैसे नजरिए तक फैली हुई है। इज्तिमा से खिताब करते हुए फ्रांस के सदर मैखा ने एक आलमी इख्तिराई पावर हाउस के तौर पर भारत के उभरने की सताइश की और कहा कि आज सवाल ये नहीं है कि भारत इख्तिरा कर रहा है, बल्कि सवाल ये है कि भारत के साथ कौन इख्तिरा करेगा। उन्होंने इंजीनियरिंग के टैलेंट के भारत के वसी जखीरे को उजागर किया और भारत की तकनीकी महारत के तौर पर चंद्रयान मिशन जैसी हासिल करदा मुल्क की कामयाबियों की सताइश की। सदर मैखा ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारत के अख्तराई इको निजाम और फ्रांस के वसी तकनीकी मंजरनामे के दरमियान एक मजबूत पुल वजह करता है। उन्होंने इस पहल के पहले एडिशन की भारत से बाहर मेजबानी को फ्रांस के लिए एक एजाज करार दिया। उन्होंने वजीर आजम मोदी को आजादी के बाद से भारत के सबसे तवील मुद्दत तक मुंतखब वजीर आजम बनने पर भी मुबारकबाद दी। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर, सनत और कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, प्रिंसिपल साइंसी मुशीर अजय कुमार सूद, इंफोसिस के बानी नारायण मूर्ति और बहुत से सरकर्दा कारोबारी लीडर भी इस मौके पर मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत आलमी जोग्राफियाई, सियासी और तकनीकी तब्दीली के दौर में एक भरोसेमंद और काबिले एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि मुल्क में किसानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए गुज़श्ता 12 वर्षों में बेमिसाल काम किया गया है। जनाब मोदी ने यह बात मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान के तहरीर करदा एक मजमून को शेयर करते हुए कही। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ईरान ने कहा है कि उसने उस मुजव्वजा मुफाहमतनामे पर मुतालिक अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया है, जिसका मकसद अमेरिका और इसराइल के साथ कशीदगी खत्म करना है। ईरानी मीडिया ने कहा है कि अभी मुजव्वजा मुआहदे का सियासी, कानूनी और तकनीकी एतबार से जायजा लिया जा रहा है। इस दरमियान कतर का एक वफद ईरानी हुक्काम से सलाह मशवरा करने और ईरान व अमरीका के दरमियान सफारती तबादलों की राह हमवार करने की गरज से तेहरान पहुंचा है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त हुई है जबकि मुजाकिरात जारी हैं। इधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द ही एक मुआहदा तय पा सकता है। ओमान के शहर मस्कत में भारतीय सिफारतखाने ने कहा है कि वो भारतीय बाशिंदे निशांत से मुतालिक ओमान के मुकामी हुक्काम, बंदरगाह के हुक्काम और जहाजरानी की कंपनियों के साथ फाल तौर पर ताउन कर रहा है, जो एम्प्टी सेलेशियल जहाज पर तिब्बी वजूहात के बाद फौत हो गए थे।
सिफारतखाने ने सोशल मीडिया के एक पोस्ट में कहा कि इस जहाज के जल्द ही

0: दुखम बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने की तवक्को है। सिफारतखाने ने मजीद कहा कि जहाज से उनके जज्दे खाकी को हासिल करने के लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। एनटीए ने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान के वास्ते एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। तलबा एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। दोबारा इम्तिहान इस महीने की 21 तारीख को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होंगे। ओमान में भारतीय सिफारतखाने ने कहा है कि भारतीय परचमबरदार तजारती जहाज विराट 1 के तमाम 14 भारतीय अमले के अफराद को बचा लिया गया है। इस जहाज के इंजन में ओमान के साहिल के करीब खराबी हो गई। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में सिफारतखाने ने कहा कि अमले के अफराद महफूज हैं और सेहतमंद हैं। उन्हें दूसरे जहाज MV जबल अली 9 पर पहुंचा दिया गया है। सिफारतखाने ने मजीद कहा कि अमले के अफराद मुंबई के लिए रवाना किए जा रहे हैं। इसराइल की फौज ने कल ऐलान किया कि उसने हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए लेबनान की राजधानी पर हमले किए हैं। इसराइली वजीर आजम के दफ्तर ने कहा कि ये हमले शुमाली इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए हैं। क्रिकेट में ख्वातीन के आईसीसी T20 आलमी कप के ग्रुप ए के इफ्तिताही मैच में बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने जीत के लिए पाकिस्तान को 171 रन का निशाना दिया था, जिसके जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 17 ओवर्स में 106 रन पर आउट हो गई। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विल्ला कैरिलोज में वक्त की सतह की बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ कलीदी शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान खुसूसी आलमी जामे शराकतदारी को तौसी देने पर तवज्जो मरकूज की। दोनों लीडरों ने पहले देज एक्सपोजिशियो में भारत इनोवेट्स का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। ईरान ने कहा है कि उसने उस मुजव्वजा मुफाहमत नामे से मुतालिक अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया है, जिसका मकसद अमरीका और इसराइल के साथ कशीदगी खत्म करना है। और ओमान साहिल के करीब एक जहाज से इंजन खराब होने के बाद अमले के तमाम 14 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब का एक बजा चाहता है। उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। सुबह 9:30 पर पहली मजलिस की नशरियात लेकर आपके खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। जय हिंद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कल नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर कल विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। 2 दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 वर्षों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाती है। अपराध जांच विभाग सीआईडी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी से पार्टी विधायकों के हस्ताक्षर में धोखाधड़ी के मामले में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर 9 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष और अभिषेक बनर्जी से आमने सामने पूछताछ की। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में कल दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा वानखेड़े तालुका में महसवाड पंढरपुर मार्ग पर तांडुरवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में कल बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the India-France Special Global Strategic Partnership. More from our correspondent.
4: The visit witnessed several important outcomes across technology, innovation and economic cooperation. The most significant was the adoption of the India-France Innovation Roadmap 2030, providing a framework for collaboration in artificial intelligence, startups, research, skilling and innovation ecosystems. Prime Minister Modi and President Macron also jointly inaugurated Bharat Innovates, bringing together more than 120 Indian startups, leading academic institutions, investors and technology leaders. The two countries announced the creation of a joint India-France AI Working Group on AI governance, launched an economic security dialogue focusing on critical technologies and resilient supply chains, and agreed to establish a high-level annual mechanism to pursue the goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. Another key outcome was the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur, aimed at strengthening workforce readiness in aviation and aerospace. Beyond innovation and technology, the leaders reviewed cooperation in defense, space, civil nuclear energy.

एक तो मोहब्बत का असर होता है, दूसरा अगर कोई सज ले, सवर ले, गजरा लगा ले, गजरा सजा ले, तो फिर क्या ही होगा, नींद तो उठनी ही है। और कोई इस गीत में कुछ ऐसा ही कहा गया है।

सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गीत सुनहरे, पुराने जमाने के वो गीत जो आज भी हमें याद है, और याद भी क्यों ना हो, उसके शब्द उसके बोल कुछ इस तरीके से हैं जो हमारे दिल में घर कर जाते हैं। जैसे कि आप देखिए ना कि पूरी जिंदगी किसी एक पल को याद रखना, आखिर ऐसा क्या है। कुछ पल ऐसे होते हैं जो बहुत खुशनुमा होते हैं, कहीं कहीं कुछ पल ऐसे होते हैं जो दिल में टीस दे जाते हैं, लेकिन टीस वाले पलों को इंसान भूलते ही रहना चाहता है। याद क्या रखता है, वो पल जो दिल में घर कर जाते हैं एक खुशी के तौर पर। जी हाँ, जब वो बरसात की रात जो हमेशा याद रहे, आखिर ऐसा क्या है उस गीत में, आइए सुनते हैं इस गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों गीत सुनहरे गोल्डन एरा के संगीत पूजा भारती के साथ, और गीतों का एक सिलसिला तो चल चुका है। अब एक स्वर ऐसा भी है जो एक जमाने में जब आया तो लोगों ने कहा कि उसके आवाज में वो खनक नहीं है, लेकिन फिर भी वो गाने हिट हो गए। जी हाँ, खनक तब जब से सुना गया था तो सभी का यही मानना था कि इसे इस फिल्म में ना लिया जाए, लेकिन फिर भी लिया गया। कौन थी वो आवाज? आवाज केएल सहगल की आवाज। जब वो आए थे तो लोगों ने उन्हें फिल्मों में लेने से इनकार किया था, लेकिन जब वो फिल्म में एक किसी गीत में उन्होंने अपनी आवाज दे दी, वो भी इस कदर दी थी कि जब कोई एक गीतकार वहां पर मौजूद नहीं था तब मजबूरीवश उन्हें लेना पड़ा था, और तब उन्होंने जब अपनी आवाज दी तब वो गाना हिट हो गया। और जब हिट हुआ तो ऐसा हुआ कि गानों की लाइनें लग गई, और फिर क्या था, केएल सहगल को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सका। जी हाँ, उन्हीं के स्वर में सुनते हैं ये गीत।

जब तकदीर से तकदीर को जब बनाने की बात आती है तो इस पर भी तो गीत बने हैं। कई गीत ऐसे बने हैं जो मोहब्बत से लेकर आपके जुनून तक को, उसके बीच के सफर को तय करते हैं। लेकिन जब हम तकदीर की बनाने की बात करते हैं तो इस पर भी क्या गीत हो सकती है? अगर हम पुराने जमाने को जाकर देखें तो कोई भी ऐसा सिचुएशन, कोई भी ऐसे शब्द जिस पर गीत ना हो, ये हम मान ही नहीं सकते। गीत के बोल से लेकर जिंदगी के हर एक पड़ाव को पुराने जमाने ने खंगाला और उस पर गीत बनाए, एक से बढ़कर एक। उनमें से एक गीत ये भी है।

और वाकई में ये दुनिया किसी किसी के लिए बहुत खूबसूरत होती है, और कभी ऐसा होता है कि दुनिया बदरंग सी लगने लग जाती है, और फिर हम कामना करने लग जाते हैं कि ये दुनिया मेरे लायक नहीं है, चलो भाई चल लेते हैं यहाँ से। लेकिन क्या ये हो सकता है? क्या ये संभव है? ऐसा होता नहीं है। लेकिन गीतों का क्या है, हर एक माहौल पर, हर एक समय पर गीतों का बनना लाजमी है, और इस गीत ने यही साबित किया है। आइए सुनते हैं।

हाँ, तो ये तभी होता है जब आपका दिल टूटा हो। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भाई हम यहीं रहें, लेकिन हम तेरे दरवाजे पर तो नहीं आएंगे। और वाकई में मोहब्बत के टूटे हुए लोग कुछ इस कदर टूट जाते हैं कि अपने दिलों पर उनका कोई यही नहीं रहता, कोई क्या कहते हैं उसे, काबू नहीं रहता। और जब दिलों पर काबू ही नहीं रहेगा तो इंसान क्या ही सोचेगा। जी हाँ, गीतों के जरिए कई ऐसे समय को सिखाया गया, उस समय को जीते समय हमें उन गानों की, उन गीतों की याद आ जाती है। एक गीत ऐसा भी है जहां ये कहा गया है कि हम तो तेरे दरवाजे पर आएंगे ही नहीं, या फिर उस गली में ही आना हमने बंद कर दिया है। सुनते हैं कौन सा वो गीत है।

मोहब्बत करने वालों के दिल में कई बार ये जज्बात होते हैं कि अगर मैं अपने प्रेयसी से या अपने प्रिय से दूर हो गया तो वो मेरे बगैर नहीं रह सकते। और वाकई में यही सत्य है, जहां असली चाहत है, जहां मोहब्बत है, वहां ऐसा जरूर होता है। फिर क्या होता है, जब ऐसी मोहब्बत हो तब उसे हम अपनी कोई भी बात मनवाने के लिए ये कह सकते हैं कि अगर मैं तुमसे दूर गई, तुम्हें ना मिलूं, तो क्या तुम रह पाओगे। गीतों के जरिए कैसे इन बातों को बताया गया, आइए सुनते हैं।

और फिर वाकई में जब आपने ये गीत सुन ही लिया है तो फिर चलिए लो मैं चली। हाँ, वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है और अब इस कार्यक्रम को समेटने का समय तो आ गया है, लेकिन एक आखिरी नगमा आपका वेट कर रहा है, उसे सुनते हैं। मुझे पूजा भारती को दीजिए इस कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।

0: आप जुड़े हैं AIR लाइव न्यूज 24x7 से। 2 बजने को है, आप सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कल नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी की फ्रांस यात्रा पर कल विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से ब्रास्टिलावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एन पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: अपराध जांच विभाग सीआईडी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी से पार्टी विधायकों के हस्ताक्षर में धोखाधड़ी के मामले में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर 9 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष और अभिषेक बनर्जी से आमने सामने पूछताछ की। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में कल दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालशिरस तालुका में मासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तांडुल वाली के पास हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में कल बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the India-France Special Global Strategic Partnership. More from our correspondent.
3: The visit witnessed several important outcomes across technology, innovation and economic cooperation. The most significant was the adoption of the India-France Innovation Roadmap 2030, providing a framework for collaboration in artificial intelligence, startups, research, skilling and innovation ecosystems. Prime Minister Modi and President Macron also jointly inaugurated Bharat Innovates, bringing together more than 120 Indian startups, leading academic institutions, investors and technology leaders. The two countries announced the creation of a joint India-France AI Working Group on AI Governance, launched an economic security dialogue focusing on critical technologies and resilient supply chains, and agreed to establish a high-level annual mechanism to pursue the goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. Another key outcome was the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur, aimed at strengthening workforce readiness in aviation and aerospace. Beyond innovation and technology, the leaders reviewed cooperation in defense, space, civil nuclear energy, connectivity and global affairs, reaffirming their shared commitment to a future-oriented partnership. The visit underscored the growing strategic convergence between India and France and their common vision for innovation-led growth and global stability. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
2: After concluding his visit to Nice, France, Prime Minister Narendra Modi has arrived Slovakian capital Bratislava for the maiden visit. He will be received by Slovak Foreign Minister Jura Blanár in a short while. Prime Minister Narendra Modi will be accorded a ceremonial welcome this morning. Upon his arrival at Bratislava, Slovakian musicians welcomed him with a rendition of Vande Mataram. Human science and technology minister Dr. Jitendra Singh said India's space economy is poised to grow from the current $8 to $9 billion to nearly $40 to $45 billion for the next decade. Addressing a press conference in New Delhi, the minister said this growth is driven by policy reforms, growing private participation and a rapidly expanding innovation ecosystem. In Maharashtra, 8 devotees, including children, died after a pickup vehicle carrying them fell into a roadside well in Solapur district yesterday. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the loss of lives in the accident. In a social media post, Mr. Modi said that his thoughts are with the bereaved families during this hour of grief and prayed for the speedy recovery of the injured. The Prime Minister also announced an excretia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. He added that the injured would be given 50,000 rupees. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis expressed grief at the tragic incident. He also announced an excretia of 5 lakh rupees to the families of those who died in the accident. The Criminal Investigation Department, CID, has interrogated Trinamool Congress MP Abhishek Banerjee for over 9 hours for his alleged involvement in the signature forgery case of party MLAs. According to the sources, the agency interrogated Trinamool Congress MLA Kunal Ghosh and Abhishek Banerjee face-to-face at the CID headquarters in Kolkata. The National Testing Agency, NTA, has released the admit cards for the NEET TOG re-examination for admission to undergraduate medical courses. Candidates can download their admit cards from the NTA's official website, neet.nta.nic.in. The re-examination is scheduled to be held on 21st of this month from 2 p.m. to 5:15 p.m. NTA has advised the candidates that they should verify their bank account details for a refund before downloading the admit cards. On the third day of the FIFA World Cup 2026, Germany defeated World Cup debutant Curaçao in 7-1 in a Group E match at Houston in the United States. Germany scored most of their goals in the second half to secure an easy victory. In ICC Women's T20 World Cup, India defeated Pakistan by 64 runs in a Group A match at Edgbaston in Birmingham. Batting first after winning the toss, India posted 170 runs in their allotted 20 overs. In reply, Pakistan were bundled out for 106 runs in 17 overs, falling short of the target. Deepti Sharma was adjudged the player of the match. And that is the end of this news bulletin.
4: आप सुन रहे हैं AIR Live News 24/7. 2:10 हो चुके हैं. वक्त है कार्यक्रम गीत बहार का. नॉन स्टॉप फिल्म संगीत कार्यक्रम. इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ पूजा भारती. आइए सुनते हैं कार्यक्रम के खूबसूरत से गीत.

अभी आप सुन रहे थे नॉनस्टॉप गीत संगीत कार्यक्रम. आप जुड़े हैं AIR लाइव न्यूज 24/7 से. 3 बजने को है. अब कुछ ही पलों में पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार सुनिए.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कल नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तीन दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर कल विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया पहुंच गए हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। अपराध जांच विभाग

कुछ आवाजें दिल में घर कर जाती हैं, जैसे कि अभी आप सुन रहे थे हरिहर रंग की आवाज में ये गजल, और आने वाली गजल में आप सुनेंगे गुलाम अली साहब को।

चांद से जब दोस्ती है तारों की, क्योंकि वो रहते हैं बिल्कुल साथ में। तो चांद हो अगर परेशान, तो कैसे सो जाएं तारे भी। आपने सुनी ये बहुत खूबसूरत गजल चित्रा सिंह के स्वर में। आइए अगली गजल की ओर लेकर चलते हैं और सुनवाते हैं चंदन दास का स्वर।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं वो आवाज जिसको सुनते ही शायद आप 80-90 के दशक में जाना चाहते हो, उस बचपन के दौर में जब हम वो आवाज सुनते थे। आज वो आवाज सुनकर सब यादें ताजा हो जाती हैं। जी हाँ, सुनवाने जा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में ये अगली गजल।

और अब सुनवाते हैं इस गीत के बाद इस कार्यक्रम का आखिरी गीत। जी हाँ, क्योंकि आप सुन रहे हैं गीत व गजलों का कार्यक्रम अपनी दोस्त कीर्ति के साथ। इस रात के सफर में आइए चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी गीत की ओर। आवाज मनहर उदास की।

0: इसी गीत के साथ अब गीत व गजलों का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की दीजिए अपनी दोस्त कीर्ति को इजाजत। सुबह के 4 बजने वाले हैं, अब हमारे अगले कार्यक्रम को आप जल्दी सुनेंगे।
1: नमस्कार श्रोताओ, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे श्रीमती सुधा रघुरामन का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में श्रीमती सुधा रघुरामन प्रस्तुत करेंगी डॉक्टर एम बाला मुरली कृष्णा की रचना बृहदेश्वरा महादेव।

इस कार्यक्रम का समापन श्रीमती सुधा रघुरामन गुरु सुरजानंदा की रचना गंगाधीश्वरम शंकरम से करेंगी।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। अब प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आइए आपको सुनवाते हैं अमृता वर्षिणी अमू का गायन। मृदंगम पर वी एम कनन ने संगत की है और वायलिन पर हैं एडी सुब्रमण्यम।

अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत अमृता वार्षिणी अम्मू का गायन। मृदंगम पर संगत की थी वी एम कनन ने और वायलिन पर साथ दे रहे थे ए जी सुब्रमण्यम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तिथि 15, तदनुसार 15 जून 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आइए अब आपको आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण दे दें। अब से कुछ ही देर में यानी कि सुबह के 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस। 5:20 पर सुनिएगा देशभक्ति संगीत और 5:30 पर समय रहेगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। सुबह 6:10 पर वंदना कार्यक्रम होगा। चिंतन आप सुन सकेंगे 6:40 पर। रामचरितमानस का समय होगा 6:45। सुबह 7:10 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम संगीतिका। गीतों भरी गुड मॉर्निंग का समय होगा सुबह 7:30 पर।

सुबह 8:45 पर समय होगा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के स्वर गंगा का। 9:15 पर कार्यक्रम रहेगा आर गेस्ट मिट्टी दी महक पंजाबी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 9:30 पर। आपकी पसंद कार्यक्रम रहेगा सुबह 10:10 पर।

प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां आप सुन सकेंगे सुबह 11:10 पर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर मंजरी सुनेगा 11:30 पर। दिन में 12:10 पर महिला कार्यक्रम घर आंगन आप सुन सकेंगे। एक ही फिल्म से आप सुनेंगे दिन में 1:10 पर।

एक ही कलाकार का समय होगा दिन में 2:30, उर्दू मजलिस कार्यक्रम होगा 3:30 पर, युवानी लाइव आप सुनेंगे शाम 4:15 पर, लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी का समय रहेगा शाम 5:10, दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी आप सुन सकेंगे।

0: शाम 5:30 पर और संस्कृत सौरभम का समय रहेगा शाम 6:10 पर। कार्यक्रम ग्राम संसार का समय होगा शाम 6:30 का। शाम 7:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम रहेगा। कवाली व गजलों का आनंद लीजिएगा शाम 7:30 पर। पब्लिक स्पीक आप सुन सकेंगे रात 9:30 पर। गुलदस्ता कार्यक्रम होगा रात्रि 10:10 पर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंजन सुनिएगा 10:30 पर। फिल्म संगीत आपकी फरमाइश कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 11:10 पर। ये थे आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह के 5:00 हैं, अब समाचार होंगे।
1: नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडठ कीता तना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के।

चेत आवे, चेतावन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिबा, तहां तहां रच्छे आरे आए ता। देग तेग फतेह, वृद्ध की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय, खालसे जी के

विवेक दान विसह दान परोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारिया गुरुधामा दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो।

ਕਦੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਰਦ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆਂ ਨੂੰ।

सचा है के लगा बन सलोक पाथी जाई सटिया किसो लगा दो अन देवता पानी देवता बैसन तुर देवता नो पन्ना पाया तिरत तो हो आप पापी सो तुम कटिया तू पापा।

0: जिना मेरा सतगुरु तुथा जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा हर हर मन उठा वाहिगुरु
1: सुनो महला पहला नानक फिके बोले तन मन फिका होए फिको फिका सद